0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुषा, सभी को नमस्कार। मॉरिशस बॉ काउंसिल ने गुलशन गोविंद के वकील रोबेन बोहंगा पिले की ओर से की गई शिकायतों के बाद प्रतिक्रिया दी है। एक बयान में बॉ काउंसिल ने उन आरोपों को गंभीरता से लेने की बात कही जिनके अनुसार कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद पर अपने वकील को बदलने के लिए दबाव डालने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की है। मॉरिशस सरोरिक्स में फिलहाल 2,73,000 से अधिक लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। आम की गई सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। 13 वर्षों के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन की वापसी हुई है। इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 हफ्तों तक कई विषयों के बारे में सीखेंगे, अनुशासन, सेवा भाव, जिम्मेदारी और सह अस्तित्व, सब्जियों पर ठंड का असर और इसका असर कीमतों पर भी। पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केट तक सब्जियों के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। और विदेश में अमेरिका में ब्याज दरों में 3 साल से अधिक समय बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई है। फेडरल रिजर्व ने सर्वसम्मति से ब्याज दर को 3.5 से 3.75% से बढ़ाकर 3.75 से 4% कर दिया। और अब मौसम की रिपोर्ट। मॉरिशस के लिए ऊंची लहर की चेतावनी जारी है जो कि आज दिन के 10 बजे तक लागू रहेगी। मस्करिंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले काफ़ी ज़ोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज़ और ठंड हवा पाई जा रही है और इन हवाओं से जुड़े बादल रह रहकर हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि सुबह के वक्त और दिन के दौरान भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे जो रह रह कर घने हो जाएंगे और जहां तहां बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण एवं ऊंचाइयों पर। सुबह के वक्त कुछ इलाकों में तेज़ बारिश भी हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिसके झोंके कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकते हैं। समंदर खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में लहरें 4 मीटर तक हो सकती हैं। और अतिरिक्त जानकारी में ये भी बताया जाता है कि उच्च ज्वार के समय निचले इलाकों में खासकर पश्चिम और दक्षिण में तटों पर भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए मछुआरों, मनोरंजन नौकाओं और आम जनता से ज़ोरदार अपील की जाती है कि समंदर में न जाए और साथ में ज्वार के वक्त इन तटों से भी दूर रहे। तो पूरा समाचार बुलेटिन 6:30 बजे, तब तक के लिए अनुमति दे, नमस्कार।
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, मा काना मा यकून का बयान उन्हें सिखाया, सूरज और चांद हिसाब से हैं और सब्जे और पेड़ सजदा करते हैं, और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तराजू में बेइत्तेदाली न करो और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वजन न घटाओ, और जमीन रखी मखलूक के लिए इसमें मेवे और गलाफ वाली खजूरें और भूस के साथ अनाज और खुशबू के फूल, तो ऐ जिनो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

उसने आदमी को बनाया बचती मिट्टी से जैसे ठीकरी और जिनको पैदा फरमाया आग के लौके से, तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे, दोनों पूरब का रब और दोनों पश्चिम का रब, तो तुम

दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? उसने दो समंदर बहाए के देखने में मालूम हो मिले हुए, और है उनमें रोक के एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकता, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? उनमें से मोती और मोंगा निकलता है, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? और उसी की है वो चलने वालियां के दरिया में उठी हुई है जैसे पहाड़, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? कुल

ऐ जिनो इंसान की ग्रोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और जमीन के करारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, जहां निकल कर जाओगे उसी की सल्तनत है, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। तुम पर छोड़ी जाएगी बेधुएं की आग की लपट और बेलपट का काला धुआं, तो फिर बदला न ले सकोगे, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल सा हो जाएगा जैसे सुर्ख निरी, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

0: तो उस दिन गुनहगार के गुनाह की पूछ न होगी किसी आदमी और जिन से, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे तो माथा और पांव पकड़कर जहन्नम में डाले जाएंगे, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। यह है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झुटलाते हैं, फेरे करेंगे उसमें और इंतहा के जलते खोलते पानी में, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।
1: वलिमन खाफ

और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। बहुत सी दानों वालियां, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनमें दो चश्मे बहते हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनमें हर मेवा दो दो किस्म का, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

और ऐसे बिछौनों पर तकिया लगाए जिनका अस्तर कनादीस का और दोनों के मेवे इतने झुके हुए कि नीचे से चुन लो तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उन बिछौनों पर वो औरतें हैं कि शौहर के सिवा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती, उनसे पहले उन्हें न छुआ किसी आदमी और न जिन ने, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। गोया वो लाल और मूंगा हैं तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

नेकी का बदला क्या है मगर नेकी, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे, और इनके सिवा दो जन्नतें और हैं तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे, नहायत सब्जी से स्याही की झलक दे रही हैं तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे, उनमें दो चश्मे हैं छलकते हुए तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे, उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे।

0: झुटलाओगे? हूरे हैं खेमों में पर्दा नशीन, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? उनसे पहले उन्हें हाथ न लगाया किसी आदमी और न जिन ने, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? तकिया लगाए हुए सब बिछौनों और मुनक्कश खूबसूरत चांदनियों पर, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम, जो अजमत और बुजुर्गी वाला।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। अभी अभी आपने कुरान पाक की चंद आयत मुबारका की तिलावत समाअत की। परवरदिगार आलम से दुआ है कि वह हमें इन आयतों के सुनने का अजर सवाब ज़रूर अदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। सामीन मोहतरम, कुरान की तिलावत से अल्लाह ताला की अजमत और कुदरत का एहसास पैदा होता है और ईमान ताज़ा होता है। कुरान इंसान को नेकी, सच्चाई, इंसाफ और कामयाबी का रास्ता दिखाता है। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, वहाँ दीनी और रूहानी माहौल पैदा होता है और अहले खाना को नेकी की तरगीब मिलती है। सामीन, आइए एक हमद समात करते हैं।

बल्कि आखिरत के साथ साथ इस दुआ के इस दुनिया के सवर जाने का भी बताता है। हमारे दीन में इस जहान की भलाई भी अल्लाह से मांगने का बताया गया और उस जहान बाकी की भलाई उसकी अच्छाई वो भी अल्लाह से मांगने का बताया गया। यानी ये जामे है बैन दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत को यकजा करने वाला दीन, दोनों की खुशियां अता करने वाला, इंसान की दोनों जहानों में फिक्र करने वाला। और इसकी दलील ये हदीस पाक भी है जिसका मतन हमने आपके सामने अभी पढ़ा, अभी इंशाअल्लाह उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, जिसके एंड पे हुजूर ने दुआ सिखाने के बाद फरमाया तजमाउ लक दुनिया का व आखिरा तक, कि ये दुआ और ये कलिमात तेरे लिए दुनिया और आखिरत जमा कर देंगे। यानी दुनिया भी मिल जाएगी, दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी, दोनों सवर जाएंगे, ये जहां भी और वो जहां भी। तो ये इस बात की वाज़े और रोशन दलील है कि हमारे दीन में दोनों को सवारने का इंतज़ाम है और दोनों की फिक्र है, और ऐसे असबाब हैं कि जिससे दोनों में इंसान को भलाई अता हो, सुकून हो, और उन असबाब में से एक दुआ भी है। वो दुआएं जो हुजूर सलाम ने सिखाई, जिनसे बयक वक्त दुनिया भी सवर जाती है और आखिरत भी सवर जाती है। चुनाचे सही मुस्लिम की कोर रिवायत में ये है, इसके रावी भी तारिक हैं, अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने हुजूर सलाम से सुना, व अताहु रजुलुन कि हुजूर के पास एक शख्स आया, फ़काल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ अकूल, और पूछा कि या रसूलल्लाह हीन असअलु रब्बी, मैं जब अपने परवरदिगार से मांगूं सवाल करूं तो उस वक्त क्या कहूं, कौन से कलिमात कहूं, किन अल्फाज से दुआ मांगूं। फ़काल कुल, तो फरमाया कहो अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वआफिनी वरज़ुक़नी। आपने फरमाया यूं कहो कि ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पे रहम फरमा, मेहरबान हो जा, मुझे आफियत सिक्योरिटी दे दे और मुझे रिस्क हलाल दे दे। फ़इन्नहा उलाई तजमा लक दुनिया का व आखिरा तक, क्या खूब फरमाया, फरमाया कि बेशक ये कलिमात यानी मग़फ़िरत, रहमत, आफियत और रिज़्क तेरे लिए तेरी दुनिया और आखिरत को जमा कर देंगे। इसमें दुनिया भी आ गई

हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि आप इल्म के साथ अमल को भी ज़रूरी समझते थे। आपके नज़दीक सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफ़ी नहीं बल्कि इल्म पर अमल करना भी ज़रूरी है। आपने ज़ाहिरी उलूम के साथ अपने अखलाक और रूहानी ज़िंदगी की इस्लाह पर भी तवज्जो दी। आपने इबादत, तक्वा, सब्र और नफ्स की इस्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। आपने एक तवील अरसा अपने आप को संवारने और अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करने में गुजारा। बाद में आपने अपनी तालीम और तजुर्बात को लोगों की इस्लाह और रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया। आपकी ज़िंदगी हमें बताती है कि सच्चा इल्म वो है जो इंसान के किरदार को बेहतर बनाए। एक आलिम और तालिब इल्म को चाहिए कि वो अपने इल्म के ज़रिए दूसरों के लिए फ़ायदा और भलाई का सबब बने। मोहतरम सामीन, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमी ज़िंदगी हमें इल्म हासिल करने का अजीम सबक देती है। हमें अपनी ज़िंदगी में इल्म को अहम मकाम देना चाहिए। मुश्किल हालात को तालीम के रास्ते की रुकावट नहीं बनाना चाहिए। अपने असातिज़ा का अदब और एहतराम करना चाहिए। कुरान और सुन्नत के इल्म को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ इल्म हासिल करना

काफ़ी नहीं बल्कि उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। हमें अपने अखलाक को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चाई, दयानतदारी, सब्र और आजजी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेक बुज़ुर्गों की अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम सामीन, सबाल खैर के आखिर में आइए रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। अभी के लिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

94.95 Wave, from 7 a.m. to 8 a.m. Jenny Seyaranga.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: आवो हमारी साथे.
2: आवो हमारी साथे एंड 10 वागीने बस 37 मिनट. सो हैविंग अ ब्यूटीफुल टाइम एंड जबरा फैन बस बनी ने रहो पोता ना कारण के आई बिलीव दैट जारे तमे पोता ना फैन बनशो ने त्यारे बीजा लोको तमने पसंद करशे इजंट इट. सो जस्ट आपणे कहीए ने के आपणा फेवरेट माणसोना लिस्ट मां पहेलू नाम आपणू होवू जोईए. जस्ट बी योर ओन फेवरेट पर्सन. लाइफ मां खटास मीठास कड़वास नमकीन चाल्या करे बट देन दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ. तमने रोजे रोज कोई खीचड़ी खवड़ावे तो केवी रीतना फावे. पण आपणे कहीए ने के कोकवार लाइफ मां थोड़ू टेस्ट पण होवो बहु जरूरी छे. देन ओनली द लाइफ बिकम्स खाटो मीठो संसार. सो कमिंग अप विथ द ब्यूटिफुल ट्रैकर रेड रासनू आ गीत पॉल पटेल एंड जानवी श्रीमनकसना वॉइस मां.

0: 94.6, 98.2 તમે સાંભળી રહ્યા છો RM3 રેડિયો.
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3.

भक्ति में शक्ति। नमस्कार श्रोताओं, भक्ति की शक्ति हमें ध्यान की शक्ति देती है। हम कभी कभी अपने बच्चों को कहते हैं ना कि बैठ के थोड़ी देर प्रभु में ध्यान लगाओ, तो ये जो भक्ति की शक्ति है वह धीरे धीरे हमारी कंसंट्रेशन अर्थात एकाग्रता को बढ़ाती है। धीमहि शब्द का अर्थ ही ये है, ध्यान करना, और ध्यान में बड़ा ही चमत्कार है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से किचन में कुछ काम करिए, ध्यान से मशीन चलाइए, ध्यान से बच्चे को पढ़ाइए, ध्यान से खुद अध्ययन करिए, तो बस चमत्कार होने लगता है, उसी काम में रुचि पैदा होने लगती है। तो यह जो भक्ति की शक्ति है उसका जो चरण है ध्यान, वह व्यक्ति के भीतर आत्मशक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि ध्यान बीज है और सफलता उसका फल है। जैसे बीज धीरे धीरे विकसित होता है, ठीक ऐसे ही ध्यान का बीज भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ धीरे धीरे विकसित होता है और व्यक्ति की आत्मा को उन्नत करता है। सुनते हैं श्रोताओं इस प्यारे से भजन को।

बहुत बार आपने देखा होगा श्रोताओं कि हम मिट्टी में बीज डालते हैं तो अंकुर ही नहीं निकलता है। उसका कारण होता है कभी बीज में शक्ति नहीं तो कभी जमीन की मिट्टी अच्छी नहीं, कभी ऋतु अनुकूल नहीं तो कभी उसे खाद पानी नहीं मिला, या कभी चिड़िया या कोई पशु या कोई कीड़े इत्यादि उसे नष्ट कर देते हैं। लेकिन यह सब समस्याएं हैं, पर यह निश्चित है कि पेड़ बीज से ही उगेगा, पेड़ बीज से ही आगे बढ़ेगा। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर बहुत सी भावनाएं, मनोकामनाएं, इच्छाएं, वे हमारे उस ध्यान के बीज को नष्ट करने का प्रयास करती हैं। लेकिन जो भक्ति की शक्ति को समझता है, जो पहले प्रभु से जुड़ जाता है, उसके इस ध्यान के बीज को ये सारी इच्छाएं, कामनाएं नष्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि भक्ति में एक विशेष शक्ति है। तो आइए सुनते हैं।

चाम पिया मोरी रंग दे सुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है श्याम रंग से, कि श्याम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया। पिया कौन है? पिया भी श्याम है। तो यहां शब्दों के

श्रोताओं, किसी भी कार्य को जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारी कल्पना में आता है, फिर हम उसकी योजना बनाते हैं, अपने मन की चित्तवृत्तियों को इकट्ठा करते हैं। तो ये जो ध्यान है ना, जो कुछ बिखरा पड़ा है उसे इकट्ठा करता है। लेकिन ध्यान का अभ्यास कौन कर पाता है? जिसके भीतर श्रद्धा हो। और श्रद्धा किसके भीतर पैदा होती है? जो प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगाता है। इसीलिए पतंजलि भी कहते हैं, चित्त वृत्तियों का जो निरोध करता है वही योग है। तो ध्यान के द्वारा साधना शुरू होती है, मन में एकाग्रता आती है, चित्त स्थिर होता है और हम मन के ऊपर नियंत्रण कर पाते हैं। लेकिन मन तो चंचल है, कितना भी नियंत्रण करो इधर

इधर से उधर बंदर की तरह कूदता फांदता रहता है। पर यदि नाम जप और प्रभु की भक्ति में मन लगा दिया जाए तो साधना की गली में चलना आसान हो जाता है। तो आइए सुनते हैं।

सूरदास जी ने गज और ग्राह की कथा का उल्लेख किया है। गज नदी में पानी पीने के लिए गया और ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और नदी की ओर खींचने लगा। जब गज के नाक कान पानी में डूबने लगे तो उसने प्रभु को स्मरण किया, प्रभु को याद किया और प्रभु ने आके उसकी रक्षा की। लेकिन यदि हम गहराई में जाएं तो इस भजन में केवल गज ग्राह की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। हम सब इस संसार रूपी सिंधु में आते हैं और यहाँ माया मोह रूपी ग्राह हमें पकड़ लेता है और उससे छूटने का बस एक ही तरीका है कि हम भगवान का नाम लें और भगवान हमारी रक्षा।

श्रोताओं, धीरे धीरे जब ध्यान लगता है, प्रभु भक्ति बढ़ने लगती है, मंत्र जाप बढ़ने लगता है, तो अंतःकरण में जो असाधु वृत्तियां हैं, जो पूरी प्रवृत्तियां हैं, वो सारी छंटने लगती हैं। जैसे जब बारिश बहुत तेज हो जाए तो बादल छंट जाते हैं, धूप निकल आती है। ठीक ऐसे ही जो हमारी चित्त वृत्तियों के बादल चारों ओर मंडराते रहते हैं, वे धीरे धीरे छंटने लगते हैं और ध्यान करते करते हम उसे धारण करने लगते हैं, अर्थात प्रभु हमारे चित्त में उतरने लगते हैं और हमें अपनी इस भक्ति से एक अनुराग होने लगता है। यदि प्रभु का नाम ना मिले तो बेचैनी होने लगती है। तो मन देखिए बदल गया ना, यही भक्ति की शक्ति है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से। गीता जी, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस में हायर स्कूल सर्टिफिकेट यानी HSC की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस साल 8,000 से ज्यादा उम्मीदवार HSC की परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। आज छात्र फूड स्टडीज की परीक्षा दे रहे हैं। 13 साल के अंतराल के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन NICE कार्यक्रम फिर से शुरू किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा की भावना और मिलजुल कर रहने यानी सामाजिक एकजुटता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। 3 दिनों के ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षक नवंबर में ग्रेड 8 के 200 छात्रों के साथ काम करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे ताकि उनमें नागरिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति योगदान की भावना विकसित की जा सके। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से आज CCID की ओर से चल रही मुस्तासलीक्स मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले 1 सितंबर को उनसे करीब 2 घंटों तक पूछताछ की गई थी। पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केटों तक सब्जियों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के अनुसार कीमतों में ये बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़ी है, जिनसे खेती की परिस्थितियों को प्रभावित किया गया है। ठंड, तेज हवाएं और पानी की कमी के कारण पौधों की वृद्धि धीमी हो रही है और बाजार में उपलब्ध सब्जियों की मात्रा भी कम हुई है। और विदेशी खबरों में हाल ही में विज्ञान पत्रिका साइंटिफिक डेटा में छपी एक बड़ी और चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दशकों में हमारी धरती तेजी से गर्म हो रही है, जिसका सबसे बुरा असर पोलर इलाके यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर पड़ रहा है। इसकी वजह से 1979 से अब तक दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर करीब 1 इंच यानी 3.1 सेंटीमीटर से बढ़ चुका है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। लाख्वाजे मोताइलोंग तेगूज में 68 साल की 68-year-old की श्रीमती गीता इमरित पैदाइश नाम बर्टन और जो माला से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर लाख्वाजे मोताइलोंग तेगूज से उठाकर टेमिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। मलवी लेन सादाली वाकवा में 54 साल के 54-year-old के जनाब मोहम्मद ईशान लाटोना, जो ईशान से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 2:30 PM उनकी बहन सफरीफा रजब के घर मलवी लेन सादाली वाकवा से उठाकर सादाली वाकवा की कल्बे इस्लाम मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर। दिन के 12:12 हो चुके हैं। रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का, सभी श्रोताओं का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें अभी से लेकर दिन के 2 बजे तक हम आए हैं आपका साथ देने के लिए। तो जहां कहीं से भी जुड़े हैं, आशा करते हैं कि आज का ये दिन आप सभी के लिए लाजवाब रहेगा, मदमस्त रहेगा गीतों की तरह। और बिल्कुल हवाएं कुछ थमी हैं, पर चलिए गीतों के प्रवाह को हम रुकने नहीं देंगे। और अगर आपका भी दिल कर रहा है कुछ लाजवाब गीतों के साथ जुड़ने का, और आपके यहाँ मौसम कैसा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे गीतों को सुनकर, ज़रूर हमें बताइए 4028080 पर। जी हाँ, 4028080 नंबर है रेडियो मनोरंजन के लहरों पर। और बिल्कुल आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं ऑन 5250620। चलिए इसी के साथ दिन बहारों का खिल चुका है और लाजवाब गीतों के इस सफर में कुछ ऐसे ही मज़ेदार गीतों का साथ हम भी देंगे आपका साथ। आशा जी और महेंद्र कपूर की प्यारी सी आवाज़, फिल्म है वक्त।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: बिल्कुल, अगर जिंदगी में प्यार ना हो तो दिन चाहे कितना भी बहारों से भरा हुआ क्यों ना हो, मायूसियत हर ओर नजर आती है, मानते हैं कि नहीं। पर चलिए, आपका मूड बिल्कुल बढ़िया बनाने के लिए कुछ ऐसे ही मज़ेदार गाने हम चुनकर लाए हैं बिल्कुल आपके लिए। और कई बार कहते हैं ना कि किसी की मुस्कुराहट को देखकर भाई दिल उस पर लुट जाने को मन करता है, ऐसी मुस्कुराहट पाला करे जो सीधी दिल से निकले और बस अपने आप को आईने में देखिए और एक प्यारी सी मुस्कुराहट दीजिए उस इंसान के लिए जो वो आईने में खड़ा है। और इसी के साथ विश्वास रखिए, जिंदगी में हमेशा जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इसी विश्वास के साथ विश्वास का ये गाना आपके नाम करते चलेंगे। यहाँ पर वैसे हम आपको बता

चले मॉरिशस भर में तो लोग हमारे साथ जुड़े ही हैं, पर साथ ही साथ दूर परदेश में बैठे किरण पुरी जी और उनका सब फैमिली हमारे साथ जुड़ा हुआ है कनाडा वैनकूवर से। इस वक्त किरण पुरी हैं, साथ है जीजी लाल, नरेंद्र कुमार निंदी और काला राम कारीगर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत थैंक यू। एंड बस आशा करते हैं कि ये गीतों का सफ़र आप इन्जॉय करेंगे वहाँ दूर परदेश में बैठ कर अपनी धरती के गीतों को सुनते हुए। MBC रेडियो, बस कहीं पर भी आप चले जाएं आप उनके साथ जुड़े रह सकते हैं www.mbcradio.tv के माध्यम से। और यहां पर माधुरी जी भी बहुत ही प्यार से हमारा साथ दे रही हैं। सो जी हां, अगर आप भी आपके काम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमें बताइए, हमें पता तो चले कि आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। 5250-6200। डेफिनेटली अभी लंच आवर है तो भाई बॉस की किचकिच तो सुननी नहीं है, एंजॉय कीजिए हमारे गीतों को। 4028070 पर डेफिनेटली आप हमारे साथ कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सो दिस सॉन्ग गोज आउट ऑल फॉर ऑल ऑफ यू।

भाई पुराने गीतों का ये सफर है, इसीलिए तो सुहाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड जो होता है वो कभी पुराना नहीं होता। और वैसे यहाँ पर आपको बताते चले, कनाडा से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां पर इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं एंड आप हमारे लिए जाग रहे हैं, ऐसा आपने कहा, थैंक यू सो मच। ऐसे गीत आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। एनीवेज अगर आपके यहाँ रात है, हमारे यहाँ दिन है, इसीलिए कुछ ऐसे ही मज़ेदार गाने, वरना हम आपके लिए कुछ ऐसी गज़ल भी बजाते जो आपकी रात को और भी हसीन बनाते। सच में एक समय होता है जब शांत मौसम हो, शांत समय हो, और ऐसे में शांति वाले गाने बहुत अच्छे लगते हैं। पर अभी तो हालांकि यहाँ मॉरिशस में सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम है, अब मैं ऐसे गाने चलाऊंगी तो डेफिनेटली लोग सो जाएंगे काम पर और फिर मुझे कोसेंगे कि भाई मेरे वजह से उनका काम ठप हो गया। सो बैक टू सुहाना सफर एंड यहां पर हमारे साथ लवली मनीता जी भी फ्रांस से जुड़ चुकी हैं। थैंक यू सो मच। आप भी बस गानों को सुन रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, एंड डेफिनेटली आपने जिस गाने की फरमाइश की है हम अभी थोड़ी देर में चलाएंगे। एंड आपकी प्यारी ममा सुमांती बहने हैं, आरती, सचिता, बबीता, रेखा, अक्षय, साथ है ऋषभ, अनिकेत, ऋतिक, दीक्षा, शिक्षा एंड अश्लेषा फ्रॉम सेंट जूलिया विलेज। आप भी हमारे प्रोग्राम को हमेशा एंजॉय करते हैं, थैंक यू सो सो मच। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मोताइलोंग से जुड़ चुकी हैं गीता जी, और वो भी पुराने गीतों को बेहद बेहद पसंद करती हैं। तो चलिए आपने

भी कुछ ऐसा ही एक लाजवाब सा गाना चुनकर हमें बताया है। जरूर आपके नाम करेंगे ये अगला गीत। और यहाँ पर ललिता जी भी जुड़ चुकी हैं कालबास से। चलिए ललिता जी, आपका भी गाना इज ऑन द वे। अभी थोड़ी ही देर में हम आपके गाने को हमारी इस लिस्ट में शामिल करेंगे। सो हैव अ नाइस टाइम। कमिंग अप लता जी का ये प्यारा सा गीत। फिल्म है आखिरी खत्म।

में से इस वक्त ललिता जी कालबास से जुड़ी हुई हैं अपने सभी नाती पोतों के साथ एंड एंजॉयिंग द लवली मिक्स ऑफ म्यूजिक. यहाँ पर बिल्कुल गानों का सिलेक्शन, कुछ गाने हमारी ओर से, कुछ गाने आप हमें फरमाइश कर रहे हैं. सो डेफिनेटली मेकिंग द प्लेलिस्ट मोर इंटरेस्टिंग. आपके लिए राजहट का ये गाना है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में. वैसे कुछ पुराने गाने हैं 50s 60s के दौर के. वैसे परी और परी उषा आई थिंक दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है. ब्रह्मस्थान से आप जुड़ी हुई हैं. सो होप आपके लिए भी कुछ अच्छे वाले गाने हम जरूर चलाएंगे इस आवर में, अगले आवर में हमारे साथ बने रहे 2 बजे तक.

जो है वो केवल मॉरिशस में नहीं वर्ल्ड ओवर में है इस वक्त. इंडिया जलंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील विज. एंड थैंक यू टू बी ट्यून्ड विद रेडियो मनोरंजन. हमारे साथ जुड़े रहे. कुछ पुराने गीतों का ये सफ़र है, सुहाना सफ़र. दो बजे तक मैं हूँ रत्ना, आज आपके साथ जुड़ी हुई.

भाई समय जब ऐसे ऐसे गाने चले ना तो समय कैसे फिसल कर निकलता है पता भी नहीं चलता। और जिंदगी के सफर में रूठना मनाना लगा रहता है, पर इसके वजह से जिंदगी को गुमसुम ना बनाए, क्योंकि ये जो जिंदगी का सफर है, अगर बातें ही बंद हो गई, नाराजगी को हम खींचते रहे, तो जिंदगी जीनी कितनी ज्यादा भारी हो जाएगी। सही कहा ना भाई, हमारा रूठना मनाना तो लगा रहता है, हमारा रूठना मनाना तो लगा रहता है, हमारी आंखों में प्यार, उनके चेहरे पर गुस्सा तो सदा रहता है। So with this coming up again, एक बहुत ही मजेदार गाना है, ये है गीता दत्त और हेमंत कुमार साहब की एक ऐसी अनयूजुअल जोड़ी का गीत, बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म है दुनिया झुकती नहीं। कई बार कहते हैं ना कि भाई जिंदगी में झुकना सीख जाओ, दुनिया कभी नहीं झुकेगी। एनीवेज चलिए, प्यारे प्यारे गानों का सफर है, मैजिकल मोमेंट्स है सुहाना सफर के साथ।

किसी ने हमसे कहा कि कहां से ढूंढ लाती हैं ये बातें। ढूंढना क्या है भाई, जो दिल से निकलता है वही आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ यहां पर किसी ने हमसे ये भी कहा कि गाना सुनते ही, प्रोग्राम सुनते ही, हमारी आवाज सुनते ही उनकी भूख मिट गई। ओए होए, ऐसा ना करें, हेल्थ खराब हो जानी है जी। बिल्कुल, आप तरोताज़ा रहें, गीतों को सुनते रहें। गीतों का भी कहते हैं ना कि एक डोज होता है, गीतों से भी आदमी मदहोश होता है। ओए होए, ये तो हो गई शायरी। और चलिए, यहाँ पर फुलवंती जी बहुत ही प्यार से जुड़ी है वाकवा से, आपके पति देवानंद, साथ है भावना, आपकी प्यारी बेटी और रोशन हमेशा जुड़े रहते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर गायत्री जी, आपके नाम किया था हमने ये गीत गुमसुम सा ये जहाँ, सैपिया से आप हमेशा जुड़ी रहती हैं, आपकी प्यारी बहन अमृता, साथ है उनकी तीन प्यारी बेटियाँ नेहा, क्षिति, दिव्या, और आपकी प्यारी भाभी मीरा, जिनकी हैं दो प्यारी बेटी गिरिशा और मेधा, और साथ है सुधीर, कमलेश, अमृता जी के बेटे और बहू सुधा। जी हाँ, और इसी के साथ यहाँ पर नलिनी जोखन भी वाकवा से हमारा साथ बहुत ही प्यार से दे रही हैं, एंजॉय कर रही हैं गीतों को। और बिल्कुल ये है रेडियो मनोरंजन का प्रसारण, और आशा करते हैं कि आप रेडियो मनोरंजन के कार्यक्रमों को बहुत ही प्यार से पसंद करते होंगे। तो चलिए यहाँ पर आपके नाम करेंगे दिल अपना प्रीत पराई का ये बहुत ही मशहूर सा गाना। इस गाने को आप हजारों बार सुन लो लेकिन ये गाना कभी पुराना लगता ही नहीं। हम झूठ कह रहे हैं? खुद सुन लीजिए।

सो यहाँ पर मनीता जी आप कहती हैं कि गानों का सिलेक्शन भाई लाजवाब, यहाँ पर कुछ गाने हमने जैसे कहा ना, कुछ गाने आपकी ओर से ही हम यहाँ पर बजा रहे हैं, बट डेफिनेटली जब गाने बजते हैं तो यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। और बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं श्यामा जी, हमेशा साथ देती हैं, पुराने गीतों को वे भी बेहद पसंद करती हैं।

रघुनंदन जी की भी जो सिलेक्शंस होती है वो बहुत ही हटकर, कुछ ऐसे अनसुने गानों को सुनने का हमें भी मौका मिलता है। तो चलिए, जो ये अगली पेशकश है बिल्कुल आप ही की पसंद पर हम चला रहे हैं, मुकेश साहब की ये आवाज़ है। और साजिद जी, जहाँ रोज हिल से हमें कहते हैं कि भाई भूख मर गई, वहाँ पर यहाँ बिल्कुल कनाडा से किरणपुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे तो कह रहे हैं कि गाना सुनकर उनकी भूख और बढ़ गई। चलिए, खाते पीते रहिए और कानों को भी दीजिए संगीत का भोजन। सुहाना सफर हैपनिंग राइट ओवर हियर रेडियो मनोरंजन पर। और बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे 1 बजे के समाचारों के साथ। सफर जारी रहेगा 2 बजे तक।

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आस्था से आस्था आपको नमस्कार।
2: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस और रीयूनियन के बीच ड्रग्स के कथित नेटवर्क की जांच में एक नया विवाद सामने आया है। मॉरिशस बॉ काउंसिल ने उन आरोपों को गंभीर बताए हैं जिसके अनुसार पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध गुलशन गोविंद पर अपना वकील बदलने का दबाव डाला था। ये मामला सांसद वेरोनिक लेगोविन के पति से जुड़ा है। उनके वकील रूबेन मुंगापिले को निशाना बनाते हुए वीडियो भी प्रसारित किए गए हैं। बॉ काउंसिल का कहना है कि अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये बचाव पक्ष के काम में रुकावट डालने की कोशिश है। ऐसी स्थिति में पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने बॉ काउंसिल के बयान का संज्ञान लिया। उनका कहना है कि सभी आरोपों को पूरी जांच की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ आज सुबह 10:30 के करीब लाइन बैरक्स पहुंचे। उन्हें फोन पर कथित जासूसी के मामले की जांच के सिलसिले में बुलाया गया है। इस मामले को मिसे मुस्ताज के नाम से जाना जाता है। प्रवीण जगनाथ के साथ उनके वकील राउफ गुलबुल और आइवान कोलेन दाविलू भी मौजूद हैं। जांच बातचीत को गुप्त रूप से सुनने वाले कथित उपकरणों की खरीद और इस्तेमाल को लेकर की जा रही है। जांचकर्ता ये जानना चाहते हैं कि इन उपकरणों की खरीद की मंजूरी किसने दी थी और इसका इस्तेमाल किस मकसद से किया गया। ये जांच अक्टूबर 2024 से सामने आई कही कथित फोन बातचीत की रिकॉर्डिंग्स के बाद शुरू हुई थी। मॉरिशस और रोड्रिग्स में 273,000 से अधिक लोगों को बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है। सोशल सिक्योरिटी मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इनमें 266,977 लाभार्थी मॉरिशस में और 6,044 रोड्रिग्स में हैं। 60 से 89 साल के 267,686 लोगों को हर महीने 15,555 रुपए मिलते हैं। 90 से 99 साल के 5,093 लोगों को 23,550 रुपए में दिए जाते हैं। वहीं 242 शतायु लोगों को हर महीने 28,735 रुपए मिलते हैं। पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू होगी। इसे 60 साल की उम्र से लिया जा सकेगा, लेकिन तय उम्र से पहले पेंशन लेने हर महीने 0.5% की कटौती होगी। सरकार ने बजट में घोषित आय की जांच की शर्त को लागू नहीं करने का फैसला किया है। विदेश स्तर की खबरों में नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि 22 दिन बाद भी लापता लोगों का पता नहीं लगाया जा सका है। वहीं अभी भी मलबे में दबे शव निकल रहे हैं। इस आपदा में लापता लोगों की संख्या 6,000 के पार हो चुकी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। मुलवी लेन सदाली वाकवा में 54 साल के 54 years old के मोहम्मद ईशान लातुना इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 2:30 उनकी बहन शफरीफा रजब के मकान सदाली वाकवा से निकालकर नमाज जनाजे के लिए कई इस्लाम सदाली वाकवा के मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
3: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
4: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: Radio, radio, radio.
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर। सुहाना सफर और बिल्कुल इस वक्त दोपहर के 1:10 हो चुके हैं। रेडियो मनोरंजन पर मैं हूँ रत्ना, आपका साथ दे रही हूँ। सो होप यू हैविंग अ ब्यूटीफुल टाइम। और यहाँ पर मनीता जी फ्रांस से जुड़ी हुई हैं। डेफिनेटली मनीता जी, आपने रंग बिरंगी फिल्म का गीत मांगा है और जो 80s के ज़माने का गाना है, तो चलिए इस सेगमेंट में कुछ 70s-80s के तरानों को भी हम आपके लिए चलाएंगे। और यहाँ पर अनुराधा पौडवाल और आरती मुखर्जी की प्यारी सी आवाज़ में रखा हुआ ये गीत। कहते हैं ना कि जिंदगी के कुछ पल हसीन होते हैं, कुछ बहुत हसीन होते हैं, कुछ गमगीन होते हैं, पर इस सफ़र में बस यही तो यादें बनाते हैं। तो चलिए साथ मिलकर कुछ यादों को ताज़ा करते हैं, कुछ अच्छी यादें सजाते हैं इस गीत के साथ।

इस वक्त 1:22 हो चुके हैं विद लवली मिक्स ऑफ म्यूजिक. यहाँ पर नंदा जी पाई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. क्रांति फिल्म का ये गाना उन्होंने अपने सभी परिवार के लिए मांगा, बेटे बहू, चार नाती पोते और साथ ही साथ पुनीता और गणेश परिवार के लिए. सो होप कि आपको ये गाना सुनकर अच्छा लगा होगा. माला जी काटरबोन से जुड़ी हुई है, एंजॉय कर रही है हमारे प्रोग्राम को. एंड जी हाँ, मैं हूँ रत्ना. सभी पूछ रहे हैं वेदिता कहाँ है. जी हाँ, वेदिता छुट्टी पर है और आज मुझे मौका मिला है आपकी सेवा में उपस्थित होने के लिए. तो बस रत्ना का साथ है दिन के 2 तक. और यहाँ पर जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं 11 बिहारी जी, उनकी प्यारी पत्नी है सविता, साली साहिबा है गीता और उनके दोस्त हैं मिसेस वर्धा, साथ है शीतल, रानी, सुनील और सभी सुनने वालों के नाम. अगले गीत को बस अभी थोड़ी ही देर में, जिस गीत की फरमाइश आप कर रहे हैं हम ज़रूर चलाएंगे अभी थोड़ी ही देर में. एंड यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही प्यार से साथ दे रही हैं उषा बीमा जो हैं पॉइंट साहब से. और अभी थोड़ी देर में आपका भी गाना हम ज़रूर यहाँ पर चलाएंगे, पर उससे पहले लेते हैं ये अगला गाना. और ये गाना है देवानंद साहब पर फिल्माया गया हम नौजवान फिल्म से. और वैसे आपको बताते चले कि इस फिल्म में तब्बू ने एज देवानंद साहब की बेटी के रोल का रोल अदा किया था. और देखा जाए तो तब्बू की ये थी डेब्यू फिल्म, पर हालांकि ये इसमें लीड रोल पर नहीं थी, उनकी बेटी का रोल उन्होंने किया था. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देवानंद साहब का जन्मदिन भी इसी महीने में पड़ता है. जी हाँ, 26 तारीख को. एनीवेज, इसी के साथ चलिए. वीना जी, आप हैं नुवलफॉन्स से और आपने इस गीत की फरमाइश की है आपके प्यारे पति देव के लिए. जी हाँ, पति देव देव के लिए. और इसी के साथ ये गाना हम बहुत ही प्यार से आपके लिए चलाने जा रहे हैं. तो होप यू विल हैव अ नाइस टाइम विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक.

कहते हैं ना कि जब भी आप किसी से प्यार करते हैं और उनसे अगर कभी कोई वादा कर लेते हैं तो मरते दम तक जी जान से उस वादे को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ऐसे ही होना चाहिए, मैं समझती हूँ। किसी बहुत महान पुरुष ने कहा कि अगर आप प्यार करते हैं और आपने अगर किसी से वादा किया है तो वादा पूरा कीजिए। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहकावे में आकर कभी कोई वादा ना करे कि पूरा करने के लिए फिर आप कुछ भी करने के लिए मतलब मजबूर हो जाए, ऐसा तो ना ही करें। और चलिए इसी के साथ हंसी खुशी के साथ जिंदगी को बताते हुए उषा बीमा जी, आप हैं पॉइंट साहब से और आपने इस अगले गीत की फरमाइश की है, फूल और पत्थर फिल्म से लिया हुआ ये गीत है आशा जी की प्यारी सी आवाज़ में। वैसे आपको ये भी याद दिला दे, 8 तारीख को, इसी महीने की 8 तारीख को आशा ताई का जन्मदिन था। और वैसे हमारे बहुत सारे रेडियो लिसनर्स हैं जो आशा ताई के बहुत बड़े फैन हैं, तो चलिए उन सभी के नाम करेंगे ये बहुत ही नशीला सा गाना। भाई दिन चढ़ा हुआ है, शराब पीने की बातें ना करना, पानी पीजिए पानी, सेहतमंद रहना है तो पानी बेस्ट है।

0: बिल्कुल साथ ही फिल्म का ये गीत था मुकेश साहब और सुमन कल्याणपुर की प्यारी सी आवाज में और लता जी से प्यारी सी आवाज मिलती जुलती हुई सुमन कल्याणपुर जी की। चलिए इसी के साथ गीतों का ये सफर जारी है, सुहाना सफर दोपहर के दो बजे तक।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
0: वैसे इस वक्त प्रेमिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं काट्रोबोन से। उनकी प्यारी बेटी दिव्या का जन्मदिन था किसी दिन को, आपने तारीख तो नहीं बताई पर कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही उनका जन्मदिन रहा। तो दिव्या आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप ओकुले की रहने वाली हैं, आपके पति प्रवेश और आपके दो प्यारे बेटे लव और कुश। देवनारायण परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार, साथ ही साथ बिसेसार परिवार की ओर से भी ढेर सारा आशीर्वाद आपके नाम, आपकी तीन प्यारी मौसियां और बहनें हैं नीना, जीजू हैं जो साथ इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं, रिया और यश की ओर से भी आपको बहुत सारा प्यार, आपकी प्यारी बहन वंदना और भाई है प्रकाश। और चलिए प्रेमिला जी, आपने भी अपना जन्मदिन अभी कुछ दिन पहले ही मनाया, तो आपको भी हमारी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। और इसी के साथ आपको ये गाना बेहद बेहद पसंद है, साजन बिना सुहागन फिल्म का ये गीत आरती मुखर्जी, चंद्रानी मुखर्जी और शिवांगी की आवाज़ में। तो चलिए इस गीत को हम माँ बेटी के नाम करते हैं।

फिल्म यकीन का ये गीत लता जी की प्यारी सी आवाज़ और इसी के साथ सुहाना सफ़र। और यहाँ हरीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुब्बासा से और बिल्कुल आज 75 ईयर्स के हो चुके हैं। हरीश जी आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयाँ और बिल्कुल आपकी प्यारी पत्नी इंदिरा जो हमेशा आपके सुख दुख की साथी रही है, जिसे आप बेहद प्यार करते हैं और बहुत ही प्यार से इंदु बुलाते हैं। और जी हाँ, आपकी शादी को भी काफी लंबा अरसा बिल्कुल ऊपर वाले जब भी ऊपर वाला जब भी जोड़ी बनाता है बस चुनके बनाता है और उस जोड़ी को संभाले रखना हमारा काम होता है। और इस आखिरी गीत को हम करेंगे आप दोनों के लिए, रब ने बना दी जोड़ी का ये टाइटल ट्रैक जो आपको बेहद बेहद पसंद है। और बिल्कुल ये सफर बहुत ही हसीन बहुत ही लाजवाब रहा, आपके गीतों के सिलेक्शन हमारे गीतों के सिलेक्शन के साथ जुड़े और ये सफर कब खत्म हुआ समझ ही नहीं आया, पता भी नहीं चला। जिंदगी का सफर भी ऐसे ही होना चाहिए, सुख दुख के साथ ही बने हम सफर बने और सफर भी बहुत ही प्यार से कट ही जाएगा। चलिए इस गीत को साथ मिलकर सुनते हैं और इसी के साथ फिर मिलेंगे एक अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, आप सभी की शाम बहुत हसीन हो बस यही प्रार्थना करते हैं। और ठीक 2 बजे आप जुड़ेंगे समाचारों के साथ और समाचारों के बाद एक अगले कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे इसी माध्यम पर यानी रेडियो मनोरंजन पर। तो जुड़े रहे रेडियो मनोरंजन की लहरों पर, आपके लिए लाजवाब कार्यक्रमों का कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। और चलिए हंसते मुस्कुराते फिर मिलेंगे इसी सफर में कभी किसी और दिन। अपना ख्याल रखिएगा और रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस समय दोपहर के ठीक 2 बजे है। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।
1: नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस और रीयूनियन के बीच नशीले पदार्थों के कथित नेटवर्क की जांच में एक नया विवाद। मॉरिशस बॉ काउंसिल ने उन आरोपों को गंभीर बताया है जिसके अनुसार पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध गुलशन गोविंद पर अपना वकील बदलने का दबाव डाला था। ये मामला सांसद वेरोनिक लुगोविंद के पति से जुड़ा है। उनके वकील रुबेन मुहंगा पिले को निशाना बनाते हुए कुछ वीडियो भी प्रसारित किए गए हैं। बॉ काउंसिल का कहना है कि अगर ये आरोप सही जाते हैं तो ये बचाव पक्ष के काम में रुकावट डालने की कोशिश है। ऐसी स्थिति में पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने बार काउंसिल के बयान का संज्ञान लिया। उनका कहना है कि सभी आरोपों की पूरी जांच की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ आज सुबह 10:30 बजे से लाइन बैराक्स में हैं। उन्हें फोन पर कथित जासूसी के मामले की जांच के सिलसिले में बुलाया गया है। प्रवीण जगनाथ के साथ उनके वकील राव गुलबुल और आइवान कोलेंदावेलु भी मौजूद हैं। जांच बातचीत को गुप्त रूप से सुनने वाले कथित उपकरणों की खरीद और इस्तेमाल को लेकर की जा रही है। आपको बता दें कि जांचकर्ता ये जानना चाहते हैं कि इन उपकरणों की खरीद की मंजूरी किसने दी थी और इनका इस्तेमाल किस मकसद से किया गया। ये जांच अक्टूबर 2024 से सामने आई कई कथित फोन बातचीत की रिकॉर्डिंग्स के बाद शुरू हुई थी। मॉरिशस और रोड्रिग्स में 2,73,000 से अधिक लोगों को बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है। सोशल सिक्योरिटी मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें 2,66,977 लाभार्थी मॉरिशस में और 6,044 रोड्रिग्स में हैं। 60 से 89 साल के 2,67,686 लोगों को हर महीने 15,555 रुपए मिलते हैं। 90 से 99 साल के 5,093 लोगों को 23,550 रुपए दिए जाते हैं। वहीं 242 शतायु लोगों को हर महीने 28,735 रुपए मिलते हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। मॉरिशस में कुछ तरह के कैंसर के इलाज के लिए अब नैनो नाइफ नाम की नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। नेशनल सेंटर कैंसर सेंटर में इस तरीके से चुनिंदा मरीजों का इलाज पारंपरिक ऑपरेशन के बिना किया जा सकता है। इस इलाज में बहुत पतली सुइयों की मदद से कैंसर की गांठ को निशाना बनाया जाता है। इससे आसपास के स्वस्थ हिस्सों को कम नुकसान पहुंचता है और मरीज को ठीक होने में भी आसानी होती है। हालांकि ये इलाज हर मरीज के लिए नहीं। कैंसर की गांठ कितनी बड़ी है और मरीज शरीर के किस हिस्से में बीमार हैं और इसे देखने के बाद ही डॉक्टर फैसला करते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड लैमशांगलिन हर महीने हर 3 महीने मॉरिशस आएंगे। वे मरीजों के इलाज में सहयोग देने के साथ यहां डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी देंगे। नेपाल की स्थिति की बात। नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि 22 दिन बाद भी लापता लोगों का पता नहीं लगाया जा सका है। इस आपदा में लापता हुए लोगों की संख्या 6,000 को पार कर चुकी है। प्रभावित जिलों में दोबारा जांच के बाद लापता लोगों की लिस्ट में करीब 1,000 और नाम जोड़े हैं। नेपाल में अभी भी 6,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: Natya Kala, Rangon ki Bhasha, Bhavon ki Dhara, Jahan Manch par Har ek Kissa Hamara, Natak par Aadharit Karyakram, Natya Kala.
6: स्वागत करते हैं आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। नाट्य कला कार्यक्रम और मनोरंजन की दुनिया है भाई साहब, और मनोरंजन की दुनिया में बहुत सारे पहलू हैं जहाँ पे मनोरंजन के साधन मिलते हैं। मनोरंजन की बात हो रही है, कैसे हम भूल सकते हैं रंगमंच, नाट्य कला, जिस मंच के ऊपर समाज की सच्चाई दिखाई देती है, जिस मंच के ऊपर समाज

0: समाज को सुधारने की क्षमता दिखाई देती है। आज हम बात कर रहे हैं नाट्य लेखन के बारे में, नाटक के लेखन के बारे में। हमारे स्टूडियो में आज आए हुए हैं डॉक्टर शेख राजशेखर जी। आप आईसीसीआर चेयर है, एमजीआई में आप कार्यरत है। डॉक्टर शेखर जी, आपका हम स्वागत करते हैं।
1: आपका हार्दिक आभार।
0: वैसे आपके परिचय में हम क्या बोल सकते हैं कि आपसे हमारी मुलाकात होती रहती है, कभी साहित्य के प्रोग्राम में तो कभी नाटक के प्रोग्राम में। आप हिंदी को बढ़ावा देते हैं और कोई कसर नहीं आप छोड़ते। हिंदी की जब बात होती है तो नाटक उसका एक अभिन्न अंग होता है। हम जानते हैं कि आपने कहानियाँ लिखी है, नाटक लिखे है। आपके लेखन के बारे में हम जानना चाहेंगे, किन किन विधाओं में आपने कलम चलाई है।
1: सर्वप्रथम मैं अपने प्रिय श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपने पूछा कि मैं किन विषयों पर लिखता हूं, तो मेरा मानना है कि आज की जो सबसे ज्वलंत समस्या है वह दो है, अपनी संस्कृति की रक्षा करना और अपने जलवायु पर्यावरण की रक्षा करना। यदि हम आने वाले समय में यदि इन दो बिंदुओं पर सही ढंग से कार्य करें तो स्वाभाविक रूप से हम इस प्रकृति की भी रक्षा कर पाएंगे और अपनी संस्कृति को भी बचा पाएंगे। इस कारण से जब मैं लिखता हूँ तो यदि मैं बच्चों के लिए ज़्यादा कहानी लिखता हूँ तो मैं जैव विविधता, प्रकृति कैसे बचानी है, कैसे अपनी संस्कृति और इतिहास की रक्षा करनी है, इन सभी बिंदुओं पर कहानी लिखता हूँ और बच्चों को जागरूक करता हूँ। इसके साथ साथ जो भारत और मॉरिशस का गौरव रहा है, जो ऐतिहासिक गौरव है, जो हमारी पौराणिक कथाएँ हैं, उन सभी बिंदुओं पर मैं नाटक, कविताएँ और कहानियाँ लिखता हूँ।
0: नाटक, कविताएँ और कहानियाँ, तो उपन्यास वगैरह अभी तक आपने छुआ नहीं?
1: नहीं छुआ, क्योंकि बहुत समय नहीं मिल पाया। क्योंकि उपन्यास जो है एक बड़ा कैनवास है, उसमें बहुत सारे चरित्र होते हैं और मुझे लगता है कि मेरे मानस पटल पर अभी हुए सभी चरित्र चरित्रार्थ हो रहे हैं। जिस दिन वो पूर्णता प्राप्त करेंगे मैं जरूर लिखूंगा।
0: दो कार्यक्रम में मैं गया तो आप कि उस कार्यक्रम में हमने आपको देखा, मंच पर आपकी पुस्तकों का विमोचन हो रहा था। तो जितना समय आपको लगा मॉरिशस में रहकर, आपके प्रवास काल में आपने कितनी रचनाएं रची है?
1: यहाँ पर मैंने लगभग यदि आप देखें तो 70 से ज़्यादा कहानियाँ मैं लिख चुका हूँ। बच्चों के लिए 20 कहानियाँ मैंने लिखी हैं। मेरा एक कार्यक्रम आता है अनकही एक कहानी एमबीसी पर, वह लगभग 56 एपिसोड मैं कर चुका हूँ। उसमें हमारे साथ गुरु विश्वानंद भी आते हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मॉरिशस की जो अपनी पहचान है उसको लेकर मैंने कहानियाँ लिखी हैं। तो यह जो मेरा मॉरिशस प्रवास है इसमें बहुत मैं रचनात्मक रहा। और अभी मेरी दो बाल कहानी पुस्तकें आ गई हैं, तीसरी भी आ चुकी हैं जिसका विमोचन महात्मा गांधी संस्थान में इसी महीने 23 तारीख को है।
0: अच्छा, बाल कहानियाँ ही क्यों, अन्य विषय क्यों नहीं?
1: क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आपको अपनी सभ्यता और संस्कृति की पहचान को बनाए रखना है तो सबसे पहले जो बीज बोने हैं वे बच्चों के मानस में बोने हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बच्चों के लिए काम करूँ, वही बच्चे फिर आगे चलकर बड़े होंगे। तो जब से मुझे यह महसूस हुआ, मैं प्राध्यापक भी हूँ, बच्चों को शिक्षा देना और उनके व्यक्तित्व का विकास करना हमारा फर्ज और उद्देश्य है, तो मुझे लगा कि उनको संस्कारित करने के लिए, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए, उनको उपदेश नहीं देना है बल्कि उनको कहानी के माध्यम से ऐसी सूचनाएं देनी चाहिए, ऐसे संदेश देने चाहिए कि बच्चे का व्यक्तित्व का विकास भी हो और वे मानस रूप से जो है परिपक्व भी बन सकें। और मेरी कहानी का उद्देश्य है कि बच्चों को अपने पर्यावरण, प्रकृति, जलवायु, जो मानवीय संबंध हैं उसके प्रति उनको संवेदनशील बनाना। क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं वसुधैव कुटुंबकम में, यानी पूरा विश्व जो है हमारा एक परिवार है। तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मैंने जो विषय चुने यहाँ कहानी कहाँ अपनी कहानियों के, तो जब मैं सबसे पहले आया तो मैंने एक कहानी लिखी गुलाबी कबूतर।
0: अच्छा
1: जी। मैंने अपने छात्रों से जब पूछा कि क्या आपने गुलाबी कबूतर देखा है, तो पहले तो गुलाबी कबूतर उनको थोड़ा ये लगा, फिर मैंने कहा पिंक पिजन देखा है, तो अधिकांश बच्चों ने नहीं देखा है। और एक समय जो है ये जो गुलाबी कबूतर है ये लगभग समाप्त होने कगार पर थे, लेकिन मॉरिशस के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं या इस फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने बहुत ही कामयाबी के साथ इनको बचाया। एक समय केवल 9-11 बचे थे, फिर इनकी संख्या 500-600 के आसपास है। आप कभी यदि गंगा तालाब की ओर जाएं तो वे वहाँ पे दिखते हैं।
0: आपने देखा है गुलाबी?
1: मैंने कई बार देखा है, वीडियो भी बनाया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे मॉरिशस जो है पूरे विश्व के लिए जो है एक उदाहरण जो है मॉरिशस ने पेश किया है, दिया है कि कैसे हम विलुप्त होते पक्षियों को, जीव जंतुओं को हम बचा सकते हैं। उसी तरह से मैंने जो है एक कहानी लिखी केस्ट्रेल पे, जो कि राष्ट्रीय पक्षी भी है मॉरिशस का। तो जब मैंने लिखा, मैंने जब उसकी कहानी मैंने देखी कि क्या है, तो मैंने देखा कि एक समय ऐसा था कि जब उनको खोजा गया तो एक फीमेल और 3 मेल मिले। यदि वे मर जाते तो आज हम केस्ट्रेल
0: दो की तरह
1: पक्षी को हम नहीं देख पाते। फिर उसी तरह, क्योंकि बच्चों को इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हम वैसी प्रकृति की या वैसे वातावरण का या वैसे पर्यावरण की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ जीव जंतु नहीं है।
0: आपने बहुत ही सही कहा कि संस्कृति और जलवायु का संरक्षण करना ही चाहिए, और आपका उद्देश्य ही है, लेखन का उद्देश्य ही है। आपने कहानियाँ लिखी, आपने नाटक लिखे, आप एक साहित्यकार है, तो मैं साहित्य का एक छात्र हूँ, तो मेरा यह प्रश्न पूछना मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा होगा और हमारे सुनने वालों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आप ICCR चेयर है और 70 से ऊपर आपने रचनाएं रची है अपने प्रवास काल में मॉरिशस में। अपने आप को आप कहानीकार ज़्यादा मानते हैं, कवि ज़्यादा मानते हैं कि नाटककार ज़्यादा मानते हैं?
1: मैं यदि आप मुझे कहें तो मैंने यह जो है अपने पाठकों पर छोड़ दिया है कि वे मुझे किस रूप में देखते हैं। मेरा काम है ईमानदारी से बच्चों के लिए कार्य करना, वो मैं भली भांति कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य कहानीकार बनना नहीं है, बल्कि जिन समस्याओं को मैं अपनी कहानी के माध्यम से उठाना चाहता हूँ उन समस्याओं को मैं भली भांति, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उठा पा रहा हूँ। और यही कारण है कि मॉरिशस में मैंने उन विषयों पर कहानी लिखी, जैसे मैंने लिखी उड़ने वाली लोमड़ी, जो फ्लाइंग फॉक्स है आपका, जिसको बादूर बोलते हैं, लोग उसे घृणा करते हैं, मैंने उनके पक्ष में कहानी लिखी। मैंने जो है लोगों से संवाद किया कि आप यह बताइए कि इन पहाड़ों पर या जंगलों में पेड़ पौधे किसने लगाए, मनुष्य ने लगाए हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, हम नहीं सोचते, क्या हमने तो नहीं लगाए?
0: बिल्कुल,
1: सदियों से है, उसको किसने लगाए, उनको किसने लगाए? इसी बादूर ने लगाए, इसी चमगादड़ ने लगाए। इस पर हमें सोचना चाहिए। हम उनसे घृणा तो कर लेते हैं, हम सोचते हैं उनको मार दें, हम सोचते हैं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वे प्रकृति के सच्चे मित्र हैं। उसी तरह मैंने एक कहानी लिखी डोडो पर, एक डोडो वृक्ष होता था, और अभी बहुत कम डोडो वृक्ष यहाँ पे हैं, मुश्किल से 10-11 हैं भी या नहीं है। ये आप देखें, 1970 में जब खोज हुई थी तो डोडो वृक्ष पाए गए थे, उस समय उनकी आयु 300 साल थी, कोई भी जवान वृक्ष नहीं था 300 साल। क्यों? डोडो के मरने के बाद से वे वृक्ष भी समाप्त हो गए, क्योंकि उस जो डोडो वृक्ष है उसका जो फल होता था उसका बीज जब डोडो के पाचन तंत्र से होकर बाहर निकलता था तभी अंकुरित होता था। लोगों को नहीं पता है, यानी केवल हमारा ही नहीं बल्कि इस प्रकृति पर जितने भी जीव जंतु हैं उनका और इस प्रकृति का एक गहरा रिश्ता होता है। रॉड्रिक्स में कभी 2,00,000 कछुए थे, मैंने उस पर भी कहानी लिखी, फिर मैंने सोलिटेयर पर लिखी कि क्यों ऐसे हुआ और हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन इसमें मुझे बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे मॉरिशस सरकार हो या जो भी वन विभाग के जुड़े हुए लोग हैं या जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्होंने बहुत ही कामयाबी के साथ जो जीव बच गए थे उनका भरण पोषण कर रहे हैं, उनको बचाए हुए हैं और लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं।

0: निसंदेह वे बधाई के पात्र हैं।
1: आपकी कहानियों से लगता है कि आप अपने पाठकों को एक ऐसे मोड़ पर आकर छोड़ते ताकि वे लोग सोचने पर बाध्य हो जाते हैं।
0: जी,
1: चिंतन करने के लिए।
0: जी बिल्कुल, चिंतन करने के लिए। और ऐसे तो मैंने जो है अधिकांश कहानी जो है लिखी है जब मैं भारत में था, तो भारतीय जो प्लॉट है उसको आधार, भारतीय परिवेश को आधार बनाकर लिखा, लेकिन

0: अधिकांश नाटक स्वाभाविक है कि वो संवाद रूप में ही होते हैं, और मुझे यहाँ पर जब अनकही एक कहानी कार्यक्रम करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि वहाँ पर सीधे सीधे कहानी को पढ़ने से जो है कहीं ना कहीं निरसता है और लोगों को उतना मज़ा नहीं आएगा। तो फिर हमने जो है उसको संवाद रूपी कहानी के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। तो इस तरह से कई नाटक जो है हमने लिखे।
1: आपके नाटक के विषय कौन कौन से विषय आपने चुने नाटकों?
0: नाटक में मैंने कई विषय चुने हैं, जैसे कि गिरिमिटिया भी विषय चुना, पर्यावरण को भी चुना, पौराणिक कथाओं को भी चुना। कई बार जैसे पर्व त्यौहार आते हैं तो उसको भी हम आधार बनाकर कुछ ऐसी घटनाओं को सामने लाते हैं। चूँकि यह हमारा रेडियो कार्यक्रम है तो ऐसे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हैं या ऐसी घटनाओं को हम अपने श्रोतागण को बताना चाहते हैं जिनके बारे में उनको नहीं पता है, जिससे एक रोचकता पैदा हो, वे जागरूक हों और मुझे लगता है कि उन्हें अच्छा भी लग रहा है।
1: अभी हमारे हाथ में आपकी एक कॉपी है, आपका लिखा हुआ एक नाटक है और पौराणिक कथाओं पर आधारित भक्त प्रहलाद
0: जी।
1: उसका एक छोटा सा अंश में अपने जनताओं को, दर्शकों को, श्रोताओं के लिए पढ़ना चाहूँगा। हिरण्यकश्यपु के बारे में, और हिरण्यकश्यपु का एक संवाद है, बोलते हैं कि विष्णु तूने मेरे भाई के रक्त से इस धरती को रंगा है, तूने छल किया है, तू जिसे धर्म कहता है वह केवल कायरता का आवरण है, तूने हिरण्याक्ष का वध नहीं किया, तूने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है
0: जी।
1: आप पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं?
0: बिल्कुल, सभी लोग रखते हैं, जो भी भारतवंशी हैं पौराणिक कथाओं में सभी लोग रखते हैं, क्योंकि वही जो है हमारी संस्कृति का मूल जड़ तो वही है।
1: आपको लगता है कि आज भी पौराणिक कथाओं को लोग मानते हैं, उनसे सीख लेते हैं और ऐसी पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटक चल सकता है?
0: हाँ बिल्कुल चल सकता है। इसका कारण यह है कि हमारा जो समाज है वह हमेशा एक आदर्श समाज कहलाता है और हम अपने पौराणिक कथाओं से आदर्श को सीखते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है राम की कथा है, भगवान शिव की कथा है, भगवान कृष्ण की कथा है, पंचतंत्र है, हितोपदेश है, ऐसी बहुत सारी कथाएं। और आप देखेंगे पौराणिक कथाओं में क्या नहीं है, फैंटेसी है, तिलिस्म है, जादू है। हम देखते हैं कि पाश्चात्य साहित्य में जिस परियों की कल्पना की गई, हमारे यहाँ क्या नहीं, माया है, सब कुछ है। तो हमारी जो कथाएं हैं, देखिए कथाएं जो होती हैं, जो इस तरह की जो कथाएं होती हैं वे हर काल में प्रासंगिक होती हैं, शिक्षा देती कि कैसे परिवार में हमें रहना चाहिए, माता पिता का कैसा संबंध होना चाहिए। यदि किसी ने कहा कि एक विवाह जो है 7 जन्मों का संबंध है तो क्यों कहा, कुछ तो कारण रहे होंगे। यदि किसी ने 16 संस्कार बनाए तो क्यों बनाए। एक मैं ये नहीं कहता कि सभी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उसे तो हम स्वीकार कर सकते हैं।
1: क्योंकि आप हैं यहाँ पे, आप ICCI चेयर है, आपका काफ़ी अनुभव रहा है हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी लेखन के क्षेत्र में। एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा से था, कई लोगों से हमने पूछा यह प्रश्न, अलग अलग जवाब मिले, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि प्रश्न पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। आजकल हम पौराणिक कथाओं को पढ़ते नहीं बल्कि टीवी पर देखते हैं, सीरियल्स के, डेली सोप के रूप में, नाटक में देखते हैं। जब इसका फिर से उसकी रचना होती है, फिर से उसका लेखन होता है तो एक अतिरिक्त लेखक जोर देता है। तो कहाँ तक ये अच्छा है कि एक अतिरिक्त हम जोड़ें, क्योंकि अगर हम वही पौराणिक कथा को टीवी में देखेंगे तो लेखक या फिर निर्देशक अपनी ओर से कुछ ना कुछ जोड़ देता है, उसका मूल रूप बदल जाता है। तो कहाँ तक हम उसको फिर से एक अतिरिक्त जोड़ सकते हैं, क्या उसका मूल रूप नहीं बदल रहा है
0: जी? आप देखेंगे कि शुरू से ही कि राम की कथा ऐसा नहीं है कि एक बार यदि वाल्मीकि जी ने एक कथा लिख दी तो उसके बाद जो है बार बार उसमें परिवर्तन नहीं हुए हैं। आप देखेंगे, आपको मैं 3 रामायण का जिक्र करूँगा, ठीक है? एक तो वाल्मीकि जी का रामायण, दूसरा रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा कृत, और एक कंब रामायण जो कंबन ने तमिल में लिखा है, ठीक है?

0: अब देखिए, जब कम्बन ने लिखा है वे 1000 ईस्वी के आसपास लिखा है, ठीक है। जब तुलसीदास जी लिख रहे हैं तो 16वीं सदी में लिख रहे हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी ने बहुत पहले लिखा संस्कृत में। अब देखिए अंतर क्या है, क्यों अंतर होता है। जब कम्बन लिख रहे हैं रामचरितमानस मतलब रामायण जब लिख रहे हैं तमिल में, तो वहाँ पर जो भी राजा हैं वहाँ पर राजाओं के शासन काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, उनके पास आभूषण है, सोना है, जेवर है, सब कुछ है। तो आप देखेंगे कि जो वो रामायण है, तमिल रामायण है, उसमें महिलाएं आभूषण से सजी हुई दिखती हैं, एक तो यह। दूसरा, उसमें एक प्रसंग आता है, ध्यान दीजिएगा, प्रसंग यह आता है कि उस रामायण में, कम्बन के रामायण में, रावण ने कहीं भी सीता को छुआ नहीं है। जब सीता का अपहरण करने आता है तो सीता की जो कुटिया है, जो झोपड़ी है, उसको एक योजन सहित उखाड़ कर पुष्पक विमान पर रखता है, हाथ पकड़ कर, घसीट कर, या इस तरह से नहीं, पूरी कुटिया को ही उखाड़ कर।
1: कम्बन रामायण के आधार पर रही
0: है ये कम्बन रामायण, क्यों, क्योंकि उस समय जो समाज की स्थिति थी वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, ठीक है। और जब तुलसीदास जी लिखते हैं तो उस समय उत्तर भारत में महिलाओं के पर बहुत अन्याय हो रहे थे। तो देखिए कि कैसे मतलब चरित्र बदलते हैं। अब आधुनिक युग में यदि हम लिख रहे हैं तो थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन कथा के मूल भाव से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं इससे मैं पूर्णतया सहमत हूं।
1: आपके लेखन के बारे में हम जानना चाहेंगे, खास तौर पे नाटक लेखन के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहानियां भी लिखी, नाटक भी लिखे। कहानी लेखन और नाटक लेखन में फर्क क्या है, क्योंकि दोनों में कहानी है, दोनों में संवाद भी होते हैं, तो किस तरह से दोनों अलग होते हैं।
0: कहानी और नाटक में जो मूल अंतर है वह तो आप देखेंगे कि संरचनात्मक जो है अंतर होता है, ठीक है। कहानी में कहानीकार को एक छूट होती है कि वो अपने विचारों को सीधे सीधे गद्यात्मक रूप में जो है बोल सकता है, फिर अपने पात्रों से कहीं कहीं वो कथन कहलवाता है, संवाद बोलवाता है, ठीक है। नाटक में क्या है, क्योंकि हम रंगमंच पर कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह का कोई विवरण हम नहीं दे सकते, वहाँ पर संवाद के माध्यम से सीधे सीधे जो है जो भी उस नाटक का उद्देश्य है वह दर्शक तक पहुँचता है, और दर्शक के अंदर साधारणीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी दर्शक भाव विभोर होकर उसको देखता है। कहानी में चूंकि रंगमंच नहीं है, इसीलिए कहानीकार को समझाना पड़ता है कि आसमान में इंद्रधनुष थे, पक्षी उड़ रहे थे, चिड़ियों की चहचहाट थी, गन्ने के खेत लहलहा रहे थे, और उस गन्ने के खेत के बीच से एक रास्ता सीधी जो है जा रही, इस तरह से यदि आप देखें तो उसको वर्णन करना पड़ता है। नाटक में यह छूट नहीं है, नाटक में संवाद होते हैं, और संवाद में भी उतार चढ़ाव होते हैं। यदि मान लीजिए कि कहीं करुणा का भाव है तो उस तरह के संवाद होंगे। अब कहानीकार उस तरह से उस भाव को नहीं उभार सकता जो कि नाटक में उभार सकता है, इसलिए नाटक जो है सबसे ज्यादा प्रासंगिक हुए लोगों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए। यानी नाटक क्या है, देखिए नाटक जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को लोगों तक सीधे सीधे पहुंचाता है। इसीलिए हमारे यहाँ चाहे वो रामलीला हो, कृष्ण लीला हो, बहुत पुरानी परंपरा रही है इसको खेलने की, और तरह तरह कई नृत्य देखेंगे भारत में जिसमें कि नाट शैली में नृत्य होते हैं। यही कारण है, जैसे आजकल हमारे पास मोबाइल है, लोग छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, एक रोचकता पैदा करते हैं, लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, रंगमंची हमारा मोबाइल फोन था, रंगमंची टीवी है, और कई बार कम संसाधन में सभी लोग जो है अच्छे से करते थे। अब यदि हिंदी साहित्य की हम बात करते हैं कि क्यों नाटक बहुत महत्वपूर्ण हुए, चाहे वो भारत हो या मॉरिशस हो, दोनों

0: संदर्भ में हमें देखना चाहिए। भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो रही है, मतलब छिड़ा हुआ है, एक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोग हैं, तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आप उनको कहानी दे देते, लोग लिख रहे थे लेकिन कहानी दे देते तो पढ़ नहीं सकते थे। और हमें अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है अपनी बात पहुँचानी है तो कौन कर सकता है? नाटक कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि नाटक जो है कई बार हम आम बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। आजकल देखिए फिल्म में यदि आप एकदम साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर देते हैं तो फिल्म बहुत नीरस लगने लगेगा। एक समय था जब अंग्रेजी फिल्मों को हम डब करते थे हिंदी में तो लगता था एकदम बहुत साहित्यिक अनुवाद अनुदित जो है संवाद हैं, तो मज़ा नहीं आता था। अब देखिए अब क्षेत्रीय भाषाओं में जो है कई डायलॉग क्षेत्रीय भाषाओं में होते हैं, उसे मराठी है तो कोई बंगला में बोल रहा है, कोई तमिल में बोल रहा है। यदि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि तमिल मिश्रित हिंदी बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि नाटक ये हमें छूट देता है, कहानी में हमें ये छूट नहीं मिलती। कहानी जो है एक मतलब व्यापक पटल देता है, मैं यह नहीं कहता, लेकिन नाटक जो है कहानी की तुलना में ज़्यादा संप्रेषित होता है लोगों तक पहुंचाने में। जब अंग्रेज भारत पर बहुत अत्याचार कर रहे थे और लोगों को जागरूक करना था ना, क्यों करना था, जन आंदोलन हमें करना है, हम लड़ाई नहीं कर रहे थे ना उनसे कि हम बंदूक और गोली और तलवार लेकर हम अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे। तो हमें लगा कि हमें दिखाना है सत्याग्रह के रास्ते पर हमें लड़ाई करनी है, तो हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि जो सत्ता है कहीं ना कहीं हमारा शोषण ये सत्ता कर रही है। तो फिर हमने क्या किया, नाटक का सहारा लिया। तो भारतेंदु हरिश्चंद का एक नाटक आपको बहुत ही पता होगा, प्रसिद्ध है, अंधेर नगरी। व्यंग्यात्मक नाटक है
1: अंधेर नगरी चौपट राजा,
0: है ना, है ना? सब लोगों ने पढ़ा है उसको, कैसे वही मूल आधार है व्यंग नाटक का। यदि कोई कुछ आधार है नाटक तो अंधेर नगरी है,
1: इसका उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ।
0: हाँ, जी जी, उसके उसके बिना तो जो आप जो है नाटक की बात ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
0: तो उसने क्या काम किया, उसने बताया कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां किसी भी चीज का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। गलती कोई करे सजा किसी और को दे देते हैं, या एक तो अर्थव्यवस्था चौपट, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो हमारा एक सूती कपड़ा या जो रेशमी कपड़ा इन सब का जो बहुत बड़ा बाजार था पूरे विश्व में, उसको चौपट कर दिया। जो हमारे कभी खुशहाल किसान होते थे उसको मजदूर बना दिया, सबसे इतना लगान वसूल रहे हैं। तो एक दिखाता है, एक तो जो व्यवस्था है वो समाप्त कर दिया इन्होंने, कोई मूल्य नहीं रह गया हमारा, गरीबी में हमको लपेट दिया। और दूसरा ये क्या कर रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से भी हमको जो है पतित बना रहे हैं, गिरा रहे हैं। और दूसरा, गलती कोई करे दिखाने के लिए सजा किसी और को दे देते हैं। तभी तो चेला को जो है कहा कि फांसी,
1: हाँ, फांसी पर चढ़ने,
0: फांसी पे चढ़ जाओ, ठीक है। और फिर राजा इतना जो है उसको इतना भी दिमाग नहीं है कि फिर अंतिम में वही फांसी पर चढ़ जाता है।
1: हाँ।
0: ये व्यंग है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो सत्ता है वो कई वर्नाकुलर एक्ट लाते थे, वो आपके आपकी कहानी को नाटक को क्या करेंगे कि वो सीज कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। प्रेमचंद की किताबें सब जब्त हुई हैं, प्रेमचंद के तो हाथ काटने के भी ऑर्डर दे दिए गए थे, आदेश दिया कि उनका हाथ काट दो, कभी लिखे ही नहीं, जैसे ताजमहल बनाया हो, ठीक है, लेकिन किसी तरह से बच गए। तो प्रेमचंद आप देखेंगे कि एक दर्जन से ज्यादा उपन्यास और 300 ज्यादा कहानियां हुए लिख पाए। तो अब तो इस कारण से उस समय राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए नाटक की जो है अहम भूमिका रही। मॉरिशस में भी आप देख लीजिए जो बैठका की भूमिका है, गांव-गांव में जो रामलीला खेलने की जो भूमिका, क्यों? यदि हम अपनी संस्कृति नहीं, रामलीला केवल एक नाटक नहीं है, अपनी संस्कृति को बचाने और अपने जो अपने लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है।
1: दुर्गा पत्रिका के बारे में आपने
0: जी बिल्कुल मैंने पढ़ा है, मैंने उस संकलन को देखा है जो तीन भाग में। तो आप समझिए कि उस समय 33, 34, 35, 36 के आसपास लोग जो है खुद हाथ से लिख कर
1: हस्तलिखित
0: जो है वो पत्रिका जो है
1: छद्म नाम

0: छद्म नाम से जो है लिखते थे, और इतना ही नहीं छद्म नाम से लिखते थे क्योंकि पता चल जाएगा कि भाई हम ब्रिटिश के खिलाफ यदि हम एक शब्द बोल देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन स्वाभाविक है कि मनुष्य, सभी मनुष्य को अधिकार है कि वो स्वतंत्र रहे, अपनी पहचान बनाए, अपनी संस्कृति की रक्षा करे, अपनी भाषा में बोले, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। हम एक सत्य के साथ हम अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए किसी से आग्रह करते हैं तो यही तो सत्याग्रह है। तो भारत ने भी किया, मॉरिशस ने भी किया, तो यही तो हमारी पहचान है। ये दिखाता है कि हम अंदर से कितने सशक्त हैं, मानसिक रूप से हम कितने मजबूत हैं।
1: आजकल के ज़माना में जब हम देखते हैं कि रील्स बहुत चल रहे हैं, तो रील्स में कहानी चल रही होती है, तो कहानी को लिखना तो चाहिए। तो कहानी लेखन में तो सोचता हूँ अभी तक जीवित है, बस लोगों को जानना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि कहानी लेखन को हम कैसे सशक्त, अपनी कहानी को कैसे लोगों तक पहुँचा सके, ये आना चाहिए। आपने नाटक लिखा, कहानियाँ लिखी और एक व्यंग्य नाटक के बारे में आपने कहा, थोड़े से इसके बारे में हम जानना चाहेंगे क्योंकि मॉरिशस में है लेकिन बहुत कम है जो व्यंग नाटक लिखे, व्यंग नाटक की क्षमता के बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: देखिए आपको मैं बताऊं कि अब जो आज़ादी के समय में व्यंग नाटक लिखे जा रहे थे उसका उद्देश्य एक अलग था, उसको छद्म रूप से लिखते थे कि हम अंग्रेजों की बुराई कर रहे हैं लेकिन लोगों को नहीं पता चल रहा है, खासकर ब्रिटिश को नहीं पता चल रहा है कि वो मेरी बुराई कर रहा, जिससे कि हम अपनी रचनाओं को भी बचा लें और लोगों तक जो हम संदेश पहुँचाना चाहते हैं उन्हें प्रतिबंध से बचने के लिए, जैसा कि आपने दुर्गा पत्रिका का भी जिक्र किया। फिर आप जब देखेंगे कि यह व्यंग जो नाटक है यह धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक में परिवर्तित होने लगा समय के साथ साथ, जिसमें आप जो समाज में कुरीतियां हैं या जो बुराइयां हैं, जो विसंगतियां पैदा हो जाती हैं समय के साथ साथ, जो समाज की मुख्य समस्याएं हैं उसको लाते हैं, या मान लीजिए कि कभी मेरा मानना है कि साहित्य का जो उद्देश्य होता है राजनीतिक कम और सामाजिक सांस्कृतिक ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि राजनीति को यदि आप यह सोचते हैं कि हम साहित्य के माध्यम से राजनीति की बुराई करें तो यह मैं सही नहीं मानता, क्योंकि राजनीति में हम ही लोग तो हैं, कोई दूसरा तो नहीं है, है ना, हमारे ही द्वारा चुनी गई सरकार है, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, तो ये तो एक जो है लोकतंत्र की खूबसूरती है, यानी हमारी भूमिका होती है प्रत्येक व्यक्ति की, एक गांव में जो खेती कर रहा है किसान उसकी भी भूमिका होती है, सबकी सरकार होती है। तो नाटक हो या कहानी हो वह कहीं ना कहीं हमारा जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व निभाता है, ठीक है, और हम सामाजिक सांस्कृतिक दायित्व को जो के माध्यम से जब किसी एक मुद्दे को, एक समस्या को सामने लाते हैं तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं वे उस समस्या से रूबरू होते हैं, फिर सब लोग बैठकर, असेंबली क्या है, सब लोग एक जगह जमा होकर फिर उस समस्या पर बातचीत करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो नाटक है उसका ज़्यादा उपयोग जो है आज के समय में साहित्यिक और सांस्कृतिक और सामाजिक उद्देश्य है। कभी कई लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि राजनीति की आलोचना करना ही नाटक का उद्देश्य होना चाहिए या नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य होना चाहिए, नहीं, ये गलतफहमी है। हम जागरूकता पैदा करते हैं, नाटक का उद्देश्य है जागरूकता पैदा करना।
1: आपने व्यंग नाटक के बारे में कहा, एक शब्द का आपने प्रयोग किया, नुक्कड़ नाटक।
0: जी
1: आजकल हम देखते हैं नुक्कड़ नाटक के नाम पे सिर्फ MGI में नुक्कड़ नाटक खेला जाता है, हमने कहीं पे भी नुक्कड़ नाटक नहीं देखा, शायद इतिहास में, मॉरिशस के इतिहास में खेला होगा कहीं कहीं गांव में, जैसे रामलीला हुआ करता था, अभी भी है लेकिन संख्या बहुत घट गई है, लेकिन नुक्कड़ नाटक का सिर्फ MGI में वहाँ के BA के छात्रों द्वारा खेला जाता है। नुक्कड़ नाटक की क्षमता के बारे में बताइए।
0: नुक्कड़ नाटक की क्षमता जो है अद्भुत है, उसके लिए ना आपको जगह की जरूरत होती है, ठीक है, ना ही आपको रंगमंच की सजावट की जरूरत होती है, जो अहम मुद्दा है। नुक्कड़ नाटक कोई भी लोग आकर कहीं भी लोगों को

0: बुलाया और खेल लिया। नौकर का नाटक का मतलब ही होता था कि किसी भी चौराहे पर लोग जमा हुए और वहाँ पर खेले। भारत में देखेंगे कि आजकल कई जगह नुक्कड़ नाटक मंडली है, खास करके सभी यूनिवर्सिटी में होते हैं जो छात्र की समस्याओं को लेकर आते हैं। ये मत सोचिए कि उसमें व्यंग भी होता है। कई बार यदि सरकार छात्र की समस्याओं को नहीं समझ पा रही है, या हो सकता है कि होस्ट भारत में खास करके कि सरकार का ध्यान आकर्षित कराना है या समाज का कराना है या और भी लोगों को जागरूक करना है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो सकता है या लड़कियों की सुरक्षा की समस्याएं हो सकती हैं या हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या फिर कोई मान लीजिए नशाखोरी करता है तो उसकी समस्या हो सकती है। कई तरह की ये सब ज्वलंत समस्याएं जो तात्कालिक समस्याएं होती हैं वह नुक्कड़ नाटक लेकर आता है, और नुक्कड़ नाटक वही सबसे ज़्यादा सफल होता है जिसे व्यंग भी हो। तो उस व्यंग्यात्मक, क्योंकि हमारा देखिए क्या है, हमने आपको पहले ही कहा कि जो साहित्य है उसका किसी के साथ मतभेद नहीं होता। साहित्य का मतलब होता है समाज का हित करना, जिसमें सभी लोगों का हित छुपा हो, ठीक है। तो हम साहित्य के माध्यम से हम आलोचना नहीं करते, हम एक समस्या उभारते हैं। हमेशा याद रखिए, हम साहित्य के माध्यम से उपदेश नहीं देते, हम संदेश नहीं देते। यदि हम डायरेक्ट ये लिखने लगे तो वो साहित्य रह ही नहीं जाएगा, वो उपदेशात्मक ग्रंथ हो जाएगा। आप ये बताइए, कबीरदास ने, कबीरदास को कई लोग बोलते हैं कि उपदेश देने वाले संत हैं, मानते हैं नहीं?
1: नहीं,
0: है ना। कबीरदास ने बताया है कि क्या है, अब आप उससे संदेश लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने बोल दिया ऐसा ऐसा है, आपको स्वीकार हो तो समझिए, नहीं हो तो आप अपनी गली जाइए। तो हम देखिए जितने बड़े बड़े संत कवि हुए, साहित्यकार हुए, कभी भी कि कहीं ऐसे नहीं लिखता है कि भाई ईमानदारी बहुत जरूरी है, ठीक है, लालच मत करो। यदि ये सब आप रचनाओं में डाल देंगे अंतिम में तो कंक्लूजन हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा, तो फिर वो रचनाएं बेकार हो जाएंगी। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लेखक हैं मॉरिशस में जिन्होंने हिंदी में लिखा है, उनकी रचनाओं को पढ़िए। यानी हम केवल उसमें एक समस्या को उठाते हैं, उसका वर्णन करते हैं और पाठकों पर छोड़ देते हैं या दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि वो उससे क्या सीख लेना चाहता है।
1: आपका ये लिखा हुआ है कि भक्त प्रहलाद नाटक जो मेरे सामने है उसका एक अंश मैं पढ़ना चाहूँगा, फिर प्रश्न की जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ाते हैं। हिरण्यकशिपु कह रहे हैं कि सुन लो चराचर जगत के प्राणियों, मैं शपथ लेता हूँ जब तक मैं उस विष्णु के वक्ष को फाड़कर अपने भाई के रक्त का तर्पण नहीं कर देता, तब तक न मैं चैन से बैठूंगा और न ही देवताओं को चैन से सोने दूंगा। मेरा प्रतिशोध केवल उस हरि की मृत्यु के साथ शांत होगा। हिरण्याक्ष तेरा भाई अब काल बनकर उस विष्णु का पीछा करेगा। आज से मेरा शत्रु ही इस संसार का शत्रु है। आपकी भाषा यहाँ पे बदल जाती है, एकदम पौराणिक कथाओं पे एकदम उसी दिशा में चलती जाती है। तो विषय के आधार पर भाषा बदली जाती है?
0: बिल्कुल, विषय के हिसाब से भाषा ही बदलती है। कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जो पौराणिक ग्रंथों में उसका प्रयोग होता रहा है। हमेशा याद रखिए कि हिरण्यकशिपु का जो व्यक्तित्व है वो कौन है? असुर, ठीक है। और चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो या नाटक हो, दो मुख्य जो है उसमें चरित्र होते हैं। एक नायक होता है और एक कौन होता है? खलनायक होता है, ठीक है। खलनायक की भाषा कैसी होगी? राम जब पूजा करते हैं तो राम के मंत्रोच्चारण का तरीका देखिए, और जब रावण करते हैं तो जैसे लगता है खट खट खट खट आवाज आ रही है, ठीक है, एक रौद्र रूप आप देखते हैं। तो यह दिखता है। अब यदि हिरण्यकशिपु यदि बात करेगा तो इसी तरह की बात करेगा, वो अपना पक्ष रख रहा है कि हिरण्याक्ष की जो है मृत्यु जो हुई है किसके कारण हुई है? नारायण के कारण। अब मेरा जो है प्रतिशोध मुझे लेना है, आज से ये सभी देवगण मेरे शत्रु होंगे, है ना, तो एक उसमें आवाज़, क्यों

0: क्योंकि देखिए जब संवाद बोले जाते हैं रंगमंच पर तो वह दिखना चाहिए, दर्शक देख रहा है और देखता ही नहीं, उसमें तारतम्य स्थापित करता है। जैसे कुछ संवाद यदि मैं इसमें से हिरण्यकश्यपु का यदि पढ़ूं,
1: बिल्कुल,
0: तो आप देखिएगा, देखिए एक एक जगह है जब वे तपस्या करते हैं कि मुझे कोई नहीं मार सके, तब ब्रह्मा जी से जब उनका संवाद है तो वहाँ पर जैसे लगता है कि भक्त का संवाद हो जाता है, तो उसकी भाषा एकदम बदल जाती है। तो ब्रह्मा जी जब प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, उठो दिति पुत्र, जागो दैत्यराज, तुम्हारी तपस्या की ज्वाला ने स्वर्ग को भी संकट में डाल दिया है। मैं तुम्हारी सहन शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहते हो, आज तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। तो जब एक वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है तो उनकी आवाज में क्या सौम्यता है। तो हमें डायलॉग जब संवाद हम बनाते हैं तो उसमें एक सौम्यता होनी चाहिए, सभ्यता के साथ और आवाज में भी लगना चाहिए कि ईश्वरीय आवाज,
1: और शब्द भी एकदम हल्के हल्के, हाँ, जैसे से जैसे बस रख दिया, हाँ, है आराम से
0: रख दिया। अब जब ब्रह्मा जी बोलते हैं तब हिरण्यकश्यपु क्या कहता है, हे सृष्टि के रचयिता, हे पितामह, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मैं कभी ना मरूं। तो एक जो खलनायक है उसकी आवाज थोड़ी भारी होगी, थोड़ी रौबदार होगी। फिर ब्रह्मा जी जब बोलेंगे तो फिर देखिए वही सौम्यता आ जाएगी। वत्स, इस मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मैं तुम्हें पूरी तरह अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, कोई और इच्छा बताओ जो अमरता के निकट हो। तो शालीनता के साथ जो है ब्रह्मा समझा रहे हैं और बोल रहे हैं। इसी में देखेंगे कि और भी कई संवाद हैं जिस पर कि हम चर्चा बाद में करेंगे, यदि आपके और कुछ
1: प्रश्न हैं। हाँ, और बहुत सारे प्रश्न हैं। आप इसे जब आपके आपकी रचना को आप पढ़ रहे थे तो मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। एक लेखक होने के नाते जब आप लिखते हैं तो आपके विचार में निर्देशक इसके ऊपर कौन काम करेगा, आपके पात्र कौन निभाएगा, ये सब आप इसकी परिकल्पना कर लेते हैं या फिर सिर्फ कहानी थी, कहानी को आपने नाटक के रूप दे दिया?
0: जब एक नाटककार लिखता है तो उसके दिमाग में रंगमंच होता है, ठीक है, पात्र का चुनाव बाद में होगा, उसमें कई पात्र आएंगे, उसमें उनके रंग रूप को भी देखा जाएगा कि किस तरह से दिखते हैं, उनका व्यक्तित्व खलनायक बनने लायक है या नायक बनने लायक है ना। तो हम उस तरह से बाद में चुनाव करते हैं। सबसे पहले हम चुनाव करते हैं रंगमंच का, कि जब रंगमंच पर खेलेंगे तो कितने लोग रंगमंच पर होंगे एक समय में, और जब यह दृश्य हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कौन कौन से डायलॉग बोलेगा, और डायलॉग ऐसे होने चाहिए जिसमें जो दर्शक है उसको अपने आप से उसको जोड़ सके। क्योंकि आप देखिए, अब तो नहीं होता, हम लोग थोड़े परिपक्व हो गए रितेश जी, आपने भी महसूस किया होगा, जब बचपन में फिल्म देखते थे, ठीक है, तो अभी भी अभी तो मान लीजिए कि यदि कोई हास्य फिल्म देख रहे हैं तो हम लोग हंसने लगते हैं, रोक नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अब बहुत हम लोग भावुक नहीं होते जब मूवी देखते हैं, बहुत रोने गाने वाला सीन है तो नहीं होते, लेकिन बचपन में जो है आँख से आँसू आ जाते थे, अब हम रोक लेते हैं क्योंकि बहुत परिपक्व हो गए ना मानसिक रूप से, लेकिन बचपन में आंसू आ जाते थे कि यदि हीरो के साथ बहुत अन्याय हो रहा है या किसी के साथ अन्याय होते देखते थे, सभी लोग उसमें रो रहे हैं तो हमारे भी मन जो है बहुत दुखी हो जाता था।
1: किसी को हमने देखा एक बार सिनेमा में, वो गॉगल पहन रहे थे, काला चश्मा, सिनेमा में कैसे वो रो रहा है अंदर,
0: यदि दर्शक रो दिया और दर्शक हंस दिया तो समझिए कि फिल्म सफल हो गई, सफलता का राज ही यही है। यदि हम नाटक में हमने कुछ ऐसा सीन उसमें यदि हमने नाटक में मंचित किया है जिसको देखने के बाद सभी लोग बहुत भावुक हो रहे हैं तो नाटक जो है वो सफल है। बचपन में जब हीरो और विलेन का जब फाइट सीन होता था तो हमारे भी हाथ पैर चलने लगते थे, ऐसे लगता था जैसे हम भी कुछ मार रहे हैं, मतलब बहुत उत्तेजित हो जाते थे। अब नहीं होते लेकिन बचपन में ऐसा होता था। यानी जो नाटककार होता है वह यह सोचता है कि हम ऐसे संवाद लिखें

0: वह संवाद जो है दर्शक के या पाठक के मानस पटल पर वो छप जाए। अच्छा, आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा चलचित्र देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो हम उस संवाद को याद कर लेते हैं,
1: जैसे शोले के
0: डायलॉग। हाँ, अभी भी कुछ मतलब इस तरह के ऐसे डायलॉग्स बनाए ही जाते हैं। जैसे अब देखेंगे अमिताभ बच्चन कैसे बहुत सारे डायलॉग थे, या सनी देओल कैसे डायलॉग हैं, या शाहरुख खान कैसे डायलॉग हैं। कुछ कुछ डायलॉग प्रसिद्ध हो जाते हैं।
1: बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: तो आप खुद ही जो है फिल्म देखने के शौकीन हैं, तो आपको सब संवाद पता है, और हमारे दर्शक को भी पता है क्योंकि रोज फिल्म देखते हैं। तो यही है संवाद लेखन शैली। तो हम बहुत सोच समझ कर ऐसे तैयार करते हैं, यहाँ तक कि गीत भी तैयार किए जाते हैं। और आपने जो पूछा था ना कि कहानी और नाटक में क्या अंतर है, आप देखेंगे कि कई बार जो है नाटक, वही नाटक अच्छा होता है जिसमें गीत का भी प्रयोग करते हैं। गीतात्मक होना चाहिए। इसीलिए सबसे बड़े नाटककार कौन हुए हिंदी में बताइए? जयशंकर प्रसाद। उन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं और उन्होंने गीत भी लिखे हैं, उसमें कठिन कठिन संस्कृत के शब्द डालकर लिखे हैं। तो नाट्य शैली जो है वो गीतात्मक होनी ही चाहिए, क्योंकि सब चीज के मिक्सर से ही जो है ना, सब मिश्रण से ही नाटक का एक सफल रूप सामने आता है। और आजकल तो आपको पता है रंगमंच भी हुआ है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, सब कुछ है, सब चीज हम उसमें डालते हैं।
1: पहले के ज़माने में नाटक को जब लिखा जाता है तो उसके गीत भी लिखे जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: जैसे एक दो नाम अगर अभी तक याद आ रहा है तो हमारे गुरुजी जीव जी जो पलंदे पापाए रहते हैं, और सदा सिंह जी त्रियोले के निवासी है, बहुत सारे ऐसे हैं, शायद नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने गीत भी लिखे हैं। और कुछ ऐसे नए उभरते लेखक जो है वो गीत नहीं लिखते हैं, बल्कि अपना सारा ध्यान उस मंचन पर डालते हैं, लेखन पर डालते हैं, लेकिन गीत हम थोड़े से हम बॉलीवुड से ले लेते हैं, थोड़े से हम सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब से डाउनलोड कर लेते हैं, इस तरह से तो नाटक चलता रहता है। हास्य नाटक के बारे हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी हास्य के बारे में कहा, तो हास्य नाटक, अपने व्यंग्य नाटक के बारे में कहा, नुक्कड़ नाटक के बारे में कहा, हास्य नाटक कहाँ तक सार्थक होता है और कहाँ तक कठिन होता है लिखने में?
0: देखिए, हास्य नाटक लिखना थोड़ा कठिन होता है, इसमें मैं कहना चाहूँगा सब लोग नहीं लिख सकते। और हास्य और विनोद की जो प्रक्रिया है यह अकेले पन का नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप अकेले बैठे हैं और आप बोल रहे हैं और सब लोग हंस रहे हैं, ऐसा वो नहीं होता। क्या होता है कि हास्य जो है वो सामूहिक प्रक्रिया है। तो हास्य नाटक लिखने के लिए जो है मुझे लगता है कि सामूहिकता में काम करते हैं लोग, कई लोग बैठेंगे उस तरह के दिमाग वाले, फिर आपस में हंसी मजाक कुछ करेंगे और फिर देखेंगे कि उससे जो है संवाद बनते हैं। उसका मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ कि जैसे कपिल शर्मा शो आता है,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो वो भी एक नाटक का फॉर्म, एक स्टेज है, एक रंगमंच है,
1: स्क्रिप्टेड है, क्योंकि स्क्रिप्ट है,
0: हाँ स्क्रिप्ट है, रंगमंच है, एक ही रंगमंच पर है, वहाँ दर्शक बैठे होते हैं, फिर उसी को फिल्माते हैं, वो अलग है, बाद में एडिट और ये सब करके बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसी रूप में रिकॉर्डिंग होती है। और आप देखेंगे कि पहले जो पारसी थिएटर में पहले जो है नायिका का रोल करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती थी, मर्द ही करते थे, लड़के ही भूमिका निभाते थे। तो उसी चीज को जो है यहां भी लेकर आया, लेकिन वह हमें हास्य के रूप में नजर आता।
1: मॉरिशस में भी पहले लड़कियां, उनको अनुमति नहीं थी स्टेज पर आने की, लड़के ही
0: करते थे। एक परंपरा रही है, बाद में जो है जाकर जो है एक उनको ही प्रतिष्ठा मिली। यदि आप राज कपूर की मूवी यदि आप देखें, तीसरी कसम, जो रेनू की जो कहानी है, मारे गए गुलफाम पर जो कहानी पर जो राज कपूर की मूवी बनी थी, उसमें भी एक नाचने वाली होती है ना, मारे गए गुलफाम करके गाना भी उसमें है। तो वहाँ भी देखिए उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती, यानी उस समय नहीं थी, बाद में जो है जो नर्तकी हैं या जो फिल्मों में या

0: थिएटर में काम करते हैं, अब उनको एक पहचान मिलती है। और हमारा संविधान तो आपको पता है कि लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, उनका कोई भी कर्म हो, हमें नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे हम जैसे इन सब चीज़ों को समझते गए, हमने जो है सब लोगों का सम्मान करना सीखा। लेकिन हाथ से जो रचना है वह कहीं ना कहीं एक जो है सामूहिक प्रक्रिया है, और इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल जितने भी हास्य से संबंधित जो संवाद लिखे जाते हैं, पूरी की पूरी एक टीम, एक दल काम करता है, मिलकर लिखते हैं, और इसीलिए इतना सफल होता है ये कार्यक्रम।
1: आपके और संवाद हम सुनना चाहेंगे, आपकी ही आवाज में आपके लेखन, फिर प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं।
0: जी, यह जो नाटक है यह प्रह्लाद के बारे में है, और सभी लोगों को पता है कि प्रह्लाद के साथ जीवन में क्या हुआ था। प्रह्लाद जो है नारायण भक्त हैं और हिरण्यकशिपु जो हैं उनके पिता हैं, और हिरण्यकशिपु तो नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु की पूजा या आराधना करे। इस कारण से हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद को मारने के कई प्रयास किए, जिसमें कि एक बार उनको विष का प्याला भी पिलाया गया, दूसरी बार जो है उनको बहुत ही ऊंचे पर्वत से जमीन पर फेंक दिया गया, उसमें भी बच गए, तीसरी बार जो है हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया गया, उसमें भी बच गए, चौथी बार जो है होलिका जो उसकी बहन थी उसके द्वारा भी जो है उनको जलाने का प्रयास किया गया, उसमें भी वे बच गए। तो मैं एक होलिका का प्रसंग जो है आपको सुनाता हूँ, जिसमें जब हिरण्यकशिपु प्रह्लाद से कहता है कि तुम अपनी बुआ के गोद में जाकर बैठो, तो प्रह्लाद देखिए किस तरह से, छोटा बच्चा है, किस तरह से बोलता है, प्रणाम बुआ जी, क्या आज आप मुझे अपनी गोद में खिलाएंगी? अब होलिका जो है एक कुटिल जो है महिला के की भूमिका में है, तो वो कहती है प्रह्लाद आज मैं तुझे ऐसी गोद में बिठाऊंगी जहां से तू सीधा अपने नारायण के पास पहुंच जाएगा, क्या तुझे डर नहीं लग रहा? कोई महिला पात्र इसको बोले तो और भी बेहतरीन ढंग से जो है इसको बोल सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब आग लगाते हैं उसमें भी बच जाते हैं प्रह्लाद, तब हिरण्यकशिपु कैसे कहता है, क्रोध और भय से वो अब थरथरा रहा है, तू फिर बच गया, तेरी यह कैसी माया है, तेरी चादर ने तुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। अब उसकी आवाज में, अब पहले जो उसकी आवाज थी वो आवाज ऐसी आवाज थी जैसे कि वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब उसे ईश्वरीय भय भी सता रहा है कि क्या सचमुच ईश्वर है, जिसके कारण प्रह्लाद जो है बच जा रहा है। तो इसमें एक संवाद यह है कि देखिएगा इसमें क्या है कि हिरण्यकशिपु जो है प्रह्लाद से पूछता है कि तुम्हारे देवता कहाँ हैं, तो प्रह्लाद कहता है कि सभी जगह हैं, तो हिरण्यकशिपु कहता है इस खंभे में भी है, क्या कहता है, झूठ, सरासर झूठ, यदि वह इस खंभे में है तो उसे बाहर बुला, मैं अभी इस खंभे को तोड़ता हूं, यदि तेरा विष्णु बाहर ना आया तो मैं तेरा मस्तक तोड़ दूंगा। अब फिर देखिए, अब हिरण्यकशिपु क्या करता है, उस खंभे पर अपने गदे से जोरदार प्रहार करता है, जैसे ही प्रहार करता है और वह खंभा फटता है, फटने के साथ नरसिंह अवतार होता है। हिरण्यकशिपु जैसे उस खंभे से नरसिंह को बाहर निकलते हुए देखता है, यह क्या है, ना यह पशु है ना यह मनुष्य, यह कैसी माया है। अब भगवान नरसिंह आए हैं, मैंने आपको बोला कि भगवान बहुत ही सौम्य ढंग से बात करेंगे, लेकिन अब वो क्रोधित हैं, जब क्रोधित हैं तो उनके संवाद बदलेंगे, उनकी भाषा ही

0: बदले की।
1: रे पापी देख, तेरा अंत सम्मुख है। तूने ब्रह्मा के वरदानों की ओट में बहुत अत्याचार किए हैं। आज मैं उन वरदानों की मर्यादा भी रखूंगा और तेरा वध भी करूंगा। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में, देखिए संध्या का समय है। तूने कहा था ना घर के भीतर मरूं ना बाहर, देख तू इस समय घर की देहरी चौखट पर है। तूने कहा था ना भूमि पर मरूं ना आकाश में, देख तू मेरी जंघाओं पर है। तूने कहा था ना मनुष्य मारे ना पशु, देख मैं नरसिंह हूं, आधा नर आधा सिंह। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, देख मैं अपने नाखूनों से तेरा वध करूंगा।
0: तो एक संवाद और उसकी भाषा जो है इस तरह से वहां परिवर्तित होती है,
2: जैसे क्लाइमैक्स तक लेके आ जाता
0: जी।
2: है
0: बहुत। तो फिर वो अंतिम में मैं तो इतना बड़ा मतलब क्या कहते हैं, एक दो नाटक मैंने स्टेज पर खेले हैं, लेकिन जब मैं संवाद लिखता हूँ तो मैं कई बार खुद उसको अपने ऊपर फिल्माने की कोशिश करता हूँ कि कैसे बोलेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे प्रतिक्रिया होगी, और जब दर्शक देखेंगे तो वो किस तरह से उन सभी दृश्यों को अपने अंदर सारगर्भित करेंगे, महसूस करेंगे।
2: डॉक्टर राजशेखर जी, बातों बातों में अभी जाने का समय भी आ गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। मैं तो सोचता हूँ कि एक बार फिर से आपको लेकर एक और कार्यक्रम हम करें, ताकि नाटक लेखन की गहराई में और उतरे और आपके नाटक को सुनने को पढ़ने को पढ़ने को मौका मिले। लेकिन आपने जो भी साझा किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए भी आभार, और ख़ासकर मैं अपने प्रिय श्रोतागण और दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो लगातार हमें सुनते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। आपका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार।
2: तो आप लोगों ने कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ उठाया, ज़रूर आप लोग नाटक लिखते रहिएगा, नाटक खेलते रहिएगा, और लोगों तक यह संस्कृति यह परम्परा जो है वो आगे बढ़ाते रहेगा। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्कार।
3: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में कुछ तरह के कैंसर के इलाज के लिए अब नैनो नाइफ नाम की नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। नेशनल कैंसर सेंटर में इस तरीके से चुनिंदा मरीजों का इलाज पारंपरिक ऑपरेशन के बिना किया जा सकता है। इस इलाज में बहुत पतली सुइयों की मदद से कैंसर की गांठ को निशाना बनाया जाता है। इससे आसपास के स्वस्थ हिस्सों को कम नुकसान पहुंचता है और मरीज को ठीक होने में भी आसानी होती है। हालांकि ये इलाज हर मरीज के लिए नहीं है,

0: कैंसर की गांठ कितनी बड़ी है और शरीर के किस हिस्से में है इसे देखने के बाद ही डॉक्टर फैसला करते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड लामशानिन हर तीन महीने में मॉरीशस आएंगे। वे मरीजों के इलाज में सहयोग देने के साथ यहाँ के डॉक्टरों को प्रशिक्षित भी करेंगे। गन्ने की खोई से अब घावों के लिए खास पट्टी बनाई जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरीशस के शोधकर्ता इसे एक त्वचा रोग से होने वाले घावों के इलाज के लिए तैयार कर रहे हैं। इस पट्टी में कीटाणुओं से लड़ने वाला एक तत्व भी होगा। शोध सफल रहा तो इसे बीमारी से प्रभावित देशों में उपलब्ध कराया जा सकेगा। मॉरीशस में पिछले दो हफ्तों के दौरान ज्यादातर सब्जियों के दाम 15-30% तक बढ़े हैं। बाजारों और बड़े बिक्री केंद्रों में इसका असर देखा जा रहा है। छोटे किसानों के अनुसार ठंड, तेज हवा और पानी की कमी के कारण फसलों की बढ़त धीमी हुई है। इससे बाजार में सब्जियों की उपलब्धता भी कम हुई है। हालांकि फिलहाल ज्यादा चिंता की बात नहीं है। खेतों में मौजूद सब्जियां अक्टूबर के मध्य तक देश की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। 13 साल बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी नाइस की वापसी हो रही है। इसके प्रारंभिक चरण में ग्रेड आठ के 200 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। 16 से 28 नवंबर तक चलने वाली इस पहल में छात्रों को अनुशासन, जिम्मेदारी, सेवा भावना, मिलजुल कर रहने और सामूहिक रूप से काम करने की सीख दी जाएगी। पहले सप्ताह में देश के 4 क्षेत्रों में अलग अलग गतिविधियां और प्रशिक्षण होंगे। इसके बाद छात्र 1 सप्ताह तक आवासीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसकी शुरुआत से पहले प्रशिक्षकों के लिए 3 दिन का विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि 22 दिन बाद भी लापता लोगों की तलाश जारी है और अभी तक सैकड़ों लोगों की लाशें नहीं मिली हैं। वहीं भी मलबे में दबे शव निकाल रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Trop de douce, Despero Entry Road, Trop de douce, 69 years old की श्रीमती तिलक की मृत्यु हो गई है। पैदाइश बगालू, लोग उन्हें बेटिया के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज शाम साढ़े चार बजे उनके भांजे रवीन बगालू के मकान थोदूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है। के भांजे रवीन बगालू के मकान थोदूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: You're listening to RM3 Radio, Man.

0: सभी को नमस्कार। इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन की परत हमारे लिए धरती का एक तरह का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन सवाल यह है कि ओजोन परत को नुकसान क्यों पहुंचा? इसे बचाने के लिए दुनिया ने क्या कदम उठाए और आज हम कहां तक सफल हुए? तो इन्हीं सारे सवालों को विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हमारे स्टूडियो में दो सम्मानित अतिथि हैं। आप हैं डॉक्टर राजेंद्र फुलबान जी और श्री दिनकर छमेलाल जी, जो पर्यावरण मंत्रालय से आए हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। नमस्कार। और अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस प्रोग्राम में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हम बोल लीजा कि हमने आज विश्व ओजोन दिवस पर चर्चा करब जा, तो पहला हम यही खुजब जाने के श्री छमेलाल जी, ये जो हमने के सकब बतावे कि जो ओजोन लेयर जो है ये कौन छा, एक मतलब का है?
1: हाँ, देखा ओजोन लेयर जो है ये गो गाज है जो हमने के स्ट्रेटोस्फेयर में है। मान ल

0: लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर एगो एगो कोपारेजों खातिन हमने के जो आवजों कमर्शियल आवजों है वो 10 किलोमीटर ऊपर जाला तो सभी जे है जो ओजोन ले या वाबा ये ओकर से और ऊंचा में ऊंचाई में है तो ये ओजोन ओजोन वा कुछ से बनेला तो जैसे जान ला हम जो जन जो रेस्पिरे के सा ऑक्सीजन ओकर में 2 गो एटम ऑक्सीजन बा और कौन ओजोन में 3 गो एटम बा O3 तो जब अनेक लगभग हजारों लाखों ओजोन जब संगे जुल मिल जाला तो वो एगो एगो लेयर करेला एगो लेज तो हाउ जो लेज वाके कहला हुए ओजोन लेयर तो ई ओजोन लेयर एगो कवच है जैसे अपन को मौसम जैसे बोला जा ये वो कवच है जान लेला जा हमने के सूर्य पूजनीय है
1: हाँ
0: काहे पस की हमने के जोन चीज जीवित बाप है धरती में सगबा बोले सूर्य के कृपा से बस कि जे सूर्य ने रही तो तापमान घट जाए कोई जिंदा नहीं रही तो ये जो सूर्य है हमने के बहुत आवश्यक है लेकिन एक में जो दूसर दूसर जो रेयों आवेला तो एगो रेयों के नाम है यूवी अल्ट्रावायोलेट बी तो वो जे अधिक मात्रा में धरती में आए तो हानिकारक हो सकी तो देखा भगवान एगो चीज कर ले है जो एगो एगो एगो समस्या दिल बा तो का सुझाव भी दिल बा तो उ है जो ले यवा बने ले बा काहे तो जमे है ओजोन जो है यूवी बीवा जो धरती में आए हमने के हानि नहीं पहुंचाई तो ये एगो कवच है एगो मान ला जैसे एगो एगो छतरी निकन घाम में चलेला तो जमे ढेर निखामने लगी तो वो छतरी लेके चलेला तो ये धरती के वो छतरी है एगो कवच है तो है ओजोन लेयर बहुत बहुत आवश्यक है
1: काहे आवश्यक बा
0: जैसे जैसे बोली जाना जब है जब यूवी लाइट वा जब आवेला धरती में जे हो कवचवा ने रही तो ओकर मात्रा ज्यादा हो जाए
1: तो जब नुकसान
0: नुकसान हो जैसे कि कौंसे लापो सकी होई कताक सकी होई
1: मतलब हमने के स्वास्थ्य पर काफी असर
0: असर जिस इंसान के नहीं
1: नहीं
0: जीव जंतु जो जानवर पा भी
2: पेड़ पौधा
0: भी हमने के प्लांटेशन करीला जाना तो जे एक्सेस हो जाए है ज्यादा हो जाए है यूवी तो हमने के प्रोडक्शन लेगी मु सब सकी हो करे
2: निगेटिव
0: हानिकारक कर
1: तो वो ओजोन लेयर जो धरती के ऊपर बाती ये कैसे मतलब अफेक्टे होला ये सब तो मनुष्य और पशु पक्षी सब पर
2: सब पर,
1: सब पर।,
2: सब पर। हम तो थोड़ा विस्तार पर तरीकों समझाए थी कैसे है ला हमने के जो कवच बोला था हमने के जो जी बोला ना कवच वा कैसे अफेक्टे होता तब सुना ना हमने के धरती पर अब डेटमा रिसर्च होता साइंटिस्ट लोग मजे आते जब जब ढेर चीज बनावट बन जा तब देखा अब जब गर्म गर्मी के मौसम में तब कौन चीज आगे तक देखा नहीं रहा फ्रिजीडिया कैसे बोला सर ना नहीं रहा जी टू तो अब साइंटिस्ट को कौन चीज करना से गो फ्रिजीडिया बने लेना तो ऊपर से हो गल तो अब ऊपर में गो एयरकॉन बने लेना सर जिसमें थोड़ा सुविधा हो गर्म नहीं लगी तो जो गैस सेवी होला एयरकॉन वहाँ के और फ्रिजीडिया में एगो गैस चाहला ओके बोलना सर रेफ्रिजरेंट यानी कि वही ठंडा करावेला गैस वहाँ में हाई गाजवा धरती पर एकर कोनो लिफिन नहीं रहल जीतू लिफिन नहीं करत रहल पर कौन ची होल हाई गाजवा जब अब कैसे फ्रिज दे बिक देला तो हाई गाजवा निकली ना थोड़ा दिन के बाद गाजवा जब निकली तो जाके अपनी के एटमॉस्फेयर में जाते रहल हाउ जाके अब जाए कौन सी करी हाउ ओजोनवा की जो नई जो कवच बोलन है हाउ जाके ओके ओके अफेक्टे करी मजे रिएक्शन करत रहा ओकर संग जिमें हाउ कर कवच हुआ कैसे आई मोटा रहल अब पथरैले जाए
1: अच्छा।
2: समझना ना जब पथरैले गल तो यानी कि ढेर सूरज की किरण जाए लगी
1: अब जब
2: हाँ मेघरी हो गल तब अब सूरज जैसे किरण जाए लग जाओ वे भी बोल तुम जा वो जस्ती धरती पर आए लगल जब जस्ती धरती पर आए लगल धवे बुलन से होकर ओजोन में एगो छल एगो छेद हो गल समझ ला ना ऐसे ही से मुझे छेद कैसे हम बोल से थ्रू थ्रू नुमा नहीं मैं एकदम से पथरा गल पा जब पथरा गल पा जस्ती सूरज की किरण उकर पर धरती पर आवत
0: है।

0: और अनेक चीज में जो इस्तेमाल कर लिया जा जैसे आगे जो हरण के जो परफेक्ट ढेर कोई डाले ला ना स्प्रे स्प्रे तो एगो फ्रेशो जब निकली फ्रेशो और परफेक्ट वहाँ निकली तब पेजे करबा तो हो फ्रेशो एगो गाज डला तहल तो एरोसोल कहा तहल वो भी और
1: ये
0: कभी कभी कोनो बाची मुँह में आग धर ले वेला तो पोम्पियो लोग बुझावे ला एगो सोल्यूशन से तो ऊ में भी रहल अब कोते ला सांते वो सेवियो था जानेला कोनो आदमी के दमा बा अस्थमा
1: अस्थमैटिक
0: तो जो हो ला पोम्पा ले वेलन जा हो वो में रहल तो अनेक अनेक मजा सेवियो था जगह पर तो यही कातिन हमने के पढ़ा दिखे के कैसे कंट्रोले चला करेगी
1: हाँ तो हमने की रिसर्च बताया कि चाहेला हाई अफेक्टेड होता तो अब साइंटिस्ट लोग बोलने से नहीं इगो समस्या बाहेला तो चाहेले कर हल करेगी
2: तो हमने के देश में ये ओजोन लेयर के बचाव खातिर कौन कौन कदम अपनावल गलबा
0: हम सोची रहते नहीं आगे बोलती जा इंटरनेशनल में का होता
2: अच्छा
0: इंटरनेशनल में का होता तब ओके आनब जा मॉरिशस में का होता
1: सुनना जैसे हम बोलें को समस्या हो गल बाग मुझे ओजोन लेवा क्या अफेक्ट होता तो हाई बोलने से देख जस्ती लगल थी ऑस्ट्रेलिया जोन बा उ लोग के लिफे सौची उल आगे तब गते गति पूछा लगल कि औची धरती में हमने जो नाम के प्लानिट बा सगरो लगल है लिफेवा हो मुझे जस्ती लगल बिल्कुल कौन से हो कतराक हो लगल लापो के प्रॉब्लम हो लगल लास्म के जस्ती प्रॉब्लम हो लगल तब जब सब के सब धरती लोग के मुझे डिफरेंट डिफरेंट पेई लोग के आप 197 पेई जब ज्वाइन हो गो कॉन्फ्रेंस में तब बोलचा देखा एक हमर पे में ऐसे होता ओकर बोलता वो हमर पे में ऐसे होता तब दिन से एगो हाई एगो अकेले एगो पे नहीं सके सॉल्व करे चाहे ला एक समस्या सब कोई के मिल के हल करे के तो ओकर से तब एगो नहीं हो एगो कन्वेंशन
0: 1992
1: 87 कन्वेंशन नहीं हो जब कन्वेंशन नहीं हो ओकर नीचे आल एगो एगो प्रोटोकॉल जो उनके बोला सा मोरियल प्रोटोकॉल कहीं मोरियल प्रोटोकॉल पर कहीं प्रोटोकॉल वाला सिग्ने होल मोरियल ऐसी में
0: कनाडा
1: में तो हुआ कौन सी बोलनी सा सब पे मोरिस पामी भी बोलनी जा चला मिल के अभी कर एको सुझाव खोजब जा
2: एको
1: समाधान निकाल अब सर तब भाव के अब डेफिनिया करनी जा देखा कैसे अब हमने फ्रिजिडिया से भी करते हैं सर एयर कौन से भी करते हैं सर तो कल से थोड़ा बोला हाई सेल भी बंद करे तब
2: कैसे सब, होई काम कुछ नहीं
1: नहीं
2: आगे नहीं बढ़ा
1: सर ई खातिन एगो प्लान दलाल सब पे एक मजे दीपान उकर फिनांसमा और दीपान उकर मगर से पे इंडस्ट्रियलाइज लोग के जस्ती तो सुविधा बात तो लोग हाली से करियन सा हमने तनी कैसे डेवलप में और सेतु एटा इंसुलिया से कैसे लील बोली ला सा ना तो हमने की जस्ती चला मुआयन दे के तो इकर खातिन एगो प्लान दलाल प्लान दलाल की प्रोग्रेसिवमा कुछ बोलते हैं यानी कि गते गते एगो हमने के 10 बरिस के लेता हूँ देनी सा जिमें ऐसे कब से हाई गाजवा रॉम्प्लास्टे करे हाउ जॉन हाउ गाजवा जैसे बुतालवा बोली रेफ्रिजरेंट ओके रॉम्प्लास्टे कर अब सा तो रॉम्प्लास्टे करके एगो दूसर रेफ्रिजरेंट आनी सा अब हाउ दूसर रेफ्रिजरेंट जब आनी सा पस की रिसर्च नहीं बता होता है टूट स्वीट कैसे सकबा डेवलपे कर दी एगो एगो ची अनुपडेट लेवाते हैं कैसे हमने के लिए कोविड में कोविड में चाहे हाल ही से वैक्सीन डेवलपे करेंगे तो चिकित लेता हूँ मैं चाहे वैक्सीन हाल ही से डेवलपे करेंगे तो हमने के साइंटिस्ट लोग के उन लोग के बड़ी पूरा प्रेशर तो दूसरी चीज एगो अल्टरनेटिव खोजे के तब एगो अल्टरनेटिव खोजलन से जो उनकी वो भी ओजोन के अफेक्ट करता मैं कमती से यानी कि हाई लफेक्ट में जाओ फोमी जो गाजवा बोले तो नीचा ओके वो अफेक्टे करता 100% अब देजवा से अकेला अफेक्टे करी 75% दूसरो 25% घटे नीचा तो एगो प्लान दल नीचा ऑंचे लुमोन में सब कोई हाई पे जब 197 पे एगो प्लान दल नीचा तो हमने के मॉरिशस के ताले भाई चमला बुनियाद हाँ हमने के प्लान रहल एलिमिने करे के 2010 ले हाउ जो प्रमे कमेंसमेंट गैस हुआ तब एक पर जस्सी खुलासा दलियन चमलाल
0: हाँ तो हमने का जानेला है रेम्प्लासे करे के दिक्कत का होला पस कि इजिस गाजवा ने रेम्प्लासे कर बहु इक्विपमेंट वो पर ही रेम्प्लासे करे के पस ये को नुवो गाज अनबा तो चाहेला इक्विपमेंट वा चाहे काम करे के हो गाजवा से तो हवे खाती ने गो जैसे भाई जी बोलन एगो पेयो देगो मोरातोर दिलन अब सब पेई के ओकर ओकर ओकर हाउ डिफरेंट बा

बस कि सजे करके पैसा कुटे होला त अब मान ल हप्पी अरब में जहां बहुत गर्मी कैला सगरो एयरकोन बा त सोचा हजारन मिलिए एयरकोन एक के कुछ

0: पैसा नहीं
1: जमा प्रॉब्लम प्रॉब्लम हुई तब जैसे बोलन जा तो एगो लेता मिला तब गति गति हम ग्रैंड प्लेस से खाली जा तो जो प्रीमियर चिप दे गैस वाल हलो का नाम रहा सीएफसी वो डेटा मैंने जब से पर ऐसा टेक्निक है तो ई सीएफसी वो हमने रसी वाले सा घटा के अब चला लालवाने के अब कंट्रोले कर पसी दूसर ऐप होते कर थोड़ा ना दूसर पे ही संगे तो चहला एगो सिस्टम डाले के जमे लादवान में हो गजवा मानना बोला दे मिल सैक से अब नहीं अनब तो चोरी चोरी कोनो इलेगल आनी तो कैसे कर चला ट्रेनिंग करे के अब इक्विपमेंट वो चला ओके आइडेंटिफाई करे के तो सब लेता ले वेला तो कस्टम के ट्रेनिंग दे ली जा इक्विपमेंट लोग के दे ली जा कि जैसे इलेगल अन जा टेस्टे कर जा तो है इलेगल है रेतू ने जहाँ से अन्य हुआ रेतू ने करा अब टेक्नीशियन वो जो रिपारे करे ला हम सिकली है गाजों में हाउ करे के रिपारे करे के अब एक नुवो गाज अन ला हमने जाते सिस्टम वा कैसे
0: चाहे जाने के ट्रेनिंग
1: ओकरो चाहे ट्रेनिंग दे के अब के ट्रेनिंग दे जो जो ट्रेनर वा बा जो प्रोफेसर वा बा ओकरो पर विदा करे के बाहर उसी के आल तब इ लोग के सिखेल संबंधित टेक्नीशियन लोग के सिखेल तो एगो लासन है एगो लासन है अब कानूनों छला आने के सब कंट्रोले करे के तो इ सब खातिर एगो लेता दिलन चाक मजे 10 ans 15 ans तब हमने रेशियो ली सा हमने बोन्स एलेव निमन एलेव रजा 5 ans आगे हमने रेशियो ले जा कंप्लीटली बान कर दे के हाउ सी एफ सी के तब डीजीएम कैटेगरी जोन गाजवा बा वो का नाम है एच सी एफ सी वो जैसे भाई जी बोलन वो कम ओजोन के नुकसान करेला लेकिन फिर भी करेला करेला तो टेक्नोलॉजी वा नहीं बन रहा ना जो निमन सब 100% वा बस वो लेता ले ला तो अब हम नुवो के पागे अब चला देखे के एक हमने के पढ़ा लेको सर्वे करे के कर के कितना बा मोरिस में कितना एयरकोन बा कितना फ्रिजिडियर बा कितना चिलर्स बा कितना लोपिताल में हो पसी जाए ला वैक्सीन वो सब ठंडा में चला रखे के कितना लोपिताल में चिलर्स बा कितना एयरकोन बा कॉलेज में लेकोल में घर में ब्यूरो में सगरो लोटेल में
2: मैम लोटो में
1: लोटो में तब सब के सर्वे कर ली जा तब देख ली जा कितना सकी कुत्ते हो सब के गत्ते गत्ते सांझे करके तब ये वो
0: बहुत
2: साल में आजूती करती है हमें अब डीजीएमआ के जो ग्रुप कैसे
1: बोला
2: तो पहला कुंजी करनी जा बोल जाए देखा एगो एगो एगो सीमा बा जो नुके बोलब सा हमने के जितना इक्विपमेंट हिला था उकर में हाई गैस वा आगे करब सा आनंद हाई गैस नहीं सकी मोरिस में हिली इक्विपमेंट में इक्विपमेंट से बोला चाहिए थोर एयरकोन में और थोर थोर फ्रिजिडियर में हाई गैस आश सी एफ सी वा नहीं सकी हिले तो एक खाती हमने के पास अमाउंट कर लाल बा अब जो डीजा हमने के इक्विपमेंट जो मोरिस में बा तो ओके नहीं इसका सारे थे करे ना तो ओके कौन जी करनी सा बोल सा गैस वा अनब सा मैं एगो सिस्टम कोटा देनी सा कैसे टू हैं पोताते हो वह कैसे 5-6 हैं पोताते हो उन सब लोग के उन लोग के समझ ही नहीं सा आगे देखा हमने ऐसा अभियान डले हैं इन सब तो सब मजे मिल मिला के करने सा कम जिस इसके लिए सरकार अपने से नहीं आके हैं पोसे के लगा है बस की भर्ती है सर भर्ती संसार में लोग के मिला था तो उन लोगों जब कहो जाते हैं पोते करते हुए तो उन लोग के ऐप उताते हुआ पर हाउ पेवा में वो भी बोलते हैं कि चाइना प्रॉब्लम ला तब चाहे हमने की जिमने करेगी तो लोग भी समझा तो अंसा कौन यर्जेंस बा जो चाहना जिमने करेगी तो हाउ से गो सिस्टम कोटा डलनी सा अब देखनी सा अब देखा तो कैसे तू इसके हमने के भाई चामलाल फॉर एग्जाम्पल ई गाज आना तो हाउ बे गाज आता से गाज आता डे गाज आना तो सा सबके जन करनी सा बोलनी चाहिए देखा ई टू ढेर गाज आने ला ई टनी कमती बाजी उन लोग को जितना उन लोग के इम्पोर्टेशन लोग की है तो एगो सिस्टम मजे प्रोराता पर कोटा कैसे कोटा देनी सा फिर मजे ऊ 100 tons आ रहा था हल पूरे एग्जाम्पल से दे होते हैं 100 tons हाई 50 tons हाई 2 tons तो सबके पारे कोटा नहीं दे ऑप्शन है डिपान बा ऑन कौन तब ऐसे सब कर ली सर तब झाई ला जब ऐसे हो गए कोतावा जब डल नहीं सर तब कैसे चामलाल जी बोलन टेक्नीशियन को ले चाला बहुत एम्प होता है टेक्नीशियन लोग के उन लोग के फॉर्माशो देखे तो अब हमने के अब शमा सकला बोल बा हाई जब प्लावा दला गल तो अब कौन सी कर अब सर
0: हाँ
1: देख एक चिपूत आजूते करती जब

0: कुतवा डली जा तो कुतवा हर साल घटले गल समझ ला ना कोमे कुत 100 टन तब जे जम कुत 75 टन तब 50 टन जिसका मजा जिमिनी हो एक के कुत ने सब घटाई बस की जेकर फ्रीजर टूट गल चाहे रिपेयर करे के ना तो होवे खातिर तेनी गाजवा चाहे ना रखे।
1: तो इस चर्चा को हम थोड़ी देर के लिए जारी रखेंगे। इसे आज टेक्निक पर अपर्णा है, प्रोडक्शन सहायिका है दीपशिखा और राजन मुलिया के निर्देशन में ये प्रोग्राम अभी आप देख रहे हैं। तो अभी के लिए एक ब्रेक लेते हैं, फिर इस प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे।

0: जानते हैं ओजोन की परत पृथ्वी के लिए एक प्राकृतिक सनस्क्रीन की तरह काम करती है और सूर्य की हानिकारक यूवी जैसे कि अभी कुछ दिन पहले इस पर चर्चा की थी अल्ट्रावायलेट भी किरणों से बड़े हिस्से को रोकती है। तो डॉक्टर फुरमान जी, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ओजोन परत की रक्षा करना वास्तव में अपने स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करना है?
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने तर्क रिपोन्सवा दे से आगे हम देखुन ब्रेक में जाए से आगे एगो बोलते नहीं जा कि प्रोमियर कोमांसमेंट जब हो गैस जो सेवे करते नहीं जा रेफ्रिजरेंट बोले नहीं जा उसका नाम बोले सा CFC। तो ओके मॉरिशस लोग मॉरिशस में हमने के लेटान दिला रहा 20 ले ओके कोप्लेटमेंट निकाल दे के एलिमिने कर दे के
0: लेकिन शुरू करते रहा 2010 ले
1: नहीं नहीं से मकोंची होल हमने के मॉरिस में 2005 में आरेटे कर दी सा कोप्लेटमेंट है निमन लेका करनी सा 2005 में आरेटे कर देनी सा अबरी अब जो रेम्प्लेसी करनी सा दूसर गैस वा ओके मोसा HCFC इबी तनी ओजोन की अफेक्टे करेला तनी कुन मसमान कमती है का अफेक्टे करेला ओकर भी को दूसरे को प्लान दलाल 2013 से अब 2030 लीडर रोल दलाल कि मैं ओकर भी एलिमिने कर दे अब सब हमने कौन सी करनी सा 2025 में 97.5% एलिमिने कर देनी सा देजा ça m'a de la caille caille 2.5 rec les ça j'ai mais caille 2.5 rec les ça pour son moi j'ai mais qui déca que c'est allé au chamilan di bai di bolan ko il a ga frisidé ba ko il a ga et a kon ba je n'a bili istemal kra twancha te go problem ho gal ta quand c'est au gazon ni ça aucun pays sa groupe a en pc ho gal ba ta juste caille go ti bout kani kun rec les hein ça qui en cas besoin c'est mal 2030 mais complètement 2030 mais arrêté que ça coûte sur Haïsan gaz ni en aimois mais du tout ça m'a dit non même équipement ok éliminer que les insectes 2013 qu'on a l'équipement Maurice mais il est là bon bien sûr que c'est amené que Baji Boulan j'en ai amené que douanier le qui comment dire le qui bien s'y que c'est checké que rien ça ta ego cab bila rahal 2016 2017 par là j'en ego importante an de rahal ta obine jan la kukar me hai aisan gas war rahal ta jab cheki hol to kar me hau gas jon on pc ha ta hau rahal okay kadam ja pre kanun nam nikar rahal hau sab jitna hau lut rahal sab pral gumai ke jon ha par se importe rahal bien sûr kanuni karwa holi kar me bo hai sab ne bolat nahi sa ta kaise bolta hamni ke control bahut chala karege कंट्रोल बहुत चला करेंगे तब ये खाती नहीं पोता हमने के जितना नुवो बच कस्टम ऑफिसर लोग हैं जिके डुआनी लोग हेलर थोन सा तो उन लोग के भी कंस्टामा फॉर्मेशन दिया ला उन लोग के चाहे ला देखे कि कोनो पहला एक आदमी नहीं पोत कोनो मजा हाँ गैस जो उनके बोले सा रेफ्रिजरेंट उन लोग के एपोते करें से आगे हमने की चाला उन लोग के चाला हमने लाके लिखे के ego autorisation qu'on dit qu'il y a côté caricatine a dit hay autorisation tab PMI de la ministère de la santé yani ki ok bolsa dangerous chemical control board ou lok PMI de wilansa basé habni ki recommandation par yani ki tu gaz an se importer kar toi tamni ke pehla lik ba habni ke ministère tamni dekhab sa tora kota ba ki nahi ba est-ce qui hay gaz a tora droit ba ani ke ou bien nahi ba a dit droit nahi ba ani ke tora bol de upset tora hay gaz नहीं दुआ बने के नहीं सक बतुआने अब हाई अजय गाजवा जो उनके दुआ बने के अब देखा अब साजी कोता में बा अजय कोता में नहीं बस पापन कोता दे पासे कर दिले पते डेफिनेटिव नहीं दियो अब सब के कोता ना नहीं दियो अब सब के ऑथोराइजेशन तो ऐसे सब के करके तब हमने एगो एगो नो ऑब्जेक्शन लेटर तब भेजा सा मिनिस्टर ला सांते के मिनिस्टर ला सांते के तो उन लोग हमने के नो ऑब्जेक्शन लेटर अटेंड करें से जैसे हमने बोला सा नो ऑब्जेक्शन लेटर उन लोग के देख के तब उन लोग अपन PMI दिया सा तो वो PMI वा हाउ इम्पोर्टेंट वा जो आने था ओके ले अब जो कर कागो आई तो दुआने लोग चिकित्सक दिया सा सिर्फ हाई है कि नहीं जब चिकित्सक दिया सा उन लोग के विश्वास होगा कि नहीं हाई है तब उन लोग के
0: ये सब सुन के कोनो जो नबी श्रोता दर्शक हमने के देखा तो केला उधर तनी को फिया पैदा होला जैसे कैसे नहीं बस के एगो एगो रेफ्रिजरेटर या तो एगो एयरकन खरीदे के अब पर्यावरण के दृष्टि में कौन सी ध्यान में रखे कि ये सब स्वच्छ
1: हाँ बिल्कुल सब उन लोग के डराए के नहीं बस कि हाई जितना

0: équipement à hel jata au niveau là devant checker quand le
1: tout ça
0: a dit hay gazwa OK nay droit ba hay économie année que ta une
1: année année année
0: nay sak ya
2: ori i marché régulé que là là market regulated ha je je nay rahi ta nay sak ba khridi
0: अब त्वाज्यम चीज बोला था नीचा तो है थोड़ा बोलीं जा पहला जोन गैस वा एकदम से उसोन काफी करते कर ओके कंप्लीट मां एलिमिनेट कर दीं अब दूसरम थोड़ा जोन बोली 97.5% ओकरो भी प्रेस्के फिनी होगल बस बा बोले प्रेस्के फिनी होगल बा तब इगो त्वाज्यम ग्रुप गैस आल जोन त्वाज्यम ग्रुप गैस वा आल वो जोन कितने अफेक्ट के ला तो हमने बोला आ चलो एक चीज मिलेगा छान उसन बस आयो छान बिन जब करल गल तब देखल गल ओ जाके सॉल्व मा क्लाइमेटिक करता
2: क्लाइमेट चेंज ओजोन फ्रेंडली है ओजोन के बिल्कुल हमने करेला अफेक्ट है ओजोन फ्रेंडली है लेकिन क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है
0: अब ओ लगा यू नो एगो समस्या के हल ढूंढला बस दूसरा समस्या प्रॉब्लम कर देवता ता अब बोलनी सा अब देखा ता जोन मोरियल प्रोटोकॉल वाला ओ बोले ओ खाली देखे ला जितना चीज खाली ओजोन अफेक्ट करेला अब हाईलाइटर चेंजमेंट क्लाइमेटिक के प्रॉब्लम करता
2: है एगो दूसरा कन्वेंशन
0: है एगो दूसरा कन्वेंशन तब अब नी हम नी जब मोरियल जब ज्वाइन हुई लिसा सब कोई पास ज्वाइन हुई लिसा तब बोली सा ए देखा हाई प्रॉब्लम हम नी खातिन हम नी क्रिएट कर लें सा ना तो हम नी चैनल को समस्या ढूंढ लीजिए
1: बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग के घटाई खातिर
0: घटाई खातिर देखा चेंजमेंट क्लाइमेटिक के लोग तो देखा था जब चला लो पूछी अभी लिटे
1: अभी कौन कौन कदम ली वर्ल्ड गर्ल
0: हां द स्पीक हाउ वी बोलते हैं थोड़ा तब हम नी बोली सा देखा तब तब बोलना चाहे देखा मोरियल प्रोटोकॉल वो खाली ओजोन के देखी तब बोली चाहे नहीं चला जाए एगो अमाउंटमा करे मुझे एगो अमाउंटमा करनी सा तो वो अमाउंटमा की गाली में होल
2: की गाली में वैसेज लाने वैसेज में
0: एगो पे के नाम है रुवांडा लाफ्रिक में वो लोग वहाँ पर मुझे सीने होल मुझे वहाँ पर एक्सेप्टे होल
2: कमिटे जब होल तो सब पे लोग एक्सेप्टे होल की चाहे ला कुछ करे की
0: और एगो जहाँ पे थोड़ा बोल देती हाई लीडवा के पहला अनलक मुझे चाहला नहीं ओजोन के चाहला देखे के हाई प्रॉब्लम की समझ हुआ हम नहीं डलें जा मॉरिशस पोमी भूमि पे ही रहा
1: अच्छा
2: दुगो पे जो एगो जो के रीजन के नाम है माइक्रोनेजी माइक्रोनेजिया और ही मॉरिशस जनला जब कॉन्फ्रेंस में जाइबा तो एगो लीडर जब देबा हो के कॉन्फ्रेंस वा के तो ओके बोला जा सीआरपी कॉन्फ्रेंस रूम पेपर तो ऊ लिखबा कि हम है विचार कर ले है देखा जे सकी हुई तो है कॉन्फ्रेंस रूम पे पवा मॉरिशस और मिक्रोनेजी साथ में लिखलन सा तब दिलन सा हो के
0: दिमिल नेप से हाला में दिमिल नेप से लड़ाई कर रहते हैं सा
1: अच्छा
0: तब जाके दिमिल सेज में सब पे जाके एक्सेप्ट हो सुन ला ना तो एक गुक बजे लीडे ऐसे ऐसे कि इतना लीडे बाग मजा
1: गाली अमेंडमेंट
0: की गाली अमेंडमेंट तो अब हाउ 2006 में कैसे भाई जी बोला तो अब 2006 से अब गनबा तो है 2026 सा यानी कि 10 बरिस होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं मजा हमें हाई साल 10 बरिस
1: मजा तो है सेलिब्रेट कर ला कौन कौन गतिविधि हो तो हम निश्चित अब देने से
2: वो भी आप जाते हैं और ये दुबई
0: आप जा तो हाई हाई बोल दे बताएं हैं तो अब कैसे भाई शर्मा क्लाइमेटिक को बोला था हाई गाजवा हाई गाजवा फासिल नहीं बाहर प्लास्टिक करेंगे एगो एक दूसर एगो मजे तीन गो गैस जोन के बोलना नेचुरल रेफ्रिजरेंट कैसे बा अपन बोल देते हैं लाइक आलोक ने सुनियंस तक कैसे बा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सीओ टू दूसरा बा अमोनिया और लामोनिया जिसे बोलना सा और तीसरा बा जोन हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स फॉर एग्जांपल कैसे लाक्यूजिन में जोन गैस है विके ला सा एगो टाइप दो हाइड्रोकार्बन
2: मीथेन बा ब्यूटेन बा ये सब
0: तो हमने ब्यूटेन से विके ला ब्यूटेन और प्रोपेन से विके ला जा हाई डुगवाक मचे अब सुना अब सब सब हाई तीन गो गैस में ई बड़ी अच्छा बा पर्यावरण के सुरक्षित रखेला यानी कि
2: ओजोन के प्रोटेजे
0: करेला ओजोन के प्रोटेजे करेला शॉमा क्लाइमेटिक बहुत कमती करेला तो हाई किक मजा प्रिविलेजे कर दे ऐसा गैस में आने के और हाई गैस वा मोरिस में हेल गल पाए हे आदमी लोग आना तुंस है पोता तो लोग आना तुंस मैं एक समस्या कौन सी बा अब ऐसा समस्या एगो सेतन फासों में पहला इतनी जस्ती मंगा है दूसरा एक में रिस्क भी एसोसिए है कौन रिस्क एसोसिए है फॉर एग्जाम्पल दिख बा अमोनिया कोनो कोनो प्लस सकेला सुनली हो मॉरिशस में नहीं मैं कोनो प्लस में सुनली हो कि हाई अमोनिया जब जब बड़का चिप में पासे होला एगो आज एक छेद हो गया चुबा में तो निकल के एगो टॉक्सिक गैस है
1: पॉइजनस हो
0: जाए, पॉइजनस हो जाए, ये हानिकारक हो जाए।

0: समझ लो ना। तब जब लेको मजे को हल नहीं ढूंढबा कैसे एक प्रोटेजे कर कैसे को मजे निमन से ओके हैंडल करबा हाइला डिजेम कैसे बोल सा हाइड्रोकार्बन निकला गैस कैसे लाकू चेंगे गैस कितना लास्ट में सुनने जा बेचारा लोग बेचारा बेचारी लोग अपन जान गवा दे लास्ट लास्ट साल दुबे में
1: बहुत केसेस सुने
0: एक ही चले गो प्लास में स्टोर करे के जहाँ जिम्मे जहाँ निमन से स्टोर करे के अब डिजेम तू अपन लगा ऐसा गैस डालो तो ओकर में चला ओकर सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स त्रोजियम चला टेक्नीशियन को ट्रेन करे के बस कि अब देखा ना कोनो कोनो टेक्नीशियन अब काम करे लंच तब वो लोग कोनो फीमी करे लंच ना तो हाउ हाउ गाजवा जन हाउ नुवो गाजवा जब कैसे हाउ हाउ इधरों को अभी अब रहते हैं हाउ फीमी कर बता जन बा का हो जाए बा ना आग धर ले तो एक हाथ ही चाल ला उलो के जनाई के उलो के फोमाशों दिखे देखा पापा हाउ जीतू फीमी ने
1: गहरे गहरे कैसे नहीं समझ क्या
2: था और सिस्टम वो डिफरेंट बा ना जन एयरकॉन जन फ्रिज दे हाउ का सिस्टम डिफरेंट बनाए के रिपेयर करे के पारे ने जैसे आगे रहल सिस्टम वा सांजे हो गलत है चाहे ला फॉर्मेशन करे के ये बहुत बहुत बहुत जरूरी है बहुत कोनो देश में अभी उलो के हम निगो करे खुद जा सर्टिफिकेशन को मजा जो रिकॉग्नाइज हुई मान ऐसे एक मजा को टेक्नीशियन है हम बोली टेक्नीशियन है तब प्रमाण लाना अपन प्रमाण लाना कि टेक्नीशियन हुआ तो एक सर्टिफिकेशन सीनियर को यूनिवर्सिटी की इतना घंटा स्वीव कर ले बाकू तब जानब सा हाँ तू एगो सर्टिफाइड टेक्नीशियन हुआ चला प्रमाणवा रह के तब के दे प्रमाणवा तो प्रमाण तो के यूनिवर्सिटी दे तब चला फॉर्मेशन करेगी
1: तो हमने के आम नागरिक जुनबा कैसे ओजोन लेयर के सकेला प्रोटेजे करे
0: हाँ ये बड़ी अच्छा सवाल है देखा पहला हम बोलती जब जेब को खरीदारी करे यानी कि इस पथोरे को एयरकोन किने के बाद को थोड़े को रेफ्रिजरेटर किने के बाद रेफ्रिजरेटर के उतना प्रॉब्लम नहीं होता बस कि है जितना रेफ्रिजरेटर मोज में हिलाता अब लापली पर ओके निमन गैस बाकर में लापली पर निमन गैस बाकर में
2: सकला आदमी लोग नहीं है ध्यान में दल्ले जा की
0: जैसे मत अच्छा
1: बिल्कुल
0: चेकी कर लिखे कौन सी बा कौन गैस बाकर में ओके में लापली पर मजे तक बस बा प्रोपेन बा कौन मजे डेलियन से ओजोन फ्रेंडली या क्लाइमेट फ्रेंडली क्लाइमेट फ्रेंडली वो है बोलता हूँ और देखा एक मजे को फ्रिजिडे किनबा सिपा मैं वो एयरकोन किनबा तभी देखा हमने कि जो मंत्रालय पब्लिक यूटिलिटीज इनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस लोग भी रेटिंग डाल दे रहे वन जा यानी कि देखबा कबो देखबा A+++ कबो B+ कबो C+ ऐसे मजे लोग रेटिंग डाल रहे वन जा आवा नॉर्मल जब सबसे जस्ट है कैसे हमने के टीम ले ला पा
1: रिजल्ट
0: मिले ला
2: साजा उ कमती कुकों से भी करेगा समझ लेना
0: वो कैसे बोला सो के एनर्जी एफिशिएंट एफिशिएंट यानी कि कमती कुकों से भी मैं बिन सुया कोनो चीज जस्ती निमन खोज पा तो तनी कोन कर प्रिवा तनी कोन
1: जस्ती
0: रही
2: चला बैलेंस वा करे के ये देखा एगो चीज किनला जिस 5000 रुपी जस्ती महंगा पे करला तो लॉन्ग टर्म में देखा जे लॉन्ग टर्म मान लो बिजली के जो पेजी जितना करत हुआ 5 साल में 10,000 के कम पे ये कर ला तो है जा 5,000 जस्ती पे कर ला तो
0: हाँ
2: प्रॉफिटेबल रहा
0: ना एगो एगो एगो कंपैरिजन
2: और ये तो हर जिम्मेदारी है कि पर्यावरण के रक्षा करेंगे ऐसा सोचेंगे
0: हवी बोलते हैं जब जब खरीदारी करे जाइबा तो उपति होइया कि ओजोन आर क्लाइमेट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट से भी करेंगे देखा कोनो कोनो एयरकोन में देखा कि गैस भाव को नाम है कैसे खाई कार्बन डाइऑक्साइड बा और बोले सा और इडो को भी बा तो देख बा आज हाई लगाओ कर में निकल रही कर में रेफ्रिजरेंट कौन रेफ्रिजरेंट बा स्वा मैम जब जब खरीदारी करे तपन हाउ मगाजे में स्वा जहाँ पर शो
1: पूछताछ तो जरूरी भी है पूछे के चाहिए
0: हाँ इन्हें इसकी जो तीन सा बार नुवो गाज ला तो बोलियां जा हाँ तो लोग भी चेक कर जा हाँ इन्हें सा तो ऐसे जस्ती अच्छा बा तो हाउ खरीदारी हाउ किना पहला और दीजिए देख बक मजे अब देखा मजे ढेर जब ढेर गर्मी भी करता तब जब घाम ढेर तेज बा तब सकबा प्रोटेजे करिए अपने

0: 58 लाभो खे तनी सनस्क्रीन उसकबत डाल दे है ये पूता छतरी लिखे स्वा तनी लंबा लामोस के शमीज पेंगो कास्केट मैम रिबान सकबत डाल दे है सब प्रोटेक्शन बड़ी इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है और सेतु लेका लो के हमने बोला था जा दिक्कत तनी कुन हमने को कॉम्पिटिशन लॉन्च करब सा नवंबर में लास 15 आ 20 ans
1: comme non jovan aur tumne ke vidyarthi logon ke jaisi pare par dhyan chahiye ve ke ki kaise is sab chahe batawe ke
0: parce que dekha hamne ke de duniya presque fini ho gaya ab jo nouveau peri ba u log liye
1: bilkul naya peri ke chahe
0: naya peri ke chahna ke main dhyan rakhe ke ab log ke chahna jane ke kon kadam chahna uthaye ke
1: ha kyunki kafi gambhir samasya ko nitawe ke chahe
2: ra ek baat bana hamne embassy ke madhyam se hamne dhanyawad kar rahe hain embassy ke ki embassy ke madhyam se hamne jane mahila jo hon ja ek purush ke sikhaiba तो उ एक जना के सिखाइब एगो महिला के सिखाइब तो उ परिवार सब परिवार के सिखाइब समझ लेना बस कि ऐसे है दुनिया में ऐसे होता
1: है महिला तो है और अभी जैसे आप लोग समझा रहे हैं ये भी जानकारी काफी महत्वपूर्ण है तो अभी जैसे बोलिए से सितंबर के ओजोन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन लेयर दिवस मनाते हैं तो मंत्रालय देने से कौन कौन गतिविधि का आयोजन करल गलबा
2: हाँ देखा पोमियत है अभी एक बाद और ये वो प्रोग्राम रही है बेसिक हाँ। में तो ये हमने के
1: एक जागरूकता नहीं
2: है जो है ना करेंगे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन बा उनके जनाई के हाँ और ये एगो मैसेज प्रिपेयर कर लें जा जो उनके विदा कर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज में और जीजीएस बोली जा तो उस सब मंत्रालय में लोग के ईमेल में सब के विदा करी
0: विदा हो गल बा
2: तो सब कोई के है मैसेज वहाँ मिली जो जो बतेले हैं जा हवे के बारे में है बा और हमने के ट्रेनिंग जो टेक्नीशियन के बा वो जारी रख लें जा हर साल लगभग एगो 80 to 100 टेक्नीशियन के ट्रेनिंग दे बताए जा
1: अच्छा जो मंत्रालय में जो टेक्नीशियन है वन वो लोग के ट्रेनिंग दे बदल जा
2: नहीं जो रिपेरेशन करे ला और देओ सब पब्लिक लोग हां जेके मन करी
0: हां अरे गो हमें गो मांग करती यहां पर है हाई ट्रेनिंग का जो दे ला जा ई ग्रेचुई है ग्रेचुई
2: यानी मिनिस्टर पे गेला
0: या कोनो भी जो टेक्नीशियन लोग हो जा सर्टू रेफ्रिजरेशन और रिफ्रॉडिसमेंट में जो काम करे जा अली उलो के मन हुए गुआ ट्रेनिंग स्वीप करेंगे तो हमने के मंत्रालय से तक जा संपर्क रखे बस कि हमने को लालिस पारे करते हैं जी वो लालिस पारे कर ले हैं जा तो हमने के ट्रेनिंग वहाँ के देवेला हमने के MITD जो अति बन लोग हमने के उलो के सहयोग से यानी कि हमने उलो के पे कहला जा और पासों लोग के धन्यवाद कर दे
2: यूनिवर्सिटी
0: लोग भी यूनिवर्सिटी मास्क आ गए उन लोग दूसर एथी पर कर लें कैसे हाई इको सिस्टम कैसे अमोनिया बना इको सिस्टम कास्काड मचे सेवी लो जन बड़का सुपर मार्शे में से की जाए या चिलर्स के एक मचे सेकेंड से सेवी करे चिलर्स कौन सी है बड़के गो हाँ बड़के गो इति है कैसे जो तुलुप ताल में से भी हुआ
1: हाँ जैसे लोग
2: मार्केटिंग बोर्ड में बाहर जहाँ आलू और प्याज रखी ला जा
0: मैम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बा बड़के पास की ठीक जहाँ पर ढेर एक को मजे से भी ला एक वो सिस्टम छीलक मजे जस्ती बड़का को मजे भी वहाँ आवला तो हाई सब में फॉर्मेशन दे ला जा तो आज कोनो टेक्नीशियन सुनत हुई जो उनके बन बा ट्रेनिंग स्वीप करे के जो नुवो टेक्नोलॉजी पर आवा था तो हमने के मंत्रालय सेकेंड जा लिखे तो हमने के ईमेल भी बा मंत्रालय में
2: सेकेंड जा
0: टेलीफोनी वेबसाइट में हिल के
1: हॉटलाइन नहीं ना जैसे
0: हॉटलाइन में जैसे हॉटलाइन आप तो कॉम्प्लेंट
1: करते
0: हैं तो हाई में हमने के वेबसाइट में हेल के गो देखें जो कौन ईमेल एड्रेस वहाँ पर munv.gov.mu तो सेकेंड हाई पर लिख के हमने के विदा कर दिया हाँ मेल विदा करके स्टाजर बोलें सब लोग इंटरेस्ट वन सर पर टेक्नीशियन मैम कोनो भी कंपनी भी होई अपन
1: लोगे हाँ
0: लोग अपन टेक्नीशियन के विदा कर दोनों चाहे लगे थे गुलालिस पारे करने सा अब बिरिजा कितना कोई वेटिंग लिस्ट में बा तैसे मैं सब के दे हुआ थे इसे पर उसकी पांच गो ट्रेनिंग सेंटर MIT दी बा माइबू बा पिटों बा इबेन बा मतलब कोडो बा ये सब बा तो डिपेंड बा तो रीजन जहाँ पर रहे ला तो वहाँ पर थोड़ा की विदा कर
1: नजदीक
0: हाँ नजदीक और हाई ट्रेनिंग हुआ सर्टू सामजी के दे ला जा जिनमें कि दिन में अपन काम पेज हुई बट सामजी कल और सामजी शायद वो डेमी जूने हा डेमी जूने सैंक साम

0: जी सक हाउ हाउ ट्रेनिंग वा सेवी करी जब बोला हो जाए ते गो तो रा सर्टिफिकेट दी अंश हाउ सर्टिफिकेट वा
1: अभी हाउ पोफवा रे ही कि तू सक बा ही सब कर
0: हां ता हवे से कैसे हम की तलवा भाई जी बोलन हमनी के अब लालवा जे गो लालवा हमनी पारे करने से हाउ लालवा में रही कि अपोचे दिपितेल्लानी से जितना टेक्नीशियन रही जोन सके काम करे रेफ्रिजरेशन सब जो एयरकोन के देखे और रेफ्रिजरेशन में काम करे उन सब के ओब्लिगेटरी रही एगो सर्टिफिकेट आज सर्टिफिकेट ओब्लिगेटरी नहीं रही तब नहीं सके उनसे ओपेरी करे और सब जनता लोग के भी लोग के भी एगो फर्ज बनी देखा आज कोई आवाज थोड़ा लगे पारे करे को नजाफे तो एग्जीजे चला करे कि ऊना सर्टिफिकेट si vous prenez un certificat, pas mettre l'armée dans mon équipement.
2: Car il y a une sécurité. Non,
0: c'est sécurité. Parce que des cas, même des cas courants qui nous a fait dans le bas, courants qu'on nous a fait, dans le cas, c'est ILCB, tout ça. Il y a une certified technician qui t'aura été carré. Ça m'a l'air, non?
2: Alors, il y a un nouveau customs officer, il y a un nouveau recruit, où il y a un training d'IATA. Parce que जो रिटायर हो गए तो लोग चल गए लंजा अब नुवो बा तो उ लोग नहीं जाने लंजा तो उ लोगों के साथ ट्रेनिंग करे के एगो एगो वर्कशॉप करे थे जा मीडिया संगे सजा जर्नलिस्ट लोग संगे बस कि उ लोगों के छा जनाए के तब उ लोग लिखियन सा तो पब्लिक के जनयन सा तो एम्बेसी वो लोग के जो जर्नलिस्ट रही उ लोगों के निमंत्रित और एगो चीज ने भुलाए कि हमने भाई रोड्रिक जो हमने के भाई बहन रोड्रिक के हौ जो काम होल बा गल है जहाँ रोड्रिक में ट्रेनिंग कल है जा हौ जो उनका ट्रेनर्स लोग के हो जा कस्टम लोग के सबके ट्रेनिंग दिया बा हौ जो
0: हुआ भी एगो एम आई टी दी बा हुआ पर बीज एगो सेटअप करनी जा इक्विपमेंट विदा करनी जा फॉर्मेशन देनी जा हौ जो एम आई टी डी में काम कर ला वहाँ पर ताकि जितना टेक्नीशियन बा उन लोग के भी सके जा उन लोग के फॉर्मेशन दे
1: तो प्रोग्राम के अंत तक पहुंच गए हैं कुछ दो शब्द इसका मतलब क्या बोलना चाहेंगे हमारे
2: श्रोता जो काम करते हैं जहाँ हमने अकेले नहीं सकब जा करे हमने गवर्नमेंट
1: मतलब
2: की ओर
1: जनता का भी चाहे सहयोग
2: जनता के सहयोग बहुत बहुत आवश्यक है बस की एगो सबके साथ हाथ दे जाना तब हमने सब सकब जा गैसी हुई एपोताते टेक्नीशियन ट्रेनर्स मिनिस्टर पब्लिक जो जर्नलिस्ट लोग बा सब कोई एगो एगो खुशी के बात है कि हमने जो वो निवो है जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन में मॉरिशस एगो खूब निमन हो बा उन लोग के
0: पोजिशन
2: रिकॉग्नाइज करें सब हमने के देजा ट्रॉफी भी मिलल बा रिकॉग्निशन हमने के काम में
1: ये तो बधाई के पात्र हमने
2: सबके सहयोग से
0: हाँ सबके सहयोग कैसे बोलन से सबके सहयोग चाहे ला हाँ और देखा हमने गो एगो लॉजिक भी का जी थोड़ा का जी जनता लोग के लोकाजन मिली एगो लॉजिक रहल काल एक्सप्रेस में पब्लिक कर लिया है जा उन लोग भी हाउ भी सके अंजा पर एक माजे को मैं तीन कुन देखे आवला में और देखा कैसे अब बोली बन से कैसे ओजोन ई भी लिए बाहम निके श्रम क्लिमाटिक के जहाँ तो जा कैसे अभी श्रम के सगरो संसार भर टीम में अभी देखा हाल ही में नेपाल में का होल सागन के बात रहल इंडोनेशिया में देखा हुआ बर भी नहीं जानते से इसकी श्रम क्लिमाटिक से है इवोल्यूशन होल में श्रम क्लिमाटिक तेलमा सगरो अपनी की क्लिमा डिबालेंसे कर दे हुआ था नेपोत को नजाफे से की हुई तो ईगो कारण मजे कैसे हमने चैनल मजे जिमिने करी के इवोल्यूशन हमने के जोन गैस बोल जी एच जी एमिशन जोन बोली राजा ओके चैनल जिमिने करी के तो कैसे सक बजा जिमिने करे हमने को सैप कदम सक बसले गांची सक प्लांटे ओ मो ईगो गांची जितना मजे रही सक प्लांटे करे
1: तो आज की चर्चा से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है ओजोन परत केवल वातावरण का कोई मतलब दूर का हिस्सा नहीं है बल्कि हमारी सुरक्षा के से सीधे जुड़ी हुई है तो अच्छी बात ये है कि दुनिया ने मिलकर एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या से निपटने का उदाहरण भी पेश किया है तो आज इस प्रोग्राम से आप लोगों को जितनी जानकारियाँ प्राप्त हुई हमें पूर्ण आशा है कि इससे आप लोग ज़रूर लाभ उठाएंगे और ख़ास करके हमारे जो दो अतिथि सम्मानित अतिथिगण जो है डॉक्टर राजेंद्र फुलमान जी और श्री दिनकर छमीलाल जी आपकी इन सारी जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।

0: अपर्णा दीपशिखा और श्री राजेंद्र मूल्या के सहयोग के लिए इस प्रोग्राम को यहाँ पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: RM3 Radio.

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: 4 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से. आपको नमस्कार.
4: नमस्कार. चार बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. गन्ने की खोई से अब घावों के लिए खास पट्टी बनाई जा रही है. यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के शोधकर्ता इसे एक त्वचा रोग से होने वाले घावों के इलाज के लिए तैयार कर रहे हैं. इस पट्टी में कीटाणुओं से लड़ने वाला एक तत्व भी होगा. शोध सफल रहा तो इसे बीमारी से प्रभावित देशों में उपलब्ध कराया जा सकेगा. रिश्ते के औद्योगिक क्षेत्र और M2 मोटरवे के किनारे ज्यादा पेड़ लगाकर इलाके को हरा भरा करने की पहल. रिश्ते इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत पर्यावरण मंत्री की मौजूदगी में हुई. IBL ग्रुप की स्कॉट लिमिटेड द्वारा तैयार इस परियोजना को करीब 30 कंपनियों के साथ स्थानीय और सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है. मॉरिशस में पिछले दो हफ्तों के दौरान ज्यादातर सब्जियों के दाम 15-30% तक बढ़े. बाजारों और बड़े बिक्री केंद्रों में इसका असर देखा जा रहा है. छोटे किसानों के अनुसार ठंड, तेज हवा और पानी की कमी के कारण फसलों की बढ़त धीमी हुई. इससे बाजार में सब्जियों की उपलब्धता भी कम हुई है. हालांकि फिलहाल ज्यादा चिंता की बात नहीं है. खेतों में मौजूद सब्जियां अक्टूबर के मध्य तक देश की मांग पूरी करने

के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में दो महीने के भीतर 9 महिलाओं के शव मिलने से चिंता बढ़ गई है। ताज़ा मामला जोहान्सबर्ग के पूर्वी इलाके डोनपार्क का है, जहां सड़क किनारे चादर में लिपटा एक महिला का शव मिला। उसकी पहचान अभी नहीं हुई है। जुलाई से अब तक अलग अलग इलाकों में 8 अन्य महिलाओं के शव मिल चुके हैं। कई शवों पर चोट के निशान पाए गए। हालांकि पुलिस ने अभी भी ये साफ नहीं किया है कि सभी मामले आपस में जुड़े हैं या इसके पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ। Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: बजकर 9 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। आज बताइए आपका दिन कैसा रहा, ऑफिस में बिजी रहे, घर पे थे, काम कर रहे थे, या बस थोड़ा सा आराम। और इस टाइम तो बहुत सारे लोग बस इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब ऑफिस से निकल के भाग के घर पहुँचे, और कुछ लोग चाह रहे होंगे कि कब रात हो जाए और आराम मिले थोड़ा सा। कई लोग सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं तो उनके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इस टाइम तक। पर हम आपको बस इतना ही कहेंगे, हाथ में चाय लीजिए या कॉफ़ी लीजिए या नींबू पानी लीजिए, अभी भी थोड़ी सी धूप है तो इस समय आप ले सकते हैं। इंजॉय कीजिए हमारे साथ ये दिल से मिले दिल कार्यक्रम। इस समय मैं आपका साथ दे रही हूँ पूनम, और इतना ही बस कहूँगी कि जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर जब दिल की बातें होती हैं, दिल की मस्ती की बातें होती हैं, वहाँ पर एहसास होता है कि आपके मैसेजेस इस प्रोग्राम को पूरा कर पाते हैं। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है और 90s के गानों को पसंद करते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5250600 पर, और अपने जो पसंद का गाना है हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर चलाएंगे। बट आपका होना चाहिए एक तो बहुत ही प्यारा सा जो शाम के माहौल को खूबसूरत बना दे, और साथ में कुछ रोमांटिक हो तो और मस्त है। और अगर आपको लगे कि ये जो टाइम है जिसमें आप किसी को याद कर रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इंजॉय कीजिए अपने इस प्रोग्राम को दिल से मिले दिल।
1: RM3 Radio.

जिसे इश्क होता है और उस समय आपको ये गाने बहुत अच्छे लगते हैं और जब ये गाने चलते हैं तो उनकी याद आती है, चाहे वो आपके साथ इस समय हैं साथ या नहीं, पर कई बार वो जब जिससे मोहब्बत हुई होती है वो आपकी ज़िंदगी में आपका एक हिस्सा तो बन जाते हैं बट ज़िंदगी के किसी रास्ते पर उनका रास्ता मुड़ जाता है और जब वो मुड़ जाता है तो एहसास होता है कि काश हमने वो बात पहले कह दी होती तो शायद आज हम एक साथ होते। पर अगर

0: कि लैला मजनू से बड़ा कोई नहीं था, और अगर आप में भी वो वाला प्यार अभी भी जिंदा है तो ये गाना आप सबके लिए।
1: RM3 Radio.

आप सुन रहे थे अनुराधा पौंडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में लैला को भूल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत गाना था। और इस समय जो ड्राइव कर रहे हैं हमारे वो दोस्त, मैं आप ही को कहना चाहती हूँ कि जो कार ड्राइव कर रहे हो, अगर आप आराम से घर वापस लौट रहे हैं या कहीं पर भी जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो हम तो यही कहेंगे आप आपका सफ़र बहुत अच्छा जाए। और ये जो गाना बजेगा ना, तो आपको इतना अच्छा लगेगा क्योंकि आपको एहसास होगा कि शायद कोई आपके साथ इस समय मौजूद है। और ये जो गाना है उनके लिए भी बहुत अच्छा लगेगा जो इस समय आपके साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके लिए कहते हैं ना कि वो परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत सिर्फ एक लड़की से ही होती है, माँ से होती है, एक बेटे से होती है, बेटी से होती है, किसी रिश्तेदार से होती है। मोहब्बत के लिए कोई नाम का टैग की ज़रूरत नहीं होती है, बस मोहब्बत करने के लिए किसी से प्यार करने की ज़रूरत है। वो कोई भी हो सकता है, डैड भी हो सकता है। तो चलिए भाई, हम तो यही कहेंगे आप जिनके साथ बैठे हैं, जो बैठे हैं साथ में, उनका खूबसूरत सफ़र जाए। और बस अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिए,

0: साथ में आराम से इंजॉय कीजिए, गानों को इंजॉय कीजिए, और हम तो आपके साथ हैं ही। इस समय मैं आपका साथ दे रही हूँ पूनम, इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को, दीवाने दिल दीवाना, अमित कुमार और उदित नारायण की आवाज में।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: बजकर 33 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिल से मिले दिल के साथ और इस समय मैं साथ हूँ आपके पूनम। बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, कुछ दिमाग से जुड़े होते हैं, कई बार एहसास होता है कि हमें लिरिक्स से कोई मतलब नहीं, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं, पर उनकी धुनें बहुत पसंद होती है। पर ऐसे ही कई गाने होते हैं जिसमें इंसान बस जुड़ता है अपने एक फील को लेके। हाँ, वो होता है, वो दर्द होता है, कई बार इंसान हार जाता है, कई बार फिर भी कहता है नहीं मैं जीऊँगा, उस इंसान के लिए जीऊँगा जिसने मुझे दुख दिया दर्द दिया, और कई बार इंसान कहता है मैं उसके लिए जीऊँगा जो मेरे साथ हर वक्त खड़ा हुआ, हर दुख में मेरे साथ चला। पर कई बार एहसास होता है कि हाँ ये सारी बातें तो एक तरफ, पर मैं उस आवाज़ के लिए जीऊँगा, उस जज्बे के लिए जीऊँगा क्योंकि उस आवाज़ ने मेरा ज़िंदगी बदल दी। तो हम तो यही कहते हैं कि जैसे आपके मैसेजेस आते हैं ये हमारी ताकत बनते हैं, और एहसास होता है कि आप इस प्रोग्राम को कितना पसंद करते हैं। इतने सारे मैसेजेस आए हैं ना कि उनको इतना पसंद आ रहा है ये प्रोग्राम। तो मैं तो यही कह रही हूँ थैंक यू सो मच आप सभी का साथ देने के लिए, इस प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं। और ये पुराने गाने आपने पता नहीं कितनी बार सुने होंगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिल में एक छाप छोड़ जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गाना चलेगा, पर मुझे एहसास है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं एक टीस ज़रूर उठेगी, चाहे आपको किसी से कभी प्यार हुआ ना हुआ हो, पर एहसास होगा कि दुख क्या चीज़ है। इंजॉय कीजिए इस गाने को, और बहुत ही प्यारा गाना है, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर जैसे ही आपको पसंद आए ज़रूर मैसेज कीजिए 5250620 पर कि आपको ये गाना कैसा लगा।
1: दिल से मिले दिल।

0: जिस वक्त हमारे साथ हैं हमारे लिसनर्स, लेकिन नज़र उनके किचन की तरफ है। हाँ, आप जो सोच रहे हैं कि क्या आज रात को बनाएं, तो हम आपको इतना ही कहेंगे, रोज़ रोज़ अगर बोर हो चुके हैं अपने उसी ट्रैक पर, वही खाना बना बना के, दाल चावल वही सब्ज़ी, तो बोरिंग नहीं कीजिए अपने खाने को। आज कुछ नया ट्राई कीजिए, अपने घर में किसी से पूछते रहिए, सबको फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भाई रात को क्या खाओगे। तो जब क्या होता है ना, जब सबसे पूछ लेते हैं कोई मामा या वाइफ या बच्चे पूछ लेते हैं कि क्या खाओगे, तो पता चल जाता है, एक मूड पता चल जाता है कि कैसा रहेगा। कभी कोई बोल भी देता है, अरे छोड़ो ना घर का क्या खाना, चलो आज बाहर चलते हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा अलग सा माहौल बन जाता है। पर दिल से मिले दिल में हम प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि दिल की बातों को सुनना चाहिए। कई बार एहसास होता है कि किसी का फेवरेट चीज़ क्या है, तो थोड़ा सा एफर्ट्स डालो, थोड़ा सा प्यार डालो, थोड़ी सी मोहब्बत डालो उस खाने में और बना दो, क्योंकि आप सबको तो एहसास ही होगा कि किसको क्या पसंद है। तो चलिए भाई, हम तो गाने आपके लिए इतने सारे लेकर आते हैं आपकी पसंद के, जो हमें पता होता है, पर हम आपकी पसंद के नहीं चलाते, पर फिर भी ये जो एक गाना है, एक किसी की पसंद का गाना है, तो हम भी कहेंगे आपको कि आपकी पसंद है, तो फिर हम कैसे रोक सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल चलाने वाले हैं, एंजॉय कीजिए अपने गानों को।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: दोस्तों, वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। अभी तो शो शुरू ही हुआ था और अभी अलविदा कहने का वक्त आ गया, लेकिन दिल से मिले दिल में अलविदा नहीं होता, बस फिर मिलेंगे होता है। आज अपने दिल से जो प्यार दिया, मैसेजेस किए, उस सब के लिए धन्यवाद। और कॉल्स भी बहुत सारे लोगों के लिए आए, पर हमने उनकी पसंद के गाने चलाए तो सही, बट फिर भी आपको इतना यही कहेंगे, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी मैं तो जा रही हूँ, मेरा नाम था पूनम, पर मेरे बाद आपको साथ मिलेगा संजय जी का। इंजॉय कीजिएगा, अपनी शाम को खूबसूरती से जिएगा, और फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी समय, और फिर बात करेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: इस समय शाम के 5 बज रहे हैं।
2: राम रसधारा
1: ओम श्री गणेशाय नमः।

0: ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। रेडियो मनोरंजन के सभी भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सियाराम, जय जय हनुमान। आज के राम रसधारा सत्संग में आप सबों का हार्दिक अभिवादन है। स्टूडियो में उपस्थित तीन बहनों का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। माला जी, शिवानी जी और सुनीता जी, जय सियाराम,
1: जय सियाराम।
0: आज के इस प्रोग्राम का श्री गणेश करते हैं श्री राम स्तुति, श्री हनुमान स्तुति और सुमिरनी के साथ। जय सियाराम,
1: जय सियाराम।

0: रसधारा
1: जी हाँ देवी और सज्जनों, आज हम रेडियो मनोरंजन की लहरों पर राम रसधारा प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम रामचरितमानस के सुंदरकांड के एक बहुत ही विशेष और बहुत ही मनमोहक प्रसंग का रसपान करेंगे और वो है श्री हनुमान विभीषण मिलाप। जामवंत जी से प्रेरित होकर हनुमान जी समुद्र लांग कर सभी चुनौतियों को सभी कठिनाइयों को पार करते हुए लंका तो पहुंच जाते हैं और वहां पर उनकी खोज शुरू होती है। मशक के रूप में हनुमान जी गली गली महल महल ढूंढते हैं माता सीता की खोज में और तब जाकर उनकी भेंट होती है विभीषण जी से। जय सियाराम
2: जय सियाराम।

0: Jay Sieram.
1: भवन एक पूरी देख सुहावा हरि मंदिरा तन बिन बनावा माता सीता की तलाश में हनुमान जी लंका की सैर करते हुए रावण के महल में पहुंचे और महाराज रावण को सोते हुए पाया और वहां पर भी उन्हें माता सीता नहीं दिखी। तब उन्हें एक सुंदर भवन दिखाई दिया जिसके बगल में श्री हरि जी का एक पावन मंदिर खड़ा था। राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, उस महल के दीवारों पर श्री राम जी के तीर और बाण के चिन्ह अंकित थे और उन्हें देखकर बजरंग बली बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उससे ज्यादा उनको प्रसन्नता तब हुई जब उन्होंने आंगन में तुलसी माता के नवीन पौधे को दिखाई दिए। नव तुलसी का बृंद तहा देख हर्षा कपिराय, सो एक सच्चे सनातनी एक सच्चे राम भक्त की पहचान उनकी घर के बाहर उनकी महावीर स्वामी चबूतरा से हमें मिल ही जाती हैं। और चबूतरा कितना साफ कितना ओडली और तुलसी माता के जवान पौधे देखने से हमें संकेत मिल जाता है कि वह व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में कितना सक्रिय है कितना धर्मनिष्ठ है।
0: जय श्री राम। हे दुख भंजन

0: जय सियाराम।
1: राम रसधारा, रसधारा
2: लंका निशिचर निकर निवासा, लंका में अनेकों राक्षस रहते हैं। यह कहा सज्जन कर बासा, यहाँ पर एक सज्जन कैसे रह सकता है? हनुमान जी अपने आप से पूछ रहे हैं। मम महि तरक करे कपि राजा, हनुमान जी अपने ही मन में विचार कर रहे थे। तही समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण जी जागे। यहाँ पर विचारने योग्य काफी बातें हैं। एक तो जब रावण के महल में शिव जी के अवतार रुद्र अवतार हनुमान जी गुजरे, तो रावण जी जो अपने आप को शिव जी के परम भक्त मानने वाले थे, रावण सोए रहे, लेकिन जब वहीं पर हनुमान जी हरि भक्त विभीषण के घर के नजदीक से गुजरे तो विभीषण जी जाग गए। जी हाँ, रावण सोए रहे और विभीषण जी जाग गए। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: हनुमान
1: जय सियाराम।
2: राम रसधारा रसधारा
3: राम राम तेहि सुमिरत कीन हा। जैसे ही विभीषण जी जागे ऐसे ही वे राम जी का नाम जपने लगे। हृदया हरसा कपि सज्जन कीन हा। और विभीषण जी के मुखार बिंद से राम जी का नाम सुनकर हनुमान जी अति हर्षाए। ऐसा न हाथी करहूं पहचाना, यही पहचान होती है एक सच्चे सज्जन का। एक सच्चे सज्जन की पहचान होती है कि उसकी वाणी से किसका नाम निकलता है। प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो हमारे मुख से किसका नाम पहले निकलता है, इससे हमारी पहचान होती है। और ऐसे साधु से मिलने में कोई बैर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। जय सियाराम
0: जय सियाराम।

0: हनुमान, जय सियाराम, जय जय हनुमान।
1: राम रसधारा,
2: विप्र रूप धरि बचन न सुनाए, एक साधु का रूप धारण करके हनुमान जी विभीषण जी को पुकारा। और जैसे ही विभीषण जी ने साधु जी की पुकार सुनी, तैसे ही वे उठकर आए उनके पास। ये नहीं कि दूर से पूछा कौन है, नहीं, उठकर उनके पास आए। समीप आकर बड़ी विनम्रता से साधु जी का हाल चाल पूछा। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारी सभ्यता, ये है शिष्टाचार, अतिथि देवो भव। और यहाँ पर तो अतिथि एक साधु है। करी प्रणाम पूछी कुशाला, विप्र काऊ निज कथा बुझाई। जय सियाराम,
0: जय सियाराम की।

0: जय सिया राम।
1: राम रसधारा, रसधारा।
2: तो वहां पर विभीषण जी बहुत ही विनम्रता भाव से

0: साधु के वेश में हनुमान जी से पूछते हैं। कि तुम हरि दासन मोहि कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या आप नारद जी की तरह हरि का कोई सेवक हो? मोरे हृदय प्रीति अति होई, आपको देखते ही जैसे कि दिल गदगद हो जाता है। जैसे हमने अभी हाल में गणेश उत्सव, श्री गणेश उत्सव मनाया और बप्पा को देखते ही मन आनंद से भर जाता है, उसी प्रकार साधु के वेश में हनुमान जी को देखकर विभीषण जी अति प्रसन्नचित हुए। कि तुम रामु दीन अनुरागा, क्या आप खुद राम जी हैं? दिनों के प्यारे, दिनों के रखवारे श्री राम जी जो मेरे कल्याण करने के लिए मुझे दर्शन देने आए हैं। कृपा करके आप हमें बताने की चेष्टा कीजिए। जय सियाराम,
1: जय सियाराम।

0: जय सियाराम,
1: जय
0: जय हनुमान।
2: राम रसधारा, रसधारा
3: तब हनुमंत कहीं सभा राम कथा निज नाम सुनत जुगत तन पुलक मन मगन सुमिरी गुणग्राम। तब जाकर हनुमान जी ने अपना अस्तित्व विभीषण के सामने खोला और श्री राम की पूरी गाथा सुनाई। यहाँ पर उल्लेखनीय बात ये है कि अभी तक हनुमान जी ने सिर्फ राम जी का दर्शन तो किए हैं लेकिन माता सीता को नहीं, जबकि विभीषण जी ने माता सीता का दर्शन तो कर चुके थे लेकिन राम जी का दर्शन नहीं हुआ था तब तक। सो हरि के दो भक्त, जी हाँ, हरि के दो भक्त जो एक दूजे के लिए मार्ग खोलेंगे। विभीषण जी हनुमान जी को सीता मैया की आता पता, सीता मैया का आता पता उन्हें बताएंगे और हनुमान जी विभीषण जी को राम जी तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे एक बहुत ही प्यारा नाम दिया है, संतों की महिमा। सज्जनों में भगवान का दर्शन करने के बाद ही एक सज्जन में भगवान का दर्शन करने के बाद ही आपको शांति अर्थात सीता मैया मिल सकती हैं और अपने कंफर्ट जोन से को त्यागने पर ही विभीषण को राम जी का आश्रय प्राप्त होता है। जय सिया राम, जय जय हनुमान।

0: रसधारा
1: जय सिया राम देवी और सजनों, आज हम रामचरितमानस के सुंदरकांड का हनुमान विभीषण मिलाप का प्रसंग का रसपान कर रहे हैं। हनुमान जी विभीषण जी से मिल चुके हैं और दोनों एक दूजे की व्यथा एक दूजे को इस प्रकार सुना रहे हैं। जय सिया राम।
2: जय सिया राम।

0: सूरजधारा।
1: जय सियाराम श्रोताओं, रामचरितमानस प्रभु और भक्त का एक अनोखा संबंध है। राम जी नर लीला निभाते हुए माता सीता की खोज में व्याकुल माता शबरी से सुग्रीव का पता प्राप्त करते हैं और यहां पर रुद्र अवतार हनुमान जी विभीषण जी से सीता मां तक पहुंचने का रास्ता पाते हैं। इससे अद्भुत और क्या हो सकता था। इसी प्रसंग पर हम ज्यादा उल्लेख अगले गुरुवार की शाम को करेंगे। आज आपसे आज्ञा चाहते हैं। चलते चलते तीन बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। समाप्ति मंत्र और शांति पाठ आप ही से। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
2: जय सियाराम।

0: जय सिया राम, जय जय हनुमान।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने यूनेस्को द्वारा स्थापित करा गया 17 गो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर ध्यान देवब जा। संयुक्त राष्ट्र संघ ई 2015 में निर्धारित कर ले रहा और 2030 तक ई लक्ष्य सधले बा कि ई सब जो 17 गो लक्ष्य बा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बा, ओके प्राप्त करल जाए। और आज देखी जा 2026 में हमनी हैसा और 4 बरिस बा ई जायजा लेवे के कि ई सब गोल्स कहाँ तक पहुँचल बा। तो सबसे पहला तो ई चाहे जाने के कि ई 17 गो जोन लक्ष्य जोन गोल्स निर्धारित कर लगल बा सब संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश खातिर वो कौन कौन बात है। सबसे पहला तो बा ई पृथ्वी से गरीबी मिटावे के, दूसरा बा भूख के खत्म करे के, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्थापित करेगी, चौथा है अच्छा स्तर के शिक्षा सबके देवे के, पांचवा औरत और मर्द के बीच कोनो फर्क नहीं करेगे, इ लोग के बीच चाहे बराबरी रहेगे, इक्वालिटी रहेगे, छठा साफ पानी और स्वच्छता चाहे सर्वत्र हर जगह रहेगे, सातवा है कम खर्च होला साफ ऊर्जा पैदा करेगे रिन्यूएबल एनर्जी एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी, आठवा अच्छा नौकरी और इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि आर्थिक विकास, नौवा उद्योग इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवा असमानता के घटावे के मतलब कोई के बीच नहीं चाहिए कोनो असमानता रहेगी, ग्यारहवा सस्टेनेबल शहर और जन समुदाय मतलब कि ऐसा शहर की स्थापना जो जन समुदाय खातिर लाभदायक रही और लंबा समय तक चली, बारहवा है जिम्मेदाराना पैदावार और उपभोग, ऐसा पैदावार करा ऐसा सामान के ऐसा तरीका से जेकर पैदावार और उपभोग के जिम्मेदाराना तरीके से करल जाए, तेरहवा है मौसम के बचावे पर कदम, ये सबसे जटिल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बा कहे कि क्लाइमेट चेंज से दिखत है जा दुनिया कैसे आज उथल पुथल से गुजरता, चौदहवा है पानी के अंदर जो जन जीवन बा ओकर सुरक्षा, फिर बा पृथ्वी पर जीवन, सोलहवा है शांति और न्याय के मजबूत संस्थान और सत्रहवा ई सब गोल के हासिल करे खातिर साझेदारी मतलब कि पार्टनरशिप मतलब कि सब कोई के मिल के चाहिए ई सब लक्ष्य के साधेगे, और ई सब जो

अक्षबा एक साधे में काफ़ी मुश्किल होल बा। यूनाइटेड नेशंस के जो इकोनॉमिक नेटवर्क बा उ कितने समय आगे से चेतावनी दे आवता कि 5 को इंसानी आदत के वजह से ये सब सस्टेनेबल गोल्स में बहुत आगे से रुकावट चला बा और ये सब चाहिए हमने के ध्यान में रखे के और एकर से निपटे के और एकर में बा मौसम परिवर्तन और प्रकृति के विघटन डिग्रेडेशन असमानता अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण तेजी से जनसंख्या में परिवर्तन और टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ये तीन को इंसानी प्रवृत्ति इस शताब्दी के नक्शा ही बदल दी। अब एक असर कहाँ तक सकी गलत या सही रहे ये निर्भर रही हमने के आज के फैसला पर और ये रिपोर्ट में ये बोला गया बा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा अमल में आए एकर प्रगति में हमने आगे बढ़ जा ये बात के ख्याल चाहत हमने के बहुत शुरू से रखे के लेकिन बीच में आते आते ये प्रगति से कब्जा बोले रेल से हट गल बा ओकर पटरी से उधर COVID-19 चला रहल जो बहुत बड़ा आघात रहल इधर देखते है जाकि मौसम परिवर्तन के जो खराब असर बा कैसे हमने के अचंभित करता जोन बात के हमने के उम्मीद नहीं रहल उ सब आवे लगल बा तो बहुत कठिन स्थिति में है जा एगो ऐसा चौराहा पर है जा जहाँ पर ये सब जोन प्राकृतिक प्रकोप बा ये सब जोन बात बा जोन हमने के पहुँच के आज परे हो गल बा ओकर में सुधार आने पर अभी देखत है जा कि काफ़ी देरी हो गल बा और अब हमने के चाहिए ऐसा ऐसा समाधान ढूंढे के जहाँ पर सकब जा सबसे आगे ये मौसम परिवर्तन के जो नकारात्मक असर बा ओकर से निपटे एकर जो असर पड़ी ओकर से जनता के बचावे। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आगालिगा में पिछले कुछ दिनों से बिजली, रोटी की आपूर्ति, इंटरनेट और मरीजों को मॉरिशस लाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। स्थानीय निवासियों ने इनका स्थायी समाधान करने की अपील की। हिंदू जागरूक ने रिन्यूएबल ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के सेक्टर में मॉरिशस के साथ सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई। इसके अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। पर्यावरण मंत्री की उपस्थिति में रिश्ते इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन। आईबीएल ग्रुप की स्कॉट लिमिटेड की पहल है, इसमें करीब 30 कंपनियां शामिल। इसका उद्देश्य औद्योगिक सेक्टर और M2 मोटरवे के किनारे वृक्षारोपण पर हरित परिवर्तन को बढ़ावा देना है। मॉरिशस में आज विश्व स्वच्छता दिवस की शुरुआत हुई। 20 सितंबर के विश्व सफाई अभियान से पहले देश भर में करीब 60 समूह सफाई मुहिम में जुटे। पॉइंट ऑफ पिमा का SSO डिसेबिलिटी सर्विसेज सेंटर भी पिछले 6 वर्षों से 5 से 45 वर्ष के युवाओं और वयस्कों के साथ इसमें भाग ले रहा है। शिवसागर राम गुलाम की 126वीं जयंती पर जोन 2 के करीब 300 छात्रों ने उनके जीवन संघर्ष और एक स्वतंत्र व समृद्ध मॉरिशस के सपने को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम आज सुबह कोंडमा स्टेट कॉलेज में हुआ। प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने कनाडा के यूरोपीय संघ का सहयोगी सदस्य बनने की महत्वाकांक्षा का स्वागत किया। इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। पिछले कुछ दिनों से

0: आगालिगा समस्याएं फिर बढ़ गई हैं, बिजली की कटौती, खराब ओवन के कारण रोटी की आपूर्ति में दिक्कत, इंटरनेट कनेक्शन बाधित होना और मरीजों को मॉरिशस लाने में परेशानी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। द्वीप समूह के अलग थलग होने के कारण रोजमर्रा की ये समस्याएं जल्द ही गंभीर रूप ले सकती हैं। स्थानीय निवासियों की मांग है कि इन समस्याओं के स्थायी समाधान खोजे जाएं ताकि उन्हें बार बार इन्हीं परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि भारतीय कारोबारी समूह हिंदुजा ग्रुप ने रिन्यूएबल ऊर्जा में निवेश करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेक्टर में मॉरिशस के साथ सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई है। इसके अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने आज दोपहर बाद पोटली में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। मॉरिशस में कैंसर के इलाज में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रोफेसर एडवर्ड लामचांगलिन नेशनल कैंसर सेंटर में नैनो नाइफ टेक्निक के रूप में अपनी विशेषज्ञता लेकर आए हैं। ये जटिल और अप्रत्याशित कैंसर के इलाज के लिए एक अत्याधुनिक टेक्निक है।
1: नैनो नाइफ सिस्टम का प्रयोग कैंसरग्रस्त ट्यूमर के इलाज के लिए किया जा सकता है। ये एक नया और अनोखा इलाज है जो परंपरागत सर्जरी की जगह ले रहा है। ये एक अल्ट्रासाउंड सुई है जिसके चलते काटने की जरूरत नहीं है और इससे मरीज बेहतर तरीके से ठीक भी हो सकता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आश्रय चिन्या ने कहा,
2: vous connaissez quelle distance on a envie d'ouvrir le tumeur. Cela l'avantage, c'est que, une fois que vous avez ouvert un poumon, peine à grande opération, moi je me trouvais qu'il ne dure pas même 30 minutes à un temps, endormi patient, et tout de suite après, patient est levé et sorti, et tantôt, quand il est venu la case. Comparé à une chirurgie traditionnelle, il se reste dans l'hôpital 5 jours, reste dans ICU, un tas de complications qui arrivent, mais ça n'a pas de complications, il y en a, mais il est minime.
1: लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रसिद्ध रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एडवर्ड लामचांगलिन इन दिनों मॉरिशस में हैं। नैनो नाइफ के पायनियर हैं, मॉरिशन मूल के हैं और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में ये नई और अनोखी प्रणाली शुरू की है। इन दिनों वे लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और वे हर 3 महीने देश आने का इरादा रखते हैं ताकि नेशनल कैंसर सेंटर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सके और ये इलाज कर सके। प्रोफेसर एडवर्ड लामचांगलिन ने कहा, हर चरण पर ठीक से आयोजन करना बहुत जरूरी है और ऐसा करना चाहिए। जैसे प्रीएडमिशन न सिर्फ प्रक्रियाएं बल्कि मरीज के ठीक होने के बाद की प्रक्रिया भी इससे संबंधित है। वार्ड में कर्मचारियों की ओर से देखभाल जरूरी है, भविष्य में फॉलोअप भी है। हर तीन
0: पर्यावरण मंत्री की उपस्थिति में रिश्ते इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के दूसरे चरण का औपचारिक उद्घाटन। आईबीएल ग्रुप की कंपनी स्कॉट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई इस परियोजना को लगभग 30 कंपनियों का समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य औद्योगिक सेक्टर और M2 मोटरवे के किनारे पेड़ लगाकर हरित परिवर्तन को बढ़ावा देना है। स्थानीय निकायों और अधिकारियों द्वारा समर्पित ये पहल एक अधिक हरित भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।
3: रिष्टिया के औद्योगिक इलाके में पिछले कुछ सालों के दौरान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। ये पहल सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी के तहत रिष्टिया इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है। इस परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत इसी सितम्बर महीने में हो रही है। इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर IBL ग्रुप की कंपनी स्कॉट लिमिटेड में किए गए। स्कॉट लिमिटेड इस परियोजना की शुरुआत करने वाली कंपनी है। IBL ग्रुप के डेप्यूटी CEO पैट्रिस रोबिया कहते हैं, इलाके के सभी आर्थिक साझेदारों को एकत्रित किया है। हर एक अपने स्तर पर अपनी भूमिका निभाएगा ताकि पौधे रोपकर वे इस इलाके को हरा भरा कर सके। दूसरा चरण इसी कार्य को जारी रखेगा। 5-10 साल पहले ये पेड़ यहाँ नहीं थे। इससे ये पता चलता है कि इस तरह की परियोजना सफल हो सकती है। औद्योगिक इलाके में पेड़ लगाने के अलावा इस परियोजना के तहत रिष्टिया में मोटोवे के किनारे और आसपास के इलाकों में भी पेड़ लगाए जाएंगे। रिष्टिया की करीब 30 कंपनियां इस पहल में हिस्सा ले रही हैं। इसमें सरकारी अधिकारी

0: सरकारी गैर सरकारी संगठन और समाज के विभिन्न वर्ग मिलकर काम कर रहे हैं। मारिन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के दिजिगे सिनापो कहते हैं, इस सड़क को यूं ही छोड़ दिया गया था, सभी पेड़ काट दिए गए थे, इसमें फिर से पौधे लगाए गए हैं। मूवमेंट एंटी पोल्यूशन के अध्यक्ष ग्रेगोरी निंग कहते हैं, हम ऊपर जमा पानी को नदी में जाने से रोकते हैं, इसके लिए पौधे लगाए हैं ताकि पानी मिट्टी में समा सके और वो होल्स में जा सके। पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान के अनुसार, स्वेच्छा से पर्यावरण की जिम्मेदारी निभाने वाली इस पहल को पूरे देश में दोहराया जाना चाहिए। मंत्री राजेश भगवान कहते हैं, इसमें भाग लेने वाले हर उद्योग इस इलाके के लिए कटिबद्धता ले रहा है। मोगी फैसिलिटीज 1.2 किलोमीटर के दायरे तक सफाई की जिम्मेदारी ले रही है। सरकार इसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है।
1: Un véritable engagement continu. Et c'est exactement la culture que le gouvernement veut promouvoir.
0: इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की शुरुआत से अब तक रिश्तेया और आसपास के इलाकों में 600 से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं।
2: मॉरिशस में आज विश्व स्वच्छता दिवस की शुरुआत हो गई है। आगामी रविवार 20 सितंबर को होने वाले विश्व सफाई अभियान से पहले देश के विभिन्न इलाकों में लगभग 60 समूह इस मुहिम में जुट गए हैं। पोइंट-ओ-पिमो में त्रियोले का एसएसओ डिसेबिलिटी सर्विसेज सेंटर 5 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं और वयस्कों के साथ मिलकर पिछले लगभग 6 वर्षों से इस पहल में भाग ले रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ से डेटा इंटरसेप्शन और निगरानी के लिए कथित अवैध उपकरणों के मामले में पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार उन्होंने सवालों के जवाब देने से इनकार किया। वे आज सुबह करीब 10:30 बजे से लाइन बैराक्स पहुंचे और करीब 2 घंटे बाद घर लौटे। उनके अनुसार उनके अनुरोध पर आगे की पूछताछ बाद की तारीख तक स्थगित कर दी गई है। नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना के सिलसिले में राष्ट्रीय सभा में 9 बिल पेश किए जाएंगे। इस शुक्रवार को मंत्रिपरिषद में पहले इन पर विस्तार से विचार किया जाएगा। आज रात इनमें से एक विधेयक पर विशेष नजर डाली जा रही है, फाइनेंशियल क्राइम्स बिल, जो वित्तीय अपराधों से जुड़े कई अपराधों को एक ही कानून के तहत एकजुट करेगा। गोपियो इंटरनेशनल के एक डेलीगेशन ने कल ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। चर्चा का मुख्य विषय मॉरिशस के उच्च दर्जे को फिर से पुष्ट करना था, जिसके तहत इसे भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा इस संगठन के युवाओं की एक बैठक भी हर 2 साल में मॉरिशस में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। केवल नगर से स्टेट हाउस रिजवी तक शिवसागर राम गुलाम का सफर आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। उनकी 126वीं जयंती के मौके पर जोन 2 के करीब 300 छात्रों ने उनके जीवन, उनके संघर्ष और एक स्वतंत्र, एकजुट और समृद्ध मॉरिशस के उनके सपने को फिर से जीवंत किया। आज सुबह कोंदेमास स्टेट कॉलेज में युवाओं का देश प्रेम और रचनात्मकता देखने को मिली। अशिता रघु।
0: सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि इतिहास में अपनी पहचान बनाने वाले उस इंसान को याद किया गया जो इस 7वें शशि सागर राम गुलाम मेमोरियल लेक्चर का केंद्र रहा। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी संस्थान में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और कई अन्य महानुभाव मौजूद थे। कई किस्सों और यादों के जरिए मॉरिशस विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर निरंजन गोपी ने शशि सागर राम गुलाम की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसमें वे आम लोगों के करीब नजर आते हैं। उनकी सादगी, दूसरों के प्रति उनकी भलाई की भावना और लोगों का ख्याल रखने की आदत पर खास तौर पर रोशनी डाली गई।
3: Nurtured by qualities that are sourced in the heart and the spirit.
0: महानता बेशक इंसान के उन गुणों से जुड़ी होती है जिनकी जड़ उसके दिल और सोच में होती है। एक व्यक्ति ने अपनी माँ से जुड़ा एक किस्सा सुनाया जो बिलिया के उसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन केवल की तरफ से फेंका गया एक छोटा सा पत्थर गलती से उन्हें लग गया। केवल ने सिर्फ उस लड़की से माफी ही नहीं मांगी बल्कि नुकसान की भरपाई के तौर पर उसे एक छोटा सा तोहफा भी दिया। मेरे एक दोस्त ने शशि सागर राम गुलाम से उस समय इलाज कराया था जब उनकी उम्र करीब 34 साल की थी। ये बात

0: 1992 या 1993 की हैं। एक दिन मेरे दोस्त के पिता अपने ट्रक में चावल की बोरियां लेकर जा रहे थे। ये चावल फोंजिसाक में बेचने के लिए थे जहां वे रहते थे। जब वे देफोश गली से गुजर रहे थे तभी अचानक बारिश शुरू हुई। उन्होंने ससेसा ग्राम गुलाम के घर के सामने ट्रक रोका और दरवाजा खटखटाया। ससेसा ग्राम गुलाम ने दरवाजा खोला और उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने चावल की बोरियां अपने गैरेज में उतारने का सुझाव दिया ताकि बारिश से चावल खराब न हो। बारिश रुकने के बाद वे दोबारा अपना सफर शुरू कर सके थे। ये यादें राष्ट्रपिता ससेसा ग्राम गुलाम के व्यक्तित्व का एक अलग पहलू सामने लाती हैं। पेशे से डॉक्टर ससेसा ग्राम गुलाम का शिक्षा और सामाजिक तरक्की से भी गहरा जुड़ाव था। गवाहियों के अनुसार उनका ये मानवीय पक्ष उनके राजनीतिक जीवन के साथ हमेशा जुड़ा रहा।
1: As a doctor, his vocation was to relieve human suffering and save lives.
0: एक डॉक्टर के तौर पर उनका उद्देश्य इंसान की तकलीफ कम करना और लोगों की जान बचाना था। राजनीति और इंसानी मामलों में उनकी गहरी दिलचस्पी उन्हें अपने देशवासियों की शिकायतें और परेशानियां सुनने के लिए प्रेरित करती थी। वे उस सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की बुराइयों के खिलाफ लड़ना चाहते थे जिसकी वजह से कई लोग तकलीफों और मुश्किलों का सामना कर रहे थे। उनकी महानता इस बात से भी थी कि वे अपना उद्देश्य पूरा करने में कामयाब रहे। अपने देश को आज़ादी की ओर ले जाना, वो भी समाज में मौजूद बंटवारे और विरोध का सामना करते हुए। इस मौके पर संगीत के जरिए भी ससेसा ग्राम गुलाम को श्रद्धांजलि दी गई। उनके सम्मान में एक गीत पेश किया गया। ये सम्मान ससेसा ग्राम गुलाम की 126वीं जयंती से कुछ दिन पहले आयोजित किया गया। उनका जन्म 18 सितंबर को हुआ था। ये मौका नई पीढ़ी तक उनके राजनीतिक सफर के अलावा उन मूल्यों और विचारों को पहचानने का भी है जिन्होंने उनकी जिंदगी और मॉरिशस के इतिहास को आकार दिया।
2: तो ये रिपोर्ट आप सुन रहे थे ससेसा ग्राम गुलाम की जयंती के उपलक्ष में उनके सम्मान में उनकी यादों को उजागर करने के लिए और उनके मूल्यों तथा सिद्धांतों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया था। गोपी इंटरनेशनल के एक डेलीगेशन ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की। चर्चा का मुख्य विषय मॉरिशस के उस दर्जे को फिर से पुष्ट करना था जिसके तहत इसे भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा इस संगठन के युवाओं की एक बैठक भी हर दो साल में मॉरिशस में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया।
0: ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी गोपियो इंटरनेशनल दुनिया भर में करीब 3,50,00,000 सदस्यों को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ हुई इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों को एकजुट करने में मॉरिशस की खास भूमिका पर चर्चा की। गोपियो इंटरनेशनल के महासचिव रविंद्रन अर्जुनन कहते हैं, 1996 में हमने मॉरिशस को PIO यानी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की राजधानी घोषित किया था। हम इसे दोहरा रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ इसके लिए एक स्मारक के निर्माण के बारे में बात की। हमने हर दो साल पर मॉरिशस में डायस्पोरा के नौजवानों को एकत्र करने के बारे में भी बात की। गोपियो 30 साल से ज्यादा समय से कायम है। अब अगली पीढ़ी को तैयार करने का समय आ गया है। पिछले सप्ताहांत मॉरिशस में इस संगठन का 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
2: मॉरिशस में फ्रांस के नए राजदूत अलेक्सिस लॉये और थाईलैंड के नए राजदूत एकापोल फुलपिपात ने स्टेट हाउस रेजी में राष्ट्रपति धर्मगोकुल को अपने परिचय पत्र सौंपे। फ्रांसीसी राजनयिक विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग और आदान प्रदान को मजबूत करना चाहते हैं।
3: फ्रांस के नए राजदूत ने औपचारिक रूप से मॉरिशस में अपना पद संभालना शुरू किया। कार्यसूची में कई क्षेत्रों में सहयोग की बात शामिल जैसे शिक्षा, जल, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा, जलवायु। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित। अन्य मुद्दा इलाकाई सहयोग 2027 के लिए मॉरिशस रेनियन जॉइंट कमीशन निर्धारित। फ्रांस के राजदूत अलेक्सिस लॉये ने कहा,
4: Notre relation s'inscrit dans un contexte régional qui est le sud-ouest de l'océan Indien.
3: हमारा संबंध इलाकाई परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत है। हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में महासागर में समान चुनौतियों एवं खतरों का सामना करते हैं। हमें अपने संसाधनों की रक्षा करनी है, ब्लू इकोनॉमी को लेकर सभी प्रकार के व्यापार से संघर्ष करना है। ये सब एक साथ मिलकर कर

सकते हैं। हिंद महासागर आयोग के जरिए ये सब किया जा रहा है। फ्रांस भी इसमें भाग लेगा, पिछले अप्रैल महीने से अध्यक्षता संभाल रहा है। फ्रांसीसी प्राथमिकताओं पर कार्य करेंगे, जैसे कि समुद्री सुरक्षा, प्राकृतिक खतरों का संचालन और आत्मनिर्भरता तथा खाद्य सुरक्षा। इसके साथ ही वार्ता की बदौलत पिछले साल से राष्ट्रपति दौरे से तय कई पहल से संबंधित जायजा भी

0: मॉरिशस विश्वविद्यालय में शोधकर्ता त्वचा संबंधी घावों के लिए एक नया बैंडेज तैयार कर रहे हैं। इसकी खूबी ये है कि इसे गन्ने की खोई यानी बगस से बनाया गया है और इसमें एक एंटी बैक्टीरियल घटक शामिल है। ये शोध कई स्थानीय संगठनों को एक साथ लाता है और अंततः इस बीमारी से प्रभावित देशों में इसके व्यावसायिक उत्पादन का रास्ता खोल सकता है। क्या होगा यदि मॉरिशस के तट पर मौजूद जहाज़ों के मलबे समुद्री जीवन के लिए असली आश्रय बन जाएं? मॉरिशस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 5 जहाज़ के मलबों पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि आर्टिफिशियल चट्टानों की भूमिका निभा सकती हैं वे, और जो मछलियों को छिपने की जगह और मूंगों को विकसित होने के लिए सतह प्रदान करती हैं। बढ़ते हैं विदेश की खबरों की ओर। कनाडा के प्रधानमंत्री मैकोनी ने यूरोपीय संसद में अपने भाषण में कहा कि यूरोप और कनाडा एक साथ मिलकर अधिक मजबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो यूरोपीय संघ की इस महत्वाकांक्षा का स्वागत करते हैं जिसके तहत कनाडा को यूरोपीय संघ का सहयोगी सदस्य बनाया जाना है। इसी के साथ अन्य खबरें विस्तार से इस रिपोर्ट में विधि मासी बोरन के साथ।
1: गाजा पट्टी में रात भर में एक युद्ध क्षतिग्रस्त इमारत के ढह जाने से 8 बच्चों सहित कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग लापता हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाजा शहर के तल अल हवा इलाके की 6 मंजिला इमारत एक साल पहले हुए इजरायली हमले के बाद से एक तरफ खतरनाक रूप से झुक गई थी। उन्होंने बताया कि विस्थापित परिवार मजबूरी और बेबसी के कारण इसके अंदर रह रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और एक मिस्र की टीम ने बचे हुए लोगों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उपकरणों की कमी के कारण राहत और बचाव कार्य धीमी गति से चल रहा है। रूस ने 16-17 सितंबर की रात को कीव पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया जिससे यूक्रेन की राजधानी में एक शैक्षणिक संस्थान को नुकसान पहुंचा और कम से कम 18 लोग घायल हो गए। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमरीकी सरकार ने एक व्यापक कानून का समर्थन किया है जिसके तहत रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक शुल्क लगाया जा सकेगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वन डर लेयन ने बुधवार को कनाडा को यूरोपीय संघ का पहला सहयोगी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा जो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के कारण ओटावा को यूरोप के करीब ला रहा है। उत्तरी कैरोलिना के शॉलट में बोलते हुए ट्रंप ने सुझाव दिया कि कनाडा को यूरोपीय संघ का सहयोगी सदस्य बनने की अनुमति देना एक शत्रुतापूर्ण कृत्य हो सकता है और इस प्रस्तावित कदम के जवाब में यूरोपीय संघ पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी।
0: और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मस्कवींस के दक्षिण दक्षिण पूर्व में एक एंटी साइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके पर तेज़ हवाओं का असर है। पूर्वानुमान है कि आज रात को और कल सुबह के दौरान देश के पूर्व और सेंट्रल प्लेटो पर रह रहकर बरसात होगी। अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। दिन के दौरान देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। विशेषकर दक्षिण और पूर्व में मौसम समुद्र ज्यादा खराब रहेगा। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14-16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21-24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम साहली इलाकों पर 18-21 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 26-29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 6:04 पर, सूर्योदय 6:03 पर होगा।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजन, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: La Marie Okuleme, La Marie Okuleme, 69 years old ki, 69 साल की माया देवी गर्भरन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें माया के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे कल शुक्रवार को दिन के 11 बजे एलियंसन बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. ब्रांच रोड रिश्मो फ्लाक में 56 साल के 56 years old के नंदेव चिनातो की मृत्यु हो गई है. नंदेव चिनातो की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें पोलो के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल सुबह के 10 बजे उनकी पत्नी मिकाएला चिनातो के मकान रिश्मो फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावेंचियो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. मोसलमो फेव्यू मोदालबियामी 83 साल की 83 years old की कर्मा लुमदेवी अरुमुगम वे पहले हेड टीचर की हैसियत से काम करती थी. उनके अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनकी बेटी बीना कुंजल के मकान मोदालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 2:30 PM. आले जाक्लिस कालिये में 67 साल की 67 years old के कुष्मावती घुरा की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम राम दयाल. लोग उन्हें कुमारी के नाम से अधिक जानती थी. उनके अर्थी आज दिन के कल शुक्रवार को सुबह के 9:30 बजे उनके पति सुखदेव घुरा के मकान लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM. Avenue Telfair, Belle Rose, Quatre Bornes, Hem Narayan Sobura, 84 साल के 84 years old के हेम नारायण सोबुरा की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे एलियंसन बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट नून. रोटेन मवान बेतु काटोबोन में 57 साल के 57 years old के प्रवींद्रनाथ रघुनंदन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें रवीन के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल सुबह के 9:30 बजे उनके भाई महेश रघुनंदन के मकान काटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM. मामजेलो कोयराती में 61 साल के 61 years old के रितानंद रामादीन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें विजय के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान कोयराची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी स्त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. अपने घर ही मिला लीजिए. इस वक्त शाम के ठीक 6:27 हो गए हैं.

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार आदाब, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। और नई सोच कार्यक्रम में दिल से आप सब लोगों को हम यहां पर वेलकम करते हैं। आप लोगों का जो थर्सडे है बहुत ही अच्छा रहा, हम बस दिल से यही दुआ करते हैं। अगर अच्छा भी नहीं हुआ, इट्स ओके, रात बाकी है और बात भी बाकी है। और मूड को यहाँ पर फिर से सेट करने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं, नई सोच कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में हम केवल एक विचार आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हम आपको ये कहना चाहेंगे, रात के 7 बजे तक नई सोच कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। फिर उसके बाद रात के 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक दिलों की आवाज़। लेकिन इससे पहले ही आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं ऑन 5250620020।

देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त शाम के 6:43 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। आज नई सोच कार्यक्रम में आप लोगों से हम कुछ कहना चाहेंगे। अगर आप

ड्राइविंग करते समय एक जगह पर जाते वक्त भटक गए हैं, जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर आप क्या करते हैं? सामने वाले जो इंसान दिखता है या फिर एक व्यक्ति मिलता है, आप उनसे पूछते हैं ना कि मुझे ये जगह जाना है और क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ही और शी वो सिर्फ ये करते हैं, एक इशारा देते हैं और उस इशारे का पूरा भरोसा रखते हुए आप वहां से निकल जाते हैं। वो इंसान ना आपको जानता है ना आप भी उसको जानते हैं, फिर भी वो इंसान आपको भटकने से बचा लेता है। जिंदगी भी ऐसी है, ऐसे बहुत सारी जगह है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जहां पर आप भटक जाते हैं किसी एक व्यक्ति के फोन कॉल, किसी एक व्यक्ति के इशारा, किसी एक व्यक्ति की बात को लेकर के आप उस भटकाव से निकल करके सही दिशा में चले जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपकी मदद की है, कम से कम आप इसके बारे में सोचिए और उस इंसान को कम से कम फोन करके कहिए थैंक यू सो मच कि एक ऐसा वक्त था जहां पर आपने मेरी मदद की थी और आपने मेरी हेल्प करने के बाद मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच।

उस इंसान को फोन करने के बाद उनको शाबाशी दें कि एक ऐसा वक्त था जहां पर उन्होंने आपकी मदद की थी और उस के कारण ही आप सही दिशा पर गए थे, और उनको कहना शाबाशी।

तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं।

हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिलाई जिस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

अभी के लिए हम लोगों ने आप लोगों को दिल दे दिया है, बस जान देना बाकी है। नमस्कार आदाब, वंस अगेन वेलकम बैक दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग आए, दुरुस्त आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी टाइम पर आप हमें फोन कर सकते हैं 402-80-70 पर, 402-80-70 पर। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहां पर चलाएंगे। यू मे सेंड अस मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250-6200।

जी दोस्तों, आपकी रेडियो सेट आपके पास है और हमारे पास आप लोगों के नाम है, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए 5250-6200 में मैसेजेस भेजने का आइडिया एकदम मस्त रहेगा। जहाँ दोस्त इस वक्त हमारे साथ कल्याणी भी जुड़ गई है फ्रॉम थ्रियोले। उन्होंने कहा श्वेता, हर्षिना, व्योस्वाव श्रेष्ठा, नीतीशी, केशव, नरवाण, बहु है दीपिका, दो दामाद है अमृत और हर्षील, व्यांश, शिवांश और पति के लिए अगला गीत हो जाए। मैंने उनसे पूछा पति का नाम क्या है, उन्होंने कहा मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ, मेरे जो वो है ना उनके लिए हो जाए। चलिए आपके वो के लिए ये गाना।

चलिए हमारे साथ विवियो भी जुड़ गए हैं। ये गाना खासकर उनके नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच। वी ऑल्सो हैव योगिता, दिलान और याना। ये गाना खासकर उन तमाम दोस्तों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव सेफली गाइस, अगर बारिश हो रही है या फिर जो रोड है स्लीपरी है, बी केयरफुल ऑन रोड।

जी हाँ दोस्तों, इस वक्त रात के 7:31 हो गए हैं। पता है जब भी ये जो फीलर बजता है ना, ऐसा लगता है कि इस आपाधापी जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया है, एक रुकावट सी आ गई है और एक उस सुकून को महसूस करने का एक मौका मिलता है। मुझे पता है कि आप लोगों का जो जीवन है, आप लोगों की जो जिंदगी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कभी ये कभी वो, लेकिन इन सबको छोड़ छाड़ करके मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग अपने बारे में सोचते हैं? आप अपने लिए जीते हैं? जी हाँ, दूसरों के लिए आप जी लेते हैं? दूसरों के लिए का मतलब है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बॉस के डिमांड्स को पूरा करने के लिए सब कुछ कर लेते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं अपनी इस 24 आवर्स में, खासकर 8 आवर्स की दरमियान हम लोग बहुत कुछ करते हैं काम पर, लेकिन अपने लिए आप कब जीते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है आपको ही जवाब देना पड़ेगा।

0: चलिए वीरानिया में भी हम भी इस महफिल में पहुंच गए हैं वेटिंग फॉर यू ऑन 402-80-70 पर 402-80-70 पर यू मे ऑल्सो सेंड इस मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250-6200 दिस इज अभी रात के 7:43 हो गए हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर यू आर लिसनिंग दिलों की आवाज
1: शाम को सब सितारे बहुत मुस्कुराते थे जब देखते थे हमें आती जाती हवाएं कोई गीत खुशबू का गाती हुई छेड़ती थी गुजर जाती थी आसमां पिघले नीलम का एक गहरा तालाब था जिसमें हर रात एक चांद का फूल खिलता था

जाने का शौक है। बरसों से यूं तो एक अमावस की रात है, अब इसको हौसला कहूं कि जिद की बात है। दिल कहता है अंधेरे में भी रोशनी तो है, माना कि राख हो गए उम्मीद के अलाव, इस राख में भी आग कहीं पर तभी तो है।

कैसे आएगी? आप ये क्यों समझ न पाते हैं, याद तो सिर्फ उनकी आती है, हम कभी जिनको भूल जाते हैं।

And that was Virania, taken out from the movie Namaste London. Thank you so much कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अगर आप अभी अभी अपने रेडियो को ऑन किया है, so let me inform you कि दिनों की आवाज़ कार्यक्रम की पेशकश की जा रही है अभी के साथ रात के 9 बजे तक. And waiting for you on 402-80-70 पर 402 8070 पर कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे. You may also send us messages happening on 5250-6200. चलिए अगला गीत स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे अनीता के नाम, जो फिकॉन्फ्ला के रहने वाली है. वैसे उनका जो गीत है मैंने चला दिया है, अब आपका नाम मैं चला रहा हूं. मैं बता रहा हूं मैं एक अगला गीत आपके नाम भी यहां पर चलाने वाला हूं. अनीता फ्रॉम फिकॉन्फ्ला, पति राज, कुश, अंतिश, बहु है मनीषा, वशीमा, हिमेशा, आध्या और अंश. ये गाना खासकर अनीता के नाम.

और इस वक्त हमारे साथ जनाब आबू हैं, उन्होंने कहा आतिफ असलम। मैंने कहा आतिफ है, असलम भी है, क्या बात है। वी ऑल्सो हैव जईद और जयान और उनके दोस्त अपी और उनके लवली वाइफ के नाम।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

जहाँ दोस्तों लाला लाला करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं सेकंड आवर ऑफ दिलों की आवाज कार्यक्रम। वंस अगेन नमस्कार आदाब एंड वेलकम बैक फॉर यू दिलों की आवाज कार्यक्रम अभी के साथ रात के 9 बजे तक का।

चलिए अगला गीत स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे मोहतरमा रेहाना के नाम, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जलीला और जियाद के लिए उनकी याद में ये गाना स्पेशली डेडिकेट करना चाहते हैं। तो चलिए वी डू हैव यहाँ पर दीपक फ्रॉम मोचिदा। उन्होंने कहा बस एक बहुत ही खूबसूरत गाना मेरी वाइफ मौशिनी के लिए हो जाए, और मूड भी काफ़ी रोमांटिकली सेट हो गया है। जहाँ बारिश हो रही है, बारिश की बूंदों के साथ वो भी मूड को रोमांटिकली सेट कर दिया है ना। कभी कभी जब हम लोग जब बारिश होती है, खासकर उन यादें को संजो करके रखते हैं। एक ऐसा वक्त था जहाँ पर हम भी उनके साथ थे, एक ऐसा वक्त था जहाँ पर हम कागज़ की कश्ती बना करके उनको देते थे, पानी में भिगो करके लेकर के जाते थे। बहुत सारी यादें सामने आ जाती हैं। इस गाने की फरमाइश खासकर विक्रांत ने की है, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

जो मन मियाँ, वो महफिल ही कैसी जहाँ दिल वालों के साथ साथ दिल जले ना हो। तुम दिल से दिल वालों के लिए गाना, दिल जलों का ख्याल हम रखेंगे।

जी हाँ दोस्तों, रात बाकी है और बात भी बाकी है, और ऐसे टाइम पर हमारे साथ हंसिनी भी जुड़ गई है। ओ हंसिनी, ये गाना खासकर हंसिनी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जो इस वक्त स्ट्रांगली कनेक्टेड है और दिल से उसको हम कहना चाहेंगे कंग्रेचुलेशन। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा कंग्रेचुलेशन किस बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब वो अपने सक्सेस एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, तो उन्होंने रसमलाई को खाया और उसको एंजॉय किया। क्या बात है हंसिनी, लगे रहो, ये गाना आपके नाम।

जी हाँ दोस्तों, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। दिल की जो धड़कने हैं उसको आगे लेके जाते रहिए। नेक्स्ट थर्सडे विल बी मीटिंग, प्यार शिद्दत और सभी खुशियों के साथ। तब तक अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब।

आइए एक सूचना सुनते हैं। मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की ओर से एक जरूरी सूचना है। उनकी 115 यानी कि 115 वाले हॉटलाइन फिलहाल काम नहीं कर रही है। अगर कहीं आग लगने की आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो पुलिस को 112 यानी कि 112 या फिर 148 यानी कि 148 पर कॉल करें। हॉटलाइन सर्विस को जल्द से जल्द दोबारा शुरू करने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये थी एक सूचना मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की ओर।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रात्रि के 9:08 हुए हैं और मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की तरफ से एक जरूरी सूचना। मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की 115 वाली हॉटलाइन फिलहाल काम नहीं कर रही है। अगर कहीं आग लगने की इमरजेंसी हो तो पुलिस को 112 या 148 पर कॉल करें। हॉटलाइन सर्विस को जल्द से जल्द दोबारा शुरू करने के लिए काम किया जा रहा है और इस असुविधा के लिए मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज क्षमा प्रार्थी हैं। भोजपुरी प्रोग्राम अभी शुरू होए के बाद 9:09 हो गल बा त एगो जरूरी सूचना भोजपुरी में आप सब खातिर। पोम्पिय की तरफ से ई सूचना देवल जाता। पोम्पिय के जोन 100

0: अंदर सौ कैंस होला हॉटलाइन बा वो फिलहाल काम नहीं करता और जे कहूँ आग लगे के इमरजेंसी रही तो पुलिस के 112 112 या फिर 148 148 पर कॉल करिया हॉटलाइन सर्विस के जल्दी से जल्दी दोबारा फिर से शुरू करे खातिर काम करल जाता तो इरहल मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की तरफ से एगो सूचना
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only
4: NBC station. TV, Rangin Programo ka khazana.
5: Tera so square kilometer, sirf ghane pahad aur gehri khai. कहते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा शेर यही है यहाँ पैदल चलना मना है क्योंकि जिस रास्ते पर शेर के पंजे हों उस पर कोई चलने की हिम्मत नहीं करता
6: शनिवार 19 सितंबर को NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म काल 2006 की मूवी जॉन अब्राहम और विवेक ओबेरॉय पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म काल

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज के रात है बीफे 17 सितंबर 2026 के रात 9:12 हो गल बा। आप सब कोई बहुत बेसब्री के साथ हमने के इंतजार करा था वजह अपन खास प्रोग्राम के इंतजार भोजपुरी तड़का के करा था वजह। तो हम किरण आज रात आपके साथ देवा था हर बीफे की तरह, और आज के प्रोग्राम भी हमेशा की तरह आप ही लोग के पसंद पर बनल प्लेलिस्ट के चलावल जाए। और पहला गीत आप सब कोई के नाम, खास तौर पर जे लोग रोजिल और क्यूपिप से हमने के सुरत हवा जा।

ये वक्त आप रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़ल हवा आपके मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का चलता जेकर इंतजार आप कोई आप सब कोई के रहेला और अभी से रात के 11 बजे तक हमेशा की तरह हमने के साथ रही। अगला जो गीत चले होला बा ये गीत अनिरुद्ध बैजनौत के आवाज़ में कामियो लोतो और जितना कोई भी अभी गाड़ी चलावत हवा जा कामियो त ओकर गाज में जाए के बखत चला बा लेकिन कल जे फिर से कामियो लोतो चलाई होला बा आप सब कोई के नाम ये अगला गीत और जे ये बखत आप गाड़ी चलावत हवा तो बहुत सावधानी से गाड़ी चलाइए काहे कि देखत हवा हमने के सड़क पर कितना दुर्घटना हो ले जाता रोज के रोज हमने के बुरा खबर मिलता तो हमने सब कोई जे अच्छा से एक फैसला लेके गाड़ी चलावब जा कि सब कोई अपन जिम्मेदारी संभाली सब कोई दूसर के जो गैर जिम्मेदाराना रवैया बा ओके और नहीं भड़कावी रोड रेज के आज का जमाना बा लेकिन ओकर खिलाफ भी कानून चला बा तो अच्छा से गाड़ी चलाइया बस सावधानी बरतिया और जे घर पर हमने के सुना था वजह तो सुनते रहिया आपके फ़ोन कॉल्स आपके मैसेज यहाँ पर ले जाता और आप सब कोई के फरमाइश आज के रात पूरा हुई।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ.
3: ये क्या ये?
4: अरे दवाई है बाबा.
3: बम तो नहीं है ना?
4: ये लो दवाई लगा.
3: ओ हो, सुबह सुबह इतने सज झत्तर कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
5: वापस दिल्ली.
3: आप लोग नहीं जा सकते. ऐसी बात नहीं है, कहाँ जाएंगे आप लोग? मेन रोड पर जरा देखिए, बर्फ जमी हुई है और आपकी कार वेनिला आइसक्रीम बनी हुई है.
2: थोड़े दिन दूरी थी, फिर भी शनिवार 19 सितंबर को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कुछ तो है 2003 की मूवी तुषार कपूर और ईशा देओल के बीच कुछ तो है.

रात के 9:27 होल बा और आज के रात जेकर घर में भी जेकर भी जन्मदिन मनावल जाता हुआ पर एगो बहुत ही सुंदर माहौल बनल हो अभी आप लोग परिवार के साथ बैठल हुई बजा या तक खाना खा ले हुई बजा और अभी जब आपके मनपसंद प्रोग्राम चला था तो आप लोग ज़रूर इंतज़ार करत हुई बजा एगो जन्मदिन के गीत खातिर और पहला जन्मदिन के जो इनफरमाइश आल बा वह आज सुरेन जी के 79वां जन्मदिन है मतलब कि ससन जिसने वो उनका राज हो गल बा और सुरेन जी के बहुत बहुत बधाई सबसे आगे उनकर पत्नी शीला के ओर से उनकर पूरा परिवार उनकर बेटा लोग के ओर से जे लोग अभी फ्रांस में हवन जा उ लोग के उनकर बेटी लोग के ओर से जे लोग अभी मॉरिशस में हवन जा और किरण के ओर से सोनम और साथ में यौवन उधर रुद्राक्ष जे विदेश में हवन और शशि और सुरेन के उनकर उनकर दामाद हांसले के ओर से हांसले अपन ससुर बाबू के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना प्रस्तुत करत हवन और आपके जीवन में खुशी हमेशा बनल रही हमेशा आप हंसते खेलते रहबा और मुस्कुराते रहबा और सब कोई के जीवन में ऐसे ही खुशी अनते रहबा साथ में आज जन्मदिन बा हरीश जी के और छोटी जे पोल और जे से हवन उनका जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना प्रस्तुत करत हवन छोटी के साथ साथ ललिता जी भी और इनकर अलावा आज छोटी जी बोलत हवन कि कल उनकर नातिन आलिया के जन्मदिन मनावल जाए उनकर नातिन आलिया जे लाल माची के हवन कल उनकर 16 बरिस हो जाए तो ख़ास तौर पर आलिया के माँ बाप शिरीन और इरफान के ओर से और पूरा कमाली परिवार के ओर से आलिया के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना तो एक बार फिर सुरेन हरीश और आलिया के हैप्पी बर्थडे और जितना कोई भी जन्मदिन मनावत है वजह आप सब कोई के बहुत बहुत

भोजपुरी बॉयज के लाफ्रांस होरा गीत के बाद जो अगला गीत चली विश्वभारती संपत की आवाज में गीत गवाई के गीत ये खास तौर पर विमाला जी के नाम जे कोंगोमा से हमने के सुना था वन उनकर बहिन सुनीता गांगोप से ये गीत उनकर नाम करा था वन

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: भोजपुरी तड़का किरण संगे MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
5: शादी करके मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
6: मेरे चांद के टुकड़े, मुझसे शादी करने के बाद तुम कुछ खोगी नहीं बल्कि सब कुछ पाओगी।
5: सब कुछ खो दूंगी शाम, वो लोग हमारी शादी होते ही तुम्हें मार डालेंगे।
6: मार डालेंगे?
5: हाँ।
6: मुझे कौन लोग मार डालेंगे?
5: हसमुख और उसका बेटा।
7: मैंने देखे लाखों।
4: रविवार 20 सितंबर को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म चांद का टुकड़ा, 1995 की ये मूवी चांद का टुकड़ा।
8: अगला गीत काहे दिलवा लगैले। मेरा दिनों के आवाज़ में ये गीत सुने चाहत हवन वाकवा से सुदेवी, और सुदेवी ये गीत त्रियोले के दीदी ललिता और पूरा कुशल परिवार, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेगा के स्नेहा, कीर्ति और सब राम रतन परिवार के नाम ये गीत करावत हवन, और जितना कोई सुना था वजह आप सब कोई के नाम भी।

मन संगे। कमल और विभा चिंतामणि के बाद अब आवाज कुणाल हीरेलाल के जलसा के रात।

सुहाना सफर आशीष रामफल की आवाज में आप सब कोई के नाम जे ई बखत सफर पर निकला हुआ बचा रात के ठीक 10 बजल बा और जे घर पर भी ई जन संगीत में सफर

पर बा एकर आनंद उठावत हो जा त आप सब कोई के नाम ये अगला गीत खास तौर पर आत्माराम जी के और ई बखत हमनी के ललिता जी भी सुनत हवन और साथ में पूर्णिमा फकीरा जी भी सुनत हवन आप सब कोई के नाम ये अगला गीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: MDC TV programs की झलकियाँ।
5: लेकिन अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, फिर भी मेरे लिए तो
6: हमारे यहाँ जिससे शादी की बात पक्की हो जाती है, उसी दिन से लड़कियाँ उसे अपना पति मानने लगती हैं।
7: तुमने अमेरिका देखा है?
6: नहीं जी।
8: करती है मेरा इंतजार।
0: रविवार 20 सितंबर को MBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कितने दूर कितने पास 2003 की ये मूवी अमृता अरोरा और फरदीन खान पर फिल्माई गई कितने दूर कितने पास।

आज बीफे के दिन हा और इस सप्ताह में एगो छुट्टी के दिन भी रहल तो इस सप्ताह भी बहुत जल्दी से कट जाता और छुट्टी के माहौल एक बार फिर नज़र आए लगल बा तो आप सब कोई के जहाँ पर अभी परिवार के साथ आप लोग जश्न मनावत हो जा पार्टी मनावत हो जा और सप्ताहांत में ई पार्टी के जारी रखे चाहत हो जा। ई अगला गीत सुलकावाल नीरज गुप्त मधु के आवाज़ में आप सब कोई के नाम

किशोर खिमिया के आवाज़ के बाद जो अगला गीत चले के शुरू हो गल बा वो है कुणाल बाबूलाल के आवाज़ में निशा निशा लगेला। आप सब कोई खातिर जे लोग ये बघत वो चाहे पारिवारिक खुशी के निशा में होई बचा, चाहे हंसी खुशी के माहौल होई, या फिर वीकेंड के निकचाई के जन खुशी बा, तो ये अगला गीत आप सब कोई के नाम। निशा

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे.

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। प्रणाम श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल कुशल मंगल हैं। तो रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आप सबका स्वागत और ये है सुनहरे पल कार्यक्रम। आइए आज एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में हम बात करेंगे। अगर बॉलीवुड के उस जमाने की वैम्प की बात करें तो दिमाग में कौन कौन आता है, सोचिए सोचिए। इस पहले गीत को सुनते रहे, पता चल ही जाएगा।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर

सूरज, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप खोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही उनकी एक खास अदा, एक खास आवाज, एक खास अंदाज और उनके निभाए हुए किरदार आंखों के सामने आ जाते हैं। ऐसे ही एक शानदार और यादगार अदाकारा है बिंदु। बिंदु, जिनका पूरा नाम बिंदु नानुभाई देसाई है, बॉलीवुड के उन अभिनेत्रियों में से है जिन्होंने खास तौर पर 1960s, 70s और 80s के हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका करियर लगभग 4 दशकों तक फैला रहा और उन्होंने 160 से ज्यादा फिल्मों में भी काम किया। उन्हें खास तौर पर वैंप और सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनकी कला सिर्फ एक ही तरह के किरदार तक सीमित नहीं थी। उन्होंने निगेटिव रोल्स के साथ साथ इमोशनल, ड्रामाटिक, ग्लैमरस, कॉमिक और कैरेक्टर रोल्स भी बड़े प्रभावशाली अंदाज में निभाए।

बिंदु का जन्म गुजरात के वलसद में हुआ था। उनके पिता नानू भाई देसाई फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनकी माँ ज्योत्सना स्टेज एक्ट्रेस थी। इसीलिए कला और सिनेमा का माहौल उनके घर में पहले से ही मौजूद था। लेकिन बिंदु की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। बहुत कम उम्र में ही पिता का देहांत हो गया और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया। इन मुश्किलों के बीच उन्होंने अपनी हिम्मत और अपने हुनर को संभाला और सिनेमा की दुनिया में अपनी जगह बनाई। बिंदु ने 1962 में फिल्म अनपढ़ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन उनके करियर को असली रफ्तार 1969 की फिल्मों इत्तेफाक और दो रास्ते से मिली। दोनों फिल्में सफल रही और बिंदु के काम को खास नोटिस किया गया। दो रास्ते में उनके नेगेटिव शेड्स वाले किरदार ने ऑडियंस पर गहरा असर छोड़ा और धीरे धीरे बिंदु का नाम बॉलीवुड की मशहूर वैम्प्स के साथ लिया जाने लगा। फिर आई 1970 की फिल्म कति पतंग, और इस फिल्म में बिंदु को एक ऐसी पहचान दी जो आज तक उन्हें उनके साथ जुड़ी हुई है। फिल्म में उन्होंने शबनम का किरदार निभाया। उनका ग्लैमरस अंदाज, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस ने शबनम को एक मेमोरेबल कैरेक्टर बना दिया। फिल्म का मशहूर कबारी गाना मेरा नाम शबनम आज भी बिंदु के करियर के सबसे यादगार मोमेंट्स में शुमार किया जाता है। बिंदु ने इस गाने और किरदार को सिर्फ ग्लैमर के जरिए नहीं बल्कि अपनी एक्सप्रेशंस और परफॉर्मेंस के दम पर यादगार बनाया।

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

0: उस रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्मा नहीं घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु?
1: श्रोताओ, बिंदु की एक खासियत थी उनके स्क्रीन प्रेजेंस। जब वो स्क्रीन पर आती थी तो दर्शकों का ध्यान तुरंत उनकी तरफ चला जाता था। उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग बोलने का अंदाज और एक खास कॉन्फिडेंस उन्हें दूसरी एक्ट्रेसेस से अलग बनाता था। उनके किरदार अक्सर कहानी में टेंशन, ग्लैमर, ड्रामा या एक नया ट्विस्ट लेकर आते थे। 1970s बिंदु के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट दौर रहा। दास्तान, अभिमान, हवस, इम्तिहान और अर्जुन पंडित जैसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अलग अलग शेड्स के रोल निभाए। अभिमान में उनका चित्रा का किरदार भी खास याद किया जाता है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करते हुए बिंदु ने सपोर्टिंग रोल को भी अपनी पर्सनालिटी से इम्पैक्टफुल बनाया।

वर्ल्ड ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में कुल 7 नॉमिनेशंस मिले। ये रहे इत्तेफाक, दो रास्ते, दास्तान, अभिमान, हवस, इम्तिहान और अर्जुन पंडित जैसे परफॉर्मेंसेस के लिए। ये बात अपने आप में बताती है कि उस दौर में उनके एक्टिंग को कितनी मजबूती पहचान मिल चुकी थी। वैसे बिंदु को अक्सर बॉलीवुड की वैम्प के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनकी कला को सिर्फ इस एक लेबल में बांधना उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने निगेटिव कैरेक्टर्स को भी इतनी जान और पर्सनालिटी दी कि कई बार ऑडियंस को हीरो या हीरोइन के साथ साथ उनके किरदार का भी इंतजार रहता था। एक अच्छी एक्ट्रेस की पहचान यही होती है कि वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, छोटा रोल हो या बड़ा, अपनी परफॉर्मेंस से कैरेक्टर को यादगार बना दे।

बिंदु का नाम वैसे श्रोताओं प्रेम चोपड़ा के साथ भी कई फिल्मों में याद किया जाता है। दोनों ने स्क्रीन पर कई बार निगेटिव और ड्रामेटिक रोल्स की एक खास जोड़ी बनाई। उनकी केमिस्ट्री ने 1970s के बॉलीवुड के विलन वेब कल्चर को एक अलग पहचान दी। लेकिन बिंदु की पर्सनालिटी स्क्रीन के ग्लैमर तक ही सीमित नहीं थी। उनकी जिंदगी में स्ट्रगल भी था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी और अपने करियर को बनाए रखने की मेहनत भी। उन्होंने शादी चंपकलाल जवेरी से की जिन्होंने उनके करियर को सपोर्ट किया। पर्सनल लाइफ में आए उतार चढ़ाव के बावजूद बिंदु ने अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को बनाए रखा।

जैसे जैसे हिंदी सिनेमा बदलता गया वैसे वैसे बिंदु ने भी अपने रोल्स में बदलाव लाए। एक समय की ग्लैमरस वैम्प धीरे धीरे कैरेक्टर रोल्स में नजर आने लगी। उन्होंने माँ, रिश्तेदार, ऑथोरिटेटिव वुमन और कॉमिक शेड्स वाले किरदार भी निभाए। यानी बिंदु ने अपने आप को सिर्फ एक जेनरेशन की एक्ट्रेस नहीं बनने दिया, बल्कि बदलते बॉलीवुड के साथ अपनी जगह बनाए रखी। नए दौर के दर्शकों ने भी उन्हें मैं हूं ना, ओम शांति ओम जैसे प्रोजेक्ट्स में देखा। इससे ये बात सामने आती है कि बिंदु का स्क्रीन चार्म उन्हें सिर्फ गोल्डन एरा तक सीमित नहीं था। उनकी पर्सनालिटी और उनका नाम हिंदी सिनेमा की यादों का एक हिस्सा बन चुका था। 2023 में उन्हें बॉलीवुड हंगामा स्टाइल आइकॉन्स अवार्ड्स में मोस्ट स्टाइलिश टाइमलेस लेजेंड का पॉपुलर अवार्ड भी मिला। एक ऐसा सम्मान जो इस बात को दर्शाता है कि समय बीतने के बाद भी उनके स्क्रीन पर्सनालिटी और स्टाइल लोगों के दिलों में जिंदा है। बिंदु की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने मुश्किलों के बीच अपनी पहचान बनाई, अपने हुनर को तराशा और हिंदी सिनेमा के पूरे दौर पर अपनी छाप छोड़ी।

0: चुप क्यों हो?
1: नहीं तो?
0: खोए खोए से क्यों हो?
1: नहीं तो?
0: फिर कुछ बोलो ना।
1: क्या बोलूं?

0: पियोगे?
1: मैं नहीं पीता।
0: सिर्फ एक घूंट?
1: सिर्फ एक।
0: मेरी खातिर।

उनके किरदार कभी ग्लैमरस रहे, कभी निगेटिव, कभी इमोशनल और कभी एंटरटेनिंग, लेकिन हर रोल में बिंदु ने एक चीज जरूर दी, अपनी इंडिविजुअलिटी। आज जब हम हिंदी सिनेमा की गोल्डन एरा और 1970s के बॉलीवुड को याद करते हैं, तो बिंदु का नाम अपने आप हमारी यादों में उभर आता है। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस, उनका कॉन्फिडेंट एटीट्यूड और स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस, ये सब उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे डिस्टिंक्टिव सपोर्टिव एक्ट्रेसेस में शामिल करता है। इसीलिए बिंदु को सिर्फ बॉलीवुड की एक मशहूर वैम्प कहना उनकी कला को छोटा करना होगा। वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस, डांसर, परफॉर्मर और एक टाइमलेस स्क्रीन पर्सनालिटी है, जिन्होंने 4 दशकों के अपने सफर में हिंदी सिनेमा को 160 से ज्यादा फिल्मों की यादें दी है। श्रोताओ, बिंदु एक नाम, एक अंदाज, एक पहचान, एक बॉलीवुड के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसे जब भी पलटा जाएगा उसमें ग्लैमर के साथ एक्टिंग का दम, कॉन्फिडेंस की चमक और एक जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस जरूर नजर आएगी। शायद इसी को कहते हैं एक टाइमलेस लेजेंड। प्रणाम, शुभ रात्रि।

एबीसी रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।